सुप्रभात। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज दिन बुधवार है, शक संवत 1948 के भाद्र मास की चौथी तिथि, तदनुसार 26 अगस्त 2026। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त सुबह के 7 बजे हमारी सुबह की सभा आरंभ होती है। आप सभी का इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। आपका दिन मंगलमय हो।

जीवन सौरभ। प्रार्थना हम सभी करते हैं, लेकिन प्रार्थना के अर्थ को बहुत कम लोगों ने समझा है। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है, प्रार्थना याचना नहीं है। स्वामी विवेकानंद के जीवन का एक प्रसंग है। उनके पिता का निधन हो गया था, कुछ भी घर में बचा नहीं। उन्होंने कमाया बहुत था मगर लुटाते रहे, सो मृत्यु के बाद बहुत सा कर्ज छोड़कर चले गए। घर की हालत ऐसी हो गई कि खाने के लिए दो रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया। विवेकानंद अपनी माँ को ये कहकर चले जाते कि आज मुझे किसी के घर पर खाने का निमंत्रण मिला है, और दिन भर रास्तों में भूखे घूमते रहते। लौट कर आते तो पेट पर हाथ फेरते हुए डकार लेते और कहते, आज खाना ज्यादा हो गया। माँ जब ये सुनती तो संतुष्ट हो जाती और जो भी रूखा सूखा घर में होता वो भोजन कर लेती। जब ये सूचना उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस को मिली तो उन्होंने विवेकानंद से कहा, तू पागल है? तू जाकर मंदिर में माँ काली को क्यों नहीं कहता? यहां वहां क्या भटक रहा है? एक बार जा और देख, सारी कठिनाई हल हो जाएगी। तू जाके प्रार्थना कर। अब रामकृष्ण कहें और विवेकानंद इनकार कर दें, ये कैसे हो सकता था? विवेकानंद माँ काली के समक्ष गए। घंटा भर लग गया। बाहर रामकृष्ण परमहंस बैठे हुए चबूतरे पर इंतजार करते रहे। विवेकानंद जब लौटे तो गदगद थे, आंखों से आंसुओं की धार बह रही थी, मस्ती की तरंग छाई हुई थी। 3 दिन के भूखे हैं, ये तो वो भूल ही गए। बड़ी ही आनंदमग्न अवस्था में वो लौटे, आकर गुरु रामकृष्ण के चरणों में गिर पड़े। रामकृष्ण परमहंस ने पूछा, बाकी बात बाद में होगी, तो कह दिया ना, तूने प्रार्थना कर दी ना? स्वामी विवेकानंद ने कहा, अरे मैं तो भूल ही गया, मैंने माँ को देखा और ऐसा कुछ हुआ, आनंद में डूब गया, प्रार्थना में कुछ मांग ना सका। इस पर रामकृष्ण परमहंस ने कहा, ये क्या किया तूने, चल फिर से जा। ऐसा 3 बार हुआ, और 3री बार विवेकानंद जब बाहर आए और रामकृष्ण परमहंस को देखा तो कहा, मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद मुझसे नहीं हो सकेगा। जैसे ही मैं वहां जाता हूं, प्रार्थना ऐसे घेर लेती है कि छोटी छोटी बातें करने का सवाल ही नहीं उठता। और छोटी बातें करूं, ये बात बेहूदी लगती है, अभद्र लगती है, ये मुझसे नहीं हो सकेगा, मुझे क्षमा कर दें। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को छाती से लगा लिया और कहा, इसीलिए 3 बार भेजा, मैं देखना चाहता था क्या प्रार्थना में तो कुछ मांग सकता है अब भी। अगर नहीं मांग सकता तो तू प्रार्थना की कला सीख गया, अब मैं निश्चिंत हूं, तुझे प्रार्थना आ गई है। प्रार्थना मांग नहीं है, मांगने वाले को प्रार्थी कहते हैं, मगर उस शब्द का अर्थ हमने भ्रष्ट कर दिया है। प्रार्थी मतलब मांगने वाला नहीं, प्रार्थी मतलब झुकने वाला। प्रार्थना का अर्थ मांगना नहीं है नरेंद्र, प्रार्थना का अर्थ झुकना है, डूब जाना है, उसके प्रेम में डूब जाना है। जीवन सौरभ।

अभी आपने सुना जीवन सौरभ, प्रार्थना का अर्थ। अब आपको बताते हैं आज की सभा में प्रसारित किए जाने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अब से ठीक बात सुनिए कार्यक्रम अक्षनिधि मंडल 2 सूक्त 4 और उसके बाद आनंद लीजिएगा भक्ति संगीत का। वतन का राग सुने सुबह 8 बजे, संत आनंदमयी माँ की जयंती पर आधारित होगा आज का ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में स्वर होगा सुनीता सिंह का।

सुबह 9 बजे सुनिए कार्यक्रम टेक गुरु एआई पाठ। विषय विशेषज्ञ अनुग्रह नागाइच से रत्नेश सोनिया ने मेरी खास बातचीत आज आपको इसमें सुनवाएंगे। भारत विभूति ये कार्यक्रम सुनिए सुबह 9:30 पर। सर आशुतोष मुखर्जी पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। विजयकांत और स्वाति गिरी की स्वर होंगे कार्यक्रम में। सुबह 10 बजे सुनिए रेडियो रिपोर्ट, प्रस्तुत करता है फराज फैयाज और उसके बाद सुनिएगा परिक्रमा। काव्य गुंजन सुनिए सुबह 10:30 पर। कार्यक्रम में कलाकार होंगे भगवती सक्सेना, संदीप शर्मा, दीपक नेमा। सुबह 11 बजे सुनिए कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक प्रोफेसर हरगोविंद खुराना पर आधारित होगा आज का कार्यक्रम। दीपक नेमा और स्वाति गिरी के स्वर होंगे कार्यक्रम में। युग प्रवर्तक विवेकानंद कार्यक्रम सुनिए सुबह 11:30 पर। अब से लेकर दोपहर 12 बजे तक सुनिए इस सभी कार्यक्रम और बने रहिए मेरे साथ, आनंद लीजिए इन विभिन्न कार्यक्रमों का। तो आइए लेते हैं एक विराम और उसके पश्चात सुनते हैं अक्षय निधि।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमा होति भार्गव, देवता हैं अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
2: हुए वह सुद्योत्मानम सुवृक्तिम विषामग्निमतिथिम सुप्रयसम मित्र इव यो दिधिषायो भूदेव आदेवे जने जातवेदाः। हे याजको, दिव्य गुण संपन्न सभी उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता तथा मनुष्यों से लेकर देवों तक सूर्य देव के समान सभी के आधार रूप जो अग्निदेव हैं, उन प्रकाशित पापों को नष्ट करने वाले अतिथि के समान पूज्य तथा सबको प्रसन्न करने वाले अग्निदेव को हम आवाहित करते हैं। इमं विधन्तो आपाम सधस्थे द्वितादधुर भृगवो विक्ष्वायोः एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामग्नि रतिर जीराश्व। अग्नि विद्या के ज्ञाताओं ने इन अग्निदेव को विशेष उपायों से अंतरिक्ष में जल के निवास स्थल तथा मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर इन दोनों स्थानों में स्थापित किया। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्रुतगामी अश्वों वाले ये अग्निदेव सभी सामर्थ्यवान शत्रुओं को पराजित करें। अग्निम देवासो मानुषीषु विक्षु प्रियम धो क्षेष्यन्तो न मित्रम स दीदय दुषतिरुर्म्या आ दक्षायो यो दास्वते दम आ। जिस प्रकार यात्रा में जाने वाला मनुष्य अपने मित्र को घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्रिय तथा हितकारी अग्निदेव को देवों ने मानवी प्रजा के मध्य स्थापित किया। अस्य रणवा स्वस्येव पुष्टि संदृष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः वीयो भरिभ्रदोषधीषु जिह्वामत्यो नरथ्यो दोधवीति वारान। जिस प्रकार अपने शरीर की स्वस्थता आनंददायी होती है, उसी प्रकार काष्ठादि को भस्म करके वृद्धि को प्राप्त हुए अग्निदेव की तेजस्विता भी सबके लिए रमणीय होती है। जिस तरह रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा अपनी पूंछ के बालों को कंपाता है, उसी प्रकार वृक्ष वनस्पतियों को धारण करने वाले अग्निदेव की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। आयन मे अभवम वनदह पनंतो शिग्भो नामिमीत वर्णम सचित्रेण चिकिते रंसु भासा जुजुर्वाम यो मुहुरा युवाभूत। अग्निदेव की महानता का गान करने वाले तथा अग्निदेव की कामना करने वाले स्तोताओं को अग्निदेव अपने जैसा ही तेज प्रदान करते हैं तथा हव्य समर्पित किए जाने पर अपने अति मनोहर स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए मंद होकर भी बार बार तरुण कांतिमान ज्वालाओं वाले हो जाते हैं। आयोवना तात्रिषाणु न भाति वारण पथारथ्येव स्वानीत कृष्णाद्वा तपु रणवश्चिकेत द्यौरिव स्मयमानो नभोभिः। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, उसी प्रकार द्रुत गति से वनों को जलाने वाले अग्निदेव रथ को वहन करने वाले घोड़े की भांति शब्द करते हैं। वह कृष्ण धूम्र मार्ग से जाने वाले सभी को ताप देने वाले रमणीय अग्निदेव नक्षत्रों से प्रकाशित आकाश की तरह सुशोभित होते हैं। स यो व्यस्थादभि दक्ष दुर्वीम पशुर्नैति स्वयुरगोपाः अग्निः शोचिष्माम् अत सान्युष्णन् कृष्ण व्यथिरस्वदयन्न भूम। जो अग्निदेव विविध रूपों में विश्वव्यापी हैं, जो विशाल पृथ्वी के पदार्थों को जलाते हैं, वे तेजस्वी अग्निदेव सभी व्यथाकारी कंटकों को, सूखे काष्ठों को तथा वनस्पतियों को अपनी ज्वालाओं से जलाते हुए रक्षक रहित पशु के समान इधर उधर स्वेच्छा से जाते हैं। नूते पूर्वस्यावसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्मशंसि अस्मे अग्ने संयद्वीरं बृहंतं क्षुमंतं वाजं स्वपत्यं रईं दाह। हे अग्निदेव, आपने पूर्व समय में भी हमारा संरक्षण किया है, अतः हम तीसरे सवन में भी मनोहारी स्तोत्रों का उच्चारण करके उसका स्मरण करते हैं। हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ धन तथा महान कीर्तिमान वीर संतति प्रदान करें। त्वया यथा गृत समदासो अग्ने गुहा वनवंत उपराम अभिष्युः सुवीरासो अभिमातिशाह समत्सूरिभ्यो गृणते तद्वयोधाः। हे अग्निदेव, जिस तरह गुफा में बैठे हुए अहंकार रहित स्तुति करने वाले ऋषियों को उत्तम संतति प्रदान करके आप

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर ये रेडियो आजाद हिंद है। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

श्रोताओं, ये तो सर्वविदित है कि ईश्वर के बिना हम कुछ नहीं हैं। अंततः उसी ने हमें गढ़ा है, उसी ने बनाया है और हमें भी उसी की शरण में जाना होता है। या यूं कहें कि सब कुछ होने के बाद भी अंततः है हरि शरण ही।

श्रोताओं, हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, करते भी हम हैं, हर कोई करता है, आप भी करते हैं, वो भी करता है, हर इंसान उसकी जितनी क्षमता है उससे कार्य करता है, प्रयास करता है, फल भी पाता है। लेकिन हम कोई ना कोई एक ताकत है जिसके भरोसे ये करते हैं, जो हमसे करवाता है, जो कार्य हम करते हैं उसका फल हमें मिलता है। तो हम सब के मन में एक भरोसा है, उस भरोसे के सहारे हम अपने प्रयास करते हैं।

श्रोता, हम प्रयास करते हैं, हमारा प्रयास कितना सफल होगा, क्या उसके परिणाम होंगे, परिणाम जो भी हो, अंततः हम जाते हरि शरण में ही हैं। सफल हो तो भी, असफल हो तो भी, सफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, असफल हो तो आगे का मार्गदर्शन, जाते हरि शरण में ही हैं।

मित्रों, ये था भक्ति संगीत। आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। बने रहिए हमारे साथ अगले कार्यक्रमों के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार, मैं हूं अन्नू कपूर और आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद पर। मैं प्रणाम करता हूं, नतमस्तक हूं, सलाम करता हूं देश के सभी सैनिकों को जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए हरदम तैनात रहते हैं, तैयार रहते हैं। नतमस्तक हूं साथ ही उन सभी क्रांतिकारियों को प्रणाम करता हूं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर हमें ये आजादी दिलाई। वो हैं तो हम हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

मित्रों, आपने ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम वतन का राग का, तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान संत आनंदमयी माँ का। हमारे देश में संत परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में साधु संत, ऋषि मुनि, आचार्य परंपरा का वर्णन हजारों साल पहले से मिलता है। सनातन धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं, सभी के इन ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर ज्ञान अर्जन करने का वर्णन भी मिलता है। इस तरह हमारे संत जीवन ज्ञान की पाठशाला के महान आचार्य हुए हैं। हमारा इतिहास बताता है कि विदेशी आक्रांताओं के कारण भारतीय संस्कृति पर अनेक बार संकट के बादल छाए। भूभाग की रक्षा तो राजा महाराजाओं के हाथ में थी, लेकिन अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा में भारतीय संत परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। संत परंपरा हमारी सांस्कृतिक जागरूकता को प्रभावित करने वाली अंतरधारा के रूप में भी सदा सक्रिय रही है। इस तरह भारतीय संत परंपरा ने परोक्ष रूप से हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संतों की चर्चा करते हुए कहा है कि जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है और ग्रहण करता है, जिसे अपने मान अपमान, स्तुति एवं निंदा की चिंता नहीं रहती, और जो सदैव धैर्यपूर्वक निष्काम भाव से काम करता है, वही संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस में संतों के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिसके अंतःकरण में स्व की भावना का विसर्जन हो गया, वही संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मनोविकार नहीं होते हैं। उनका जीवन जप, तप, व्रत और संयम से संचालित होता है। श्रद्धा, मैत्री, मुदिता, दया, करुणा आदि श्रेष्ठ गुण उनके हृदय में सदैव वास करते हैं। भारतीय जीवन मूल्यों की यही अमृत धाराएं आगे चलकर संत परंपरा बनी और आधुनिक भारत के इतिहास में आनंदमयी माँ इसी संत परंपरा की महान साधिका और संवाहक थीं। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल सन 1896 को ब्राह्मण बारिया जिले के खियोरा ग्राम में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य और माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिता भगवान विष्णु के उपासक थे। उनका संसार के प्रति तीव्र वैराग्य था। वो रात रात भर भजन गाया करते थे। बाल्यकाल में ही निर्मला को कभी कभी भाव समाधि लग जाती थी। परिवार में उतना लौकिक धन नहीं था, किंतु घर आध्यात्मिक वातावरण से समृद्ध था। बालिका निर्मला ने सुल्तानपुर और खियोरा के गांव में कुछ समय शिक्षा ग्रहण की। हालांकि उनके शिक्षक उनकी योग्यता से प्रसन्न थे, लेकिन स्वयं में लीन और उदासीन व्यवहार के कारण उनकी माँ को लगातार अपनी बेटी के मानसिक विकास की चिंता रहा करती थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह विक्रमपुर के रमणी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया, लेकिन शादी के बाद 5 वर्ष वो अपने चचेरे भाई के यहाँ रहीं, जहाँ वो दिव्य ध्यान में समय बिताती रहीं।

17 वर्ष की आयु में वो अपने पति के साथ अष्टग्राम में रहने आईं। फिर सन 1924 तक वो अपने पति के साथ बाजितपुर में रहीं और फिर सन 1924 में पति के साथ शाहबाग चली आईं। लेकिन ये एक ब्रह्मचारी विवाह ही साबित हुआ। पति ने उनमें महाकाली का रूप अनुभव कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिव्य आनंद की शाश्वत स्थिति में रहने के कारण सन 1920 से उनके अनुयायियों ने उन्हें आनंदमयी माँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया। आनंदमयी माँ एक स्थान पर बहुत दिन नहीं रहती थीं, वो लगातार विचरण करती रहती थीं। वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं थीं और न ही उनका कोई आध्यात्मिक गुरु था। वो स्वयं प्रकाशित आत्मज्ञानी थीं। उनके ज्ञान आलोक से प्रेरित और प्रभावित होकर बड़े बड़े पंडित और शिक्षित लोग उनके सत्संग और पथ प्रदर्शन से लाभान्वित होते रहे। माँ ने लड़कियों की शिक्षा पर हमेशा बल दिया। आध्यात्मिक साधना की उच्च अवस्था प्राप्त होने के बावजूद वो अत्यधिक सरल, निश्चल और विनम्र थीं। वो स्वयं को सदा एक छोटी अनपढ़ बच्ची ही कहती रहीं। उन्होंने प्रवचन नहीं दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए, समाधान दिया। उन्होंने किसी को औपचारिक दीक्षा नहीं दी और गुरु कहलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सभी रास्ते मेरे रास्ते हैं और मेरे पास कोई खास रास्ता नहीं है, लेकिन लोग सदा उनसे कुछ न कुछ ग्रहण करने पहुंचते ही रहे। वो हमेशा कहती थीं कि हमें अपने दैनंदिन जीवन में चित्त शुद्धि के प्रयास करते रहना चाहिए, इससे ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते स्वयं खुल जाएंगे। आनंदमयी माँ को कोई शिव भक्त कहता था तो कोई उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहता, जिनका रोम रोम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था, तो वहीं कुछ लोगों को उनमें साक्षात महाकाली का वास दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि भाव समाधि के द्वारा वो किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकने में सक्षम थीं। आम सांसारिक लोग मानते थे कि उनका जीवन अनगिनत चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन संसार जिसे चमत्कार मानता था, आध्यात्मिक जगत में वो चेतना की एक स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है। वो चेतना के ऐसे ही उच्च स्तर पर थीं। आनंदमयी माँ श्रीमद् भगवद् गीता में वर्णित साक्षी भाव को प्राप्त करने वाली एक महान संत थीं। अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग देखते हुए वो अपने अनुयायियों को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थीं। वो कहती थीं, कौन है जो प्यार करता है और कौन है जो कष्ट भुगतता है? केवल वही अकेले खुद खेल रहा है, उसके अलावा कौन मौजूद है? व्यक्ति कष्ट पाता है क्योंकि वो द्वैत को अनुभव करता है। ये द्वैत है जो शोक और दुख का कारण है। उस एक को खोजो जो सब में और सब जगह व्याप्त है, इससे दुख और दर्द का अंत हो जाएगा। भारत भूमि में वैसे तो ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार किया, लेकिन करुणा को अपनी उपासना पद्धति बनाकर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करने और करवाने वाले संतों में आनंदमयी माँ का स्थान अनूठा है। यूं तो आनंदमयी माँ योग मार्ग की साथिका थीं, पर उनका हृदय भक्तों का था। उन्हें भजन कीर्तन में विशेष रुचि थी और नाम संकीर्तन उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था।

सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और दार्शनिक गोपीनाथ कविराज आनंदमयी मां के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। सन 1928 से वो मां के संपर्क में आए और ये सानिध्य जीवन पर्यंत बना रहा। आनंदमयी मां के विचारों और कथन को उनके अनुयायियों तक पहुंचाने में गोपीनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सन 1978 तक यानी कुल 24 वर्ष लगातार उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका आनंद वार्ता का संपादन किया। आनंदमयी मां भारत के उन महानतम संतों में से एक हैं, जिन्हें उनकी साधनाओं के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भारत के कई दिव्य संतों ने भी आनंदमयी मां की उन्नत आध्यात्मिक अवस्था की चर्चा की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उन्हें भारतीय मिट्टी द्वारा उत्पादित सबसे उत्तम फूल के रूप में वर्णित किया, तो वहीं परमहंस योगानंद जी ने उनके आध्यात्मिक नाम आनंदमयी का अंग्रेजी में अनुवाद जॉय परमिटेड के रूप में किया। जब परमहंस योगानंद जी ने मां का जिक्र अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया, तब इस किताब के जरिए पूरी दुनिया में मां का नाम प्रसिद्ध हो गया और विश्व के कोने कोने से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। महात्मा गांधी और आनंदमयी मां के बीच भी घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध थे। आनंदमयी मां गांधी जी को पिता कहकर पुकारती थीं और बापू उन्हें मां कहते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद भी मां के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। गांधी जी के निधन के बाद आनंदमयी मां ने बापू की तुलना ईसा मसीह से की थी। आनंदमयी मां कहा करती थीं कि असली यथार्थ विचार और शब्द के परे है। उस ईश्वर के विषय में जो कुछ शब्दों में कहा जा सकता है केवल वही कहा गया है, लेकिन वास्तव में जिसे भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है वही वो परमात्मा है। आनंदमयी मां का अंतर कमल की भांति इस संसार से अलिप्त रहता था। सांसारिक विषय उन्हें छू नहीं पाते थे। त्याग और संतोष उनके जीवन व्यवहार का अभिन्न हिस्सा थे। इसी संदर्भ में एक प्रसंग बताया जाता है कि एक बार उनके पास एक मध्यम वर्ग का आदमी आया और उसने कहा,

वो ज्यादा बोल नहीं सका। ये देखकर आनंदमयी मां का हृदय प्रेम और करुणा से भर आया। उन्होंने वो सफेद साड़ी ले ली। अंदर के कमरे में जाकर उन्होंने वो साड़ी पहन ली और बाहर आई। उनके हाथ में पहले पहनी हुई साड़ी थी। उसे देते हुए वो कहने लगी, अब ये साड़ी तुम ले लो। जरूरत से ज्यादा साड़ियां इकट्ठा करके मुझे क्या करना है? आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा देता है। संत ऐसे ही तो होते हैं। संतों में लेने का नहीं, लुटा देने का भाव होता है। देहरादून में 27 अगस्त सन 1982 को आनंदमयी मां अनंत में विलीन हो गईं और 29 अगस्त को हरिद्वार स्थित उनके कनखल आश्रम में उनकी समाधि बनाई गई। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल में हुआ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना की आभा केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तक फैल गई। उत्तर और मध्य भारत में उनके द्वारा और उनके नाम से स्थापित संस्थाओं में आज भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। उनकी स्मृति को कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: भारतीय चांदी से बना लंदन, बंगाल की मलमल और सेंट पॉल कैथेड्रल। सितंबर 1666 में पुडिंग लेन की एक बेकरी से उठी एक चिंगारी ने ऐसी भयावह आग का रूप धारण किया जिसने लंदन को राख के ढेर में बदल दिया। जब धुआं छटा तो 13,000 घर और 89 चर्च गायब हो चुके थे, जिससे एक ऐसा वित्तीय घाटा हुआ जिसका अनुमान आज के समय में 37 पाउंड बिलियन लगाया जाता है। राजधानी को पुनर्जीवित करने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते मुनाफे का सहारा लिया। जब शहर खंडहर में तब्दील था तब कंपनी लंदन के कुलीन फैशन सर्कलों में सफेद सोना, बंगाल की उत्कृष्ट मलमल जिसे बुनी हुई हवा कहा जाता था, इसका व्यापार कर रही थी। सैद्धांतिक रूप से इन भारतीय वस्त्रों और मसालों से होने वाली आय लंदन को 4 बार फिर से खड़ा कर सकती थी। इस विशाल पुनर्निर्माण के लिए अधिकांश धन 160 साल के कोयला कर से आया, जिसने लंदन शहर को अपने वैश्विक व्यापार मुनाफे का उपयोग करके अपने कर्ज चुकाने की अनुमति दी। इस पुनरुत्थान की स्थापत्य पहचान क्रिस्टोफर व्रेन द्वारा 52 चर्चों का पुनर्निर्माण था, जिसमें राजसी सेंट पॉल कैथेड्रल भी शामिल था। ये बहाली प्रभावी रूप से भारतीय कपड़ा उद्योग से निकाले गए धन की देन थी। हर बार जब आप उन ऐतिहासिक चर्चों के शिखरों को देखते हैं तो आप वास्तव में बंगाल, मैसूर और गुजरात के उन भूले बिसरे बुनकरों की मेहनत को देख रहे होते हैं। आधुनिक लंदन के पत्थर भारतीय चांदी से जुड़े हुए थे, जो शहर के अस्तित्व को पूर्व के प्रेत और आत्माओं का एक गहरा वसीयतनामा बनाते हैं।
2: नमस्कार आदाब, मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए, और अब वक्त है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। इतिहास के पन्नों से, इतिहास के पन्नों। श्रोताओं, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हमने सुना था 16वीं सदी में गढ़ा का गोंड राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने कई युद्ध लड़े, गढ़ा की सीमाओं को सुरक्षित किया। वो गढ़ा के लोक इतिहास में एक लोकप्रिय शासिका के रूप में आख्यानों, कहानी, किस्सों में कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी हमारी स्मृतियों में बनी हुई हैं। उसका प्रमुख कारण उनके द्वारा किए गए लोक उपयोगी कार्य हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप, और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार।
2: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: श्रोताओं, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया। हमने आपको पिछली बार बताया कि उनके शासनकाल में लगभग 56 तालाबों का निर्माण हुआ। रानी ही नहीं, उनके मंत्री आधार कायस्थ ने आधार ताल और उनकी दासी यानी चेरी ने चेरी ताल का निर्माण करवाया। जैसा कि पूजा जी ने पिछली बार हमें बताया कि जहां भी पानी का स्रोत होता है, भरपूर पानी होता है, वहीं संस्कृति पनपती है। तालाब बनने से केवल पानी ही नहीं मिलता बल्कि पूरी संस्कृति समृद्ध होती है। गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, कृषि बढ़ती है और उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है। आइए जानते हैं तालाब बनने के साथ साथ उसके आगे की कहानी रानी दुर्गावती जी के अन्य योगदान डॉक्टर पूजा सक्सेना जी से।
2: गढ़ा में रानी के लोक उपयोगी कार्य जारी थे, धन संपदा, सुख समृद्धि चारों तरफ फैल रही थी। यहाँ तक कि रानी की ख्याति भी बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। रानी दुर्गावती के समकालीन दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अकबर के एक दरबारी लेखक हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के जीवन और शासन आदि पर रोज लिखा करते थे और उसी डॉक्यूमेंट को हम किताब के रूप में देखते हैं, आईने अकबरी।
1: जी।
2: तो इस आईने अकबरी किताब में भी रानी दुर्गावती का उल्लेख हमको मिलता है। और एक खास बात यह है कि आईने अकबरी में लिखा है कि गढ़ा का गोंड राज्य इतना समृद्ध था कि वहाँ के लोग हाथी और सोने की मोहरों से लगान चुकाया करते थे।
1: मतलब रानी तो रानी, लेकिन उनकी जो प्रजा थी वो भी बहुत समृद्ध थी।
2: जी हाँ।
1: और पूजा जी, एक खास बात जरूर है कि अनेक राज्य जो बहुत समृद्ध थे लेकिन उन्होंने प्रशासन बहुत अच्छा किया, शासन बहुत अच्छा किया, लेकिन धर्म का परचम उन्होंने लहराने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ बात कुछ अलग थी।
2: जी हाँ, बिल्कुल। तो भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका महत्व है।
1: जी हाँ।
2: तो हम जब अपने जीवन में धर्म कार्य करने ही हैं, है ना, आप यदि अच्छा पैसा कमाते हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप धर्म कार्य पे खर्च करें। तो रानी दुर्गावती ने जहाँ एक और गढ़ा राज्य को इतना समृद्ध कर दिया कि किसान और व्यापारी लगान सोने की मुद्राओं और हाथी से चुकाने लगे, तो दूसरी तरफ रानी ने धर्म कार्य में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब मठ मंदिर बनवाए। यह वह समय था जब 16वीं सदी में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहे थे और इसी का परिणाम था कि बड़े स्तर पर भक्ति आंदोलन भी चल रहे थे पूरे भारत में, और अनेक संत हुए जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए निश्चल भक्ति का मार्ग सुझाया था। तो ऐसे ही एक संत हुए इसी सदी में, बल्लवाचार्य जी महाप्रभु
1: जी।
2: तो श्री बल्लवाचार्य जी ने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की स्थापना की। आपके अनुयायी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं
1: जी।
2: और वे भगवान को बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं, उनकी लीलाएं बताते हैं, उसको गाते हैं। तो भगवान को वो एक बालक के रूप में दैनिक चर्या में पूजते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, है ना, ये भक्ति का एक तरीका है। और श्री बल्लवाचार्य जी महाप्रभु के ही एक बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं सूरदास
1: जी।
2: सूरदास का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो संत श्री बल्लभाचार्य के उपरांत पुष्टि मार्गे संप्रदाय के अगले गोस्वाई हुए उनके पुत्र थे विट्ठल नाथ जी।
1: जी
2: तो विट्ठल नाथ जी जो थे वो धर्मांतरण रोकने और पुष्टि मार्ग के द्वारा लोगों को अपने धर्म में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे
1: जी।
2: और इसी उद्देश्य से वो अनेक यात्राएं करते थे
1: जी।
2: तो एक बार विट्ठल नाथ जी ब्रज से यात्रा करते करते दक्कन की ओर जा रहे थे
1: जी।
2: तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको दक्कन की तरफ जाना है तो एक रास्ता जबलपुर से होकर गुजरता था
1: जी।
2: तो जब विट्ठल नाथ जी ब्रज से दक्कन की ओर जा रहे थे तो वो जबलपुर में रुके।
1: तो देखिए मतलब ये संयोग बनते जा रहे थे कि उनकी समृद्धता और बढ़ती जाए गढ़ा राज्य की, और इतने बड़े जो संत थे उनकी चरण रज जबलपुर में पड़नी थी तो पड़ी।
2: जी हाँ, जब विट्ठल नाथ जी जबलपुर गढ़ा पधारे
1: जी
2: तो रानी दुर्गावती उनके आशीर्वचन लेने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी बैठक में आई, और आशीर्वचन पाने के बाद रानी दुर्गावती ने संत विट्ठल नाथ जी को गढ़ा के 108 ग्राम दान दिए।
1: वाह।
2: जिससे कि वो उन गांवों से जो राजस्व प्राप्त होता था उसको वो अपनी यात्राओं और धर्म कार्य के लिए प्रयोग कर पाए। लेकिन विट्ठल नाथ जी दान नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक रानी से ग्राम दान लेने से इनकार कर दिया
1: जी।
2: अब विट्ठल नाथ जी जब आगे बढ़े गढ़ा से और दक्कन की ओर यात्रा करते हुए तेलंगाना पहुंचे, तब वहां पर लिंगायत ब्राह्मणों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होते हुए उन्होंने देखा। उन्हें धर्मांतरित होने या राज्य से निकाले जाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तब विट्ठल नाथ जी उनका सहारा बने, उन्होंने लिंगायतों के एक बड़े समूह को अपने साथ ले लिया और वह ब्रज की ओर जाने लगे। तो ब्रज की ओर वापसी करते हुए वो एक बार फिर गढ़ा रुके,
1: फिर उनका आगमन यहाँ हुआ।
2: जी हाँ, फिर आगमन हुआ। तब उन्होंने रानी दुर्गावती से इस बारे में चर्चा की कि ये लिंगायत ब्राह्मणों की समस्या है, इनका क्या किया जाए। तब रानी दुर्गावती ने जो वो 108 ग्राम दान देना चाहती थी वो उन ग्रामों में इन लिंगायत ब्राह्मणों को बसा दिया।
1: वाह, तो ऐसे रानी दुर्गावती जी की भी इच्छा की पूर्ति हो गई और उन्होंने दान ना लेने का संकल्प लिया था लेकिन वो लिंगायत ब्राह्मणों की मदद करना चाहती, तो दोनों काज हो गए वहां।
2: दोनों
1: पर
2: काज हुए
1: जी।
2: तो आज भी जैसे नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है गोपालपुर
1: जी,
2: और भी बहुत सारे गांव हैं, यहां पर बहुत सारी मढ़िया और चबूतरे दिखते हैं जिन पर शिवलिंग रखा होता है, शिवलिंग स्थापित होता है। ये सभी लिंगायतों के द्वारा उस समय बनाए हुए हैं जो आज तक हैं, और आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमको जबलपुर में लिंगायत ब्राह्मण मिल जाएंगे
1: जी,
2: जो उसी समय में आकर यहाँ बसे थे।
1: आपने पिछले बार जिक्र किया था उनके द्वारा जो बनाए गए जो मठ और मंदिर थे उनकी एक विशिष्ट शैली थी, उस शैली के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
2: रानी दुर्गावती के काल में मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकसित हुई
1: जी,
2: और इसे पचमठा कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पच मतलब पांच और मठ यानी मठ, मठ यानी जहाँ पर विद्या अध्ययन होता है, शास्त्रार्थ होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, बांचे जाते हैं, उसे मठ कहते हैं। तो आप यदि कभी जबलपुर गए हों और भेड़ाघाट गए हों जहाँ नर्मदा बड़े जोर से बहती हैं, तो वहाँ सड़क किनारे एक पचमठा मंदिर दिखाई देता है
1: जी।
2: यह एक शिव मंदिर है। मंदिर एक ऊंची जगती पे यानी एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है, और मंदिर में पांच गर्भगृह हैं। आप सामान्य तौर पे जिन मंदिरों में अंदर जाते हैं तो गर्भगृह एक होता है, यहाँ पर पांच गर्भगृह होते हैं। यानी बीच में एक बड़ा गर्भगृह होता है और उसमें शिवलिंग प्रतिष्ठापित होता है, और इस गर्भगृह के चारों ओर एक मंडप होता है जिसमें स्तंभ लगे होते हैं, तो जिसके अंदर से हम प्रदक्षिणा लेते हैं, और इस मंडप से होते हुए जब हम प्रदक्षिणा लेते हैं तो जब हम जाएंगे तो चारों कोनों पर चार और छोटे छोटे गर्भगृह मिलते हैं। जबलपुर का ये भेड़ाघाट का जो पचमठा है इसके ये जो चारों छोटे गर्भगृह हैं ये अष्टकोणीय हैं, और इनमें भी चारों में शिवलिंग स्थापित है।
1: अच्छा।
2: और जो गर्भगृह की छत है वो गुंबजाकार है। गर्भगृह की दीवारों को सुंदर ताखों और मेहराबों से सजाया गया है। इस प्रकार इसमें एक बड़ा और चार छोटे यानी कि कुल मिलाकर पांच गर्भगृह होते हैं, इसलिए ये पचमठा कहलाता है, और यहाँ पर शिक्षा अध्ययन हुआ करता होगा इसलिए इसे मठ कहते हैं।
1: और यहाँ पर जैसे विट्ठल दास जी आए तो उनका क्या प्रभाव यहाँ पर नजर आता है?
2: विट्ठल जी का प्रभाव हमको इस तरीके से दिखता है कि एक तो लिंगायत जब उनके साथ में आए
1: जी
2: तो अनेक शैव मंदिर मठ मढ़िया बनी
1: जी
2: जो अभी भी हैं।
1: बिल्कुल।
2: इसके साथ ही हमको कृष्ण भक्ति का भी बड़ा जोर यहाँ पर दिखाई देता है और अनेक मंदिर बनते हैं। तो जो पचमठा शैली है उसमें वैष्णव मंदिर भी हमको जबलपुर में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। जैसे गोपालपुर में है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गोपालपुर में ही एक और पचमठा मंदिर भी है, वहाँ श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में पूजे जाते हैं, बड़ी मनमोहक प्रतिमा है छोटी सी इसमें। इसी तरीके से एक तिलवारा घाट में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लमेटा घाट पे राधा कृष्ण मंदिर है, आधारताल जबलपुर में भी एक महालक्ष्मी मंदिर है, ये सब वैष्णव मंदिर है।
1: और ये जो सारे मंदिर है उनकी जो कहानी है वो गोंड शासन काल से जुड़ी हुई है।
2: जी हाँ, ये सभी रानी दुर्गावती के काल में बने हुए हैं।
1: जी,
2: इसी तरीके का एक मंदिर गोपालपुर में, जैसा मैंने कहा कि दो मंदिर हैं गोपालपुर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर।
1: जी,
2: तो जो पहला मंदिर है वो भी नर्मदा नदी के किनारे है गोपालपुर में, और इसमें क्या खास है कि नदी के तट पर पानी के अंदर
1: जी
2: दो कुंड बने हैं जिन्हें एकादशी कुंड कहते हैं।
1: अच्छा,
2: तो यहाँ एकादशी के दिन विशेष स्नान होता है और आसपास के सारे श्रद्धालु स्नान करने दर्शन करने के लिए यहाँ पर आज भी आते हैं। ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। ये मंदिर भी पचमटा शैली में है। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सामने एक मुखमंडप है, मुखमंडप में चार स्तंभ लगे हैं। इसमें भी जब आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा गर्भगृह है और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा है, और यहाँ से आप प्रदक्षिणा लेते हुए जाते हैं तो चारों कोनों पर फिर छोटे छोटे चार गर्भगृह हैं।
1: जी,
2: इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है जिसकी पर्व त्योहारों पर बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। इस मंदिर के आसपास और भी बहुत सारी मड़िया हैं, चबूतरे हैं, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जैसा मैंने बताया था कि लिंगायतों ने ये स्थापित की थी वो आज भी है।
1: लेकिन गोपालपुर में ही जो दूसरा पचमठा शैली का मंदिर है वो पहले वाले मंदिर से किस प्रकार से अलग है?
2: हाँ, ये जो दूसरा मंदिर है ये थोड़ा सा अंतर है। इसमें वैसे ही पांच गर्भगृह हैं, एक बड़ा और चार छोटे, लेकिन इसकी जो छत है वो गुंबजाकार नहीं है बल्कि वो शंकुकार का है।
1: अच्छा,
2: ट्रायंगल जैसा।
1: जी,
2: और बड़े गर्भगृह के चारों ओर दो छोटे छोटे गर्भगृह हैं, उनकी छत केवल स्तंभों पर टिकी, यानी जो छोटे गर्भगृह हैं उनमें दीवारें नहीं बनाई हैं, वो सिर्फ स्तंभों पर आधारित है उसकी छत। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी शिव मंदिर हैं, जैसे एक मंदिर है तिल भंडेश्वर मंदिर, यहाँ पर हम जाएंगे, ये भी नर्मदा के किनारे है और ये मंदिर एक ऊंचे स्थान पे बना हुआ है।
1: जी,
2: इस मंदिर में भी पांच मंदिरों का एक समूह है और एक ये बड़े प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एक मंडप आएगा और इसमें बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हैं, तीन ओर से इसमें प्रवेश कर सकते हैं।
1: जी,
2: मंडप के उपरांत हम देखते हैं कि एक गर्भगृह आता है। गर्भगृह के चारों कोनों पर चार लघु मंदिर हैं क्योंकि ये भी पचमठा मंदिर है, और मुख्य गर्भगृह की जो द्वार शाखा है ना, जो द्वार होता है उस पर एक सुंदरता के लिए कुछ चीजें उकेरते हैं तो उसे द्वार शाखा कहते हैं, तो वो भी बड़ी अलंकृत है, बड़े सुंदर सुंदर उसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। और जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग का जब अभिषेक होता है, उनका श्रृंगार होता है तो मुखलिंग की तरह होता है, उन्हें सजाया भी जाता है। और गर्भगृह की जो छत है वो गुंबजाकार है और मुख्य गुंबज के चारों ओर एक और चीज ऐड होती है इसमें। जैसे हम पचमठा मंदिर जब हम देखते हैं तो उसमें एक विकास क्रम दिखता है कि जब पहली बार बना तो ऐसा बना, फिर अगली बार उसमें डेकोरेटिव फीचर्स पड़ते चले जाते हैं।
1: जी, जी।
2: ये विकास क्रम को जानने का एक तरीका भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गुंबज है, जो मेन गुंबज है, उसके चारों ओर फिर छोटे छोटे गुंबज भी चार बन गए हैं।
1: जी।
2: तो आगे आगे जैसे हम और जो आगे आने वाले राजा हैं जब उनका स्थापत्य कला देखेंगे तो फिर इसमें भी और भी इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे मंदिर हमको आसपास दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा के किनारे ही गोंड काल का एक हनुमान मंदिर भी है, ये तिलवारा घाट पर है। इस मंदिर में भी जब हम, ये एक मढ़िया की तरह दिखाई देता है, इसमें एक गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर एक गुंबजाकार छत है और छोटे छोटे आले बने हुए हैं। अगर बाहर से प्रवेश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब प्रवेश करते हैं तो बाहर दो हनुमान की प्रतिमाएं हैं।
1: अच्छा।
2: हाँ, और अंदर जो है वो शिवलिंग स्थापित है, तो ये कहलाता हनुमान मंदिर है। इस तरीके के बहुत सारे मंदिर गोंड काल के हमको दिखाई देते हैं। एक और मंदिर है यहीं पर ही तिलवारा घाट में, वो शिव मंदिर है। उसकी भी जो जगती है वो काफी ऊंची है और उस पर भी इसी तरीके का एक मंदिर बना है जिसमें एक गर्भगृह है, उसकी गुंबजाकार छत है और उसमें भी कई सारी जैसे ब्रह्मा विष्णु और सूर्य की प्रतिमाएं, सूर्य की प्रतिमाएं बड़ी कॉमन है गोंड काल में।
1: अच्छा।
2: हाँ, ब्रह्मा की प्रतिमाएं भी मिलती हैं। हालांकि दूसरे मंदिरों में लगभग समाप्त सी हो गई ब्रह्मा की प्रतिमाएं बननी, लेकिन यहाँ गोंड काल में खूब सारी ब्रह्मा लक्ष्मी और सूर्य की प्रतिमाएं खूब सारी मिलती हैं। इस तरीके के अनेक मंदिर यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं।
1: तो पूजा जी, जैसे कि अनेक मंदिरों मठों का निर्माण तो कराया ही रानी दुर्गावती ने, लेकिन जो पहले से ही उनके शासनकाल के पहले से ही जो प्राचीन मंदिर थे, कहते हैं कि उनमें से भी बहुत सारे मंदिरों मठों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया है।
2: ऐसे बहुत सारे हमको उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि रानी दुर्गावती के काल में यानी गोंड काल में जीर्णोद्धार हुआ जो प्राचीन मंदिर थे। जैसे कि बिलहरी यानी कि कटनी में एक तापसी मठ है जो बहुत प्राचीन है, उसका भी जीर्णोद्धार रानी दुर्गावती ने करवाया था। इसके अलावा भेड़ाघाट जबलपुर पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, है ना,
1: बिल्कुल मुख्य आकर्षण भी है,
2: बहुत आकर्षण। और हम सब जानते हैं कि जो गोंड राजा हुए संग्राम शाह, उन्होंने भी बाजना मठ बनवाया था। तो ये जो 64 योगिनी मंदिर है, ये बना तो कलचुरी काल में था 10वीं-11वीं सदी में, लेकिन 16वीं सदी तक आते आते इस मंदिर में काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो रानी दुर्गावती के काल में इस वृत्ताकार मंदिर जो है, इस वृत्ताकार मंदिर के मध्य में एक उमा महेश्वर मंदिर है
1: जी।
2: तो इसका मंडप किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो रानी दुर्गावती ने इस मंडप का जीर्णोद्धार कराया था। अगर हम देखेंगे तो बाकी का मंदिर तो कलचुरी काल का है, लेकिन मंडप के ऊपर एक डेकोरेटिव पीस है जिसको तिवाड़ी कहते हैं।
1: अच्छा।
2: तो वो तिवाड़ी जो है वो रानी दुर्गावती के काल में ही मंदिरों में बनना आरंभ हुई।
1: यानी इस मंदिर में कलचुरी काल की भी झलक हमें देखने को मिलती है और जीर्णोद्धार के कारण गोंड शासन काल की भी झलक देखने को मिलती
2: बिल्कुल
1: है। दो अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों का मिलन है,
2: कलचुरी और गोंड, दोनों संस्कृतियों का संगम कहिए
1: जी।
2: तो हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी ना, तो ये जो तिवाड़ी की मैंने बात की
1: जी,
2: तो ये एक सुंदरता के लिए बनाई जाती है, मतलब समझिए एक छोटी सी अलमारी होती है जिसका छोटा सा एक दरवाजा होता है।
1: अच्छा।
2: तो अगर आप ब्रज के, वृंदावन के या ये जो हवेली मंदिर होते हैं ना कृष्ण के, इनमें जाएंगे ना तो ये तिवाड़ी जो गर्भगृह होता है जहाँ कृष्ण की मूर्ति स्थापित होती है, उसके ऊपर एक तिवाड़ी होती है जिसमें ग्रंथ रखते हैं।
1: अच्छा।
2: प्राचीन तिवाड़ यानी किवाड़ भी होता है।
1: अच्छा।
2: हाँ,
1: एक ऐसी अलमारी जिसमें कुछ किवाड़ जैसा लगा हो।
2: हाँ, लगा होता है, उसमें प्राचीन ग्रंथ रहते हैं। तो एक ऐसी भी मान्यता है कि ये जो तिवारी सरनेम आया है ना
1: जी,
2: ये इसी तिवाड़ी से आया है।
1: वाह, क्या इंटरेस्टिंग बात है पूजा जी।
2: जो इन ग्रंथों को पढ़ा करते थे उसमें से निकाल कर
1: जी
2: कृष्ण की जो सेवा भक्ति करते थे, वहीं से फिर वो तिवारी कहलाने लगे।
1: क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूजा जी। ये जो आपने बात बताई कि तिवाड़ी जो एक अलमारी जैसी चीज थी जिसके ऊपर किवाड़ लगा होता था, वो किवाड़ी से फिर कहीं तिवाड़ी हुआ और आप कह रहे हैं कि वहां से वो तिवारी सरनेम तक बात आ पहुंची, तो न जाने हमारे आने वाले एपिसोड्स में हमारे श्रोताओं को आप और कौन कौन से राज से रूबरू कराने वाली हैं, कौन कौन से राज से आप पर्दा उठाने वाली। हमारे साथ हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, इनसे बातचीत हम कर रहे हैं कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, गोंड शासनकाल की बात जारी रहेगी, रानी दुर्गावती की बात जारी रहेगी कि उन्होंने किस तरह से अपने शासनकाल में, पूजा जी बता रही हैं कि मंदिरों का, मठों का काम कराया, राज्य में प्रगति कराई, किस तरीके से उन्होंने नदियों का काम किया, नहरों का काम किया, जल स्रोतों के लिए काम किया, और भी उनके किए गए अभूतपूर्व कार्यों की बात करेंगे, उनके साहस की, उनकी वीरता की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से इतिहास

0: ख्वाजा अहमद का मिशन। जब मुगल दूत डच राजधानी पहुंचा, 3 मार्च 1665 को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी के समुद्री साम्राज्य के तंत्रिका केंद्र बटाविया कैसल के डॉक पर कदम रखा। उसका नाम ख्वाजा अहमद था और वह कोई व्यापारी नहीं था, बल्कि वे बंगाल के शक्तिशाली सूबेदार और मुगल शासक औरंगजेब के मामा शाइस्ता खान का कूटनीतिक दूत था। जहां इतिहास एशियाई दरबारों में यात्रा करने वाले यूरोपीय राजदूतों के वृतांतों से भरा है, वहीं अहमद का मिशन इसके विपरीत था। यह एक मुगल दूत द्वारा यूरोपीय कंपनी राज्य की राजधानी की यात्रा का एक दुर्लभ उदाहरण था। यह मिशन प्रांतीय कूटनीति का एक सटीक उदाहरण था, जहां स्थानीय मुगल गवर्नर राजाओं की स्वायत्तता और वजन के साथ काम करते थे। ख्वाजा अहमद एक उच्च तनाव के क्षण में पहुंचा था। शाइस्ता खान चिटगांव बंदरगाह को जीतने और आराकान खत्म करने के लिए एक बड़े सैन्य अभियान की तैयारी कर रहा था। डच एक अनिश्चित स्थिति में थे। वे बंगाल में अपने व्यापार से भारी लाभ कमा रहे थे, लेकिन साथ ही वे शाइस्ता खान के दुश्मनों के क्षेत्रों में भी व्यापार कर रहे थे। अहमद ने डच सरकार के सामने एक पत्र और उपहार प्रस्तुत किए, जिसमें एक कड़ा अल्टीमेटम छिपा था। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, VOC को तुरंत अपनी आराकान फैक्ट्री बंद करनी होगी। चटगांव अभियान में जहाजों और तोपों के साथ मुगल सेना का समर्थन करना होगा। यदि डच इनकार करते तो शाइस्ता खान ने उन्हें न केवल बंगाल से निकालने की धमकी दी, बल्कि पूरे मुगल साम्राज्य में उनके संचालन को रोकने की चेतावनी दी। बटाविया में डच प्रशासक एक रणनीतिक दुविधा में फंस गए थे। हालांकि उन्होंने शुरुआत में व्यावहारिक विवरणों की कमी का बहाना बनाकर देरी करने की कोशिश की, लेकिन वे समझ गए थे कि वे दिल्ली में मुगल शासक से अपील करके शाइस्ता खान को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कंपनी के अधिकारियों का मानना था कि सूबेदार केंद्रीय दरबार से बहुत दूर रहता है और वो दिल्ली के किसी भी हस्तक्षेप से बहुत पहले ही प्रांतों में डचों को परिणाम भुगतने पर मजबूर कर सकता है। ख्वाजा अहमद का मिशन बंगाल के लिए एक बड़ी सफलता थी। पूर्ण व्यावसायिक विनाश के खतरे का सामना करते हुए VOC ने अंततः अराकान में अपना लॉज बंद कर दिया। यह दुर्लभ मिशन था कि शक्तिशाली दिखने वाली यूरोपीय कंपनियों को मौजूदा एशियाई सत्ता संरचनाओं के साथ आर्थिक और सैन्य रूप से तालमेल बिठाने के लिए मजबूर होना पड़ता था। बटाविया में ख्वाजा अहमद के आगमन ने साबित कर दिया कि 17वीं शताब्दी में ओरिएंट की रानी यानी बटाविया को अभी भी भारतीय उपमहाद्वीप के मालिकों को जवाब देना पड़ता था।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे AI पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि AI क्या है, AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है। अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MNIT मौलाना आज़ाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
1: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
2: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे। इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया, तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग भू संचार प्रौद्योगिकी इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा और उस इस्तेमाल को चूंकि मैं बाहरी था कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज़्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनेट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर नदी नाले पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का वो इसरो स्वयं ही करके देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। तो आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पर भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
1: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
2: सर ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नज़रों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज़ था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजिबल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कंप्यूटर था, जैसे TV था वो एक प्रोडक्ट था, लेकिन जैसे इंटरनेट है 2 कंप्यूटर्स के बीच में, चलिए इंटरनेट भी मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है वायर्स या वायरलेस, लेकिन AI जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे वो AI कुछ क्षणों में कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। ChatGPT आपने बोला, अब ChatGPT आने से पहले लेखकों के कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही AI है।
1: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे हैं, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा।
2: बिल्कुल।
1: तो क्या माने AI आने से लोगों के काम छिन गए?
2: देखिए कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा, क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क के, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए और उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज़्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रिडेवलप करना पड़ेगा। ये AI एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में AI के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे ज़रूरी रहेगा तीन चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक हैं और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
1: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
2: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे, वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज़ को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे हैं, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीज़ों या तकनीक के प्रति उनकी पहुँच जो है वो और सुविधायुक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है। ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है, तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ, देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
1: अनुग्रह जी, एक बात और, कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
2: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था। 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है, जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे। हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहाँ पे चर्चा हो रही थी, तो वहाँ पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के ही जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
1: जी।
2: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा, भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला, सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, एक घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर एक घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए। तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा, अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है, आपके आजू बाजू भी कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटो शूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर्स है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
1: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
2: हाँ,
1: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है, उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
2: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बांध लीजिए, आप ChatGPT खोल के उसमें लिखिएगा इमेजिन यू आर अ टीचर
1: जी,
2: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक IIM अ क्लास 10th स्टूडेंट
1: जी,
2: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम ए स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी ChatGPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है, मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं, वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया, मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है, और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रिडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है, और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द अगले वाक्य अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है, एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा, आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है, वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे एक पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागोजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई, और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
1: जी।
2: तो ये एआई का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा एआई के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि एआई समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो एआई कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो एआई बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो एआई सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि चैट जीपीटी से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, चैट जीपीटी से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
1: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज एआई पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर एआई है क्या, एआई कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
2: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की एआई पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी, ओ लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले हो प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी।
1: नमस्कार, मैं नितिन मुकेश, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
2: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
3: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आज़ाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
4: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
3: 29 जून 1864, कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र, एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
4: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थी, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थी।
3: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि ये बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
4: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
3: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई, एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
4: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई। इन सबके बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
3: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। ये उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी, लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था। उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
4: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
3: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
4: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
3: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
4: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोध पत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
3: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
4: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
3: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
4: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें, और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
3: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे, लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
4: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
3: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाएं नहीं बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें बल्कि एक नया विचार भी दें।
4: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
3: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना। उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
4: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
3: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
4: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीजगणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
3: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
4: श्रोताओं, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
3: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
4: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
3: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
4: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी। एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
3: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
4: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
3: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
4: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
3: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
4: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
3: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
4: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाले संस्थान नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
3: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
4: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
3: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
4: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा
3: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
4: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
3: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
4: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
3: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
4: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था, लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
3: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
4: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
3: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
4: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
3: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
4: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए। उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
3: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
4: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
3: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्र निष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
4: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
3: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
4: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
3: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
4: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
3: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
4: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
3: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
4: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
3: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था, लेकिन जितना बड़ा उनका पद था उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
4: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
3: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
4: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
3: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
4: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया चाहे वह कठिन ही क्यों ना हो।
3: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
4: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
3: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
4: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
3: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
4: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
3: उनकी स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
4: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
3: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
4: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
3: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
4: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
3: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
4: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: न जी भर के देखा न

0: नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने ट्यून किया 90.8 मेगा हर्ट्ज रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। वक्त हो चला है रेडियो रिपोर्ट का।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां रविवार को महफिल सजी पुराने नगमों की, जिसमें गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत लोगों के सामने पेश किए।

आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। अब वक्त है कार्यक्रम परिक्रमा का, आइए सुनते हैं। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में संस्कृत सप्ताह महोत्सव के तहत मंगलवार को नाट्य शास्त्र अध्ययन एवं अनुसंधान केंद्र के संस्कृत रंगमंडल ने कालिदास की कृति मेघदूतम की अभ्यास नाट्य प्रस्तुति दी। नाट्य निर्देशन रंगमंडल की समन्वयक विदुषी डॉक्टर संगीता गुंदेचा ने किया। प्रस्तुति में दिखाया गया कि विरह में तड़पता यक्ष मेघ को अपना दूत बनाकर प्रिय तक संदेश भेजता है। यक्ष मेघ को रामगिरी से नर्मदा, विदिशा, उज्जैनी, कुरुक्षेत्र और हिमालय होते हुए अलकापुरी पहुंचने का मार्ग बताता है। महाकाल की नगरी और कैलाश के दर्शन करते हुए मेघ अलकापुरी पहुंचता है और यक्ष का विरह संदेश प्रिया तक पहुंचाता है।

रंगश्री लिटिल बैलेट ट्रूप में रुद्राक्ष कल्चरल सोसाइटी द्वारा आयोजित नाट्य समारोह का भव्य समापन हुआ। अंतिम दिन रंगकुटी थिएटर सोसाइटी की ओर से एकल नाटक सफेद चांद का मंचन किया गया, जिसने दर्शकों को अंत तक बांधे रखा और सोचने पर मजबूर कर दिया। यह नाटक आरती विश्वकर्मा की कहानी पर आधारित है, जिसका नाट्य रूपांतरण और निर्देशन सुनील राज ने किया है। इस नाटक का मंचन शुक्रवार को होने वाला था, लेकिन शो के 2 घंटे पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिससे मंचन को स्थगित किया गया था। मंगलवार को शो हुआ। विडंबना से संग्राम तक रमा की संघर्ष गाथा कहानी रमा नाम की एक सीधी सादी विधवा औरत की है। पति के जाने के बाद 2 छोटे बच्चे और वृद्ध सास की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ जाती है। जीवन की नैया पार लगाने जब वह घर से बाहर कदम रखती है, तो समाज की घूरती नजरें और हवस भरी नीयत उसका रास्ता रोकने की कोशिश करती है। एक जवान विधवा को समाज अवसर की तरह देखने लगता है। यहीं से शुरू होता है रमा का खुद से और परिस्थितियों से संग्राम। पति शिव की डायरी के शब्द, मरना तो निश्चित है पर तय हमें करना है कि कैसे, जब जीना ही है तो क्यों ना लड़कर जी ले, और सास के कड़वे लेकिन सच्चे ताने रमा को संबल देते हैं। सास का ये संवाद कि जन्म देने वाली औरत इतनी कमजोर नहीं हो सकती, रमा के भीतर के डर को खत्म कर देती है। वह सफेद रंग की को मनुष्यत मानने के बजाय खुद को सफेद चांद की तरह निखारती है। शहर में बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक को राग और वाद्य यंत्रों पर तालमेल करते देखा जा सकेगा। रविंद्र भवन स्थित अंजनी सभागार में 26 अगस्त यानी आज शाम 5:30 से वार्षिक संगीत समारोह सौरात्सव 2026 आयोजित किया जा रहा है। बताया गया कि समारोह का मुख्य उद्देश्य भारतीय संगीत परंपरा, संस्कृति और संस्कारों को आगे बढ़ाना है। सांस्कृतिक संध्या में 5 वर्ष के बच्चों से लेकर 65 वर्ष तक के वरिष्ठ विद्यार्थी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। वे विभिन्न रागों पर आधारित गायन और वादन की प्रस्तुतियां देंगे। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय और सुगम संगीत की प्रस्तुतियां इस पूरे कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहेंगी।

एक बार फिर शहरवासी फिल्मी गीतों का लुत्फ उठा सकेंगे। दरअसल गुंजन फाउंडेशन का वार्षिक संगीतमय कार्यक्रम गीत गुंजन 5 सितंबर को रविंद्र भवन के अंजनी सभागार में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम की शुरुआत शाम 5 बजे से होगी। सदाबहार फिल्मी नगमों से सजी इस शाम में शहर के कलाकार सुरीली प्रस्तुतियां देंगे।

सरोजनी नायडू शासकीय कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय नूतन कॉलेज में श्रावण बंधन उत्सव मेला का आयोजन किया गया। अर्न वाइल यू लर्न तथा स्वामी विवेकानंद कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित मेले में छात्राओं ने हाथ से बनी राखियां, सजावटी सामान, फैशन अपैरल, मेहंदी, होममेड स्वीट्स, नमकीन ज्वेलरी तथा कोल्ड प्रेस्ड ऑयल के स्टॉल लगाए। मेले का उद्देश्य छात्राओं को रचनात्मक स्वरोजगार तथा उत्पादों से जोड़ना है। स्वर निषाद म्यूजिक एकेडमी द्वारा अक्षदा सोशल वेलफेयर सोसाइटी के सहयोग से वार्षिक संगीत समारोह स्वरोत्सव 2026 का आयोजन बुधवार को शाम 5:30 बजे किया जाएगा। ये थी आज की परिक्रमा। सुनते रहिए FM 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के।

0: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें। ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिलें और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
1: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
0: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
2: नमस्कार, आदाब। मैं हूं पिनाज मसानी और आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको, दिल में रख लो कि निगाहों में बसा लो मुझको।

0: रेडियो आजाद हिंद के सभी सुनने वालों फिनाज मसानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: श्रोताओं, आज का युग तेज है। हम तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुके हैं। एक स्पर्श में संसार हमारी हथेली पर आ जाता है। इसके अपने लाभ हैं, अपनी सुविधाएं हैं, पर कहीं ना कहीं इसकी एक अनकही कीमत भी है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी सुंदर रश्मि रथी का काव्य पाठ चल रहा था, अचानक से मैं ये सब क्या कहने लग गई। दरअसल मित्रों, एक समय था जब घरों में पुस्तकें खुलती थीं, कहानियां सांझ की दीप शिखा के साथ जीवित हो उठती थीं, दादी नानी के स्वर में इतिहास सांस लेता था। उन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार जन्म लेते थे। संस्कृति के प्रति सम्मान और साहित्य के प्रति अनुराग पनपता था।
1: आज वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती दिखाई देती है। इसका प्रभाव बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारी मानसिकता, हमारी संवेदना, हमारे धैर्य सब पर पड़ रहा है। अच्छा साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं होता, वो जीवन जीने की दृष्टि देता है, विचारों को दिशा देता है और चरित्र को गढ़ता है।
2: इसी उद्देश्य से तो हमने अपने श्रोताओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम काव्य गुंजन आरंभ किया है, ताकि हम अपने देश के महान साहित्यकारों और कवियों की रचनाओं से पुनः जुड़ें, उनके संघर्ष, उनके आदर्श और उनके चिंतन को आत्मसात कर सकें। जब हम ऐसी कृतियों को सुनते हैं ना, तो केवल कथा नहीं सुनते, हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। तो आइए श्रोताओं, उसी चेतना के साथ बढ़ते हैं चतुर्थ सर्ग के अंतिम अंशों की ओर।
1: और आज चतुर्थ सर्ग के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हुए हम केवल काव्य पाठ नहीं करेंगे, हम उस धड़कन को सुनेंगे जो इतिहास के सीने में गूंजती है। देवता और मानव आमने सामने हैं, पर ये टकराव शस्त्रों का नहीं, संकल्पों का है। दिनकर जी ने विभिन्न लेखों और साक्षात्कारों में यह स्पष्ट कहा था कि उनका कर्ण के प्रति विशेष आकर्षण था। दिनकर जी कर्ण को केवल पौराणिक पात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय और उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक मानते थे। दिनकर जी स्वयं कर्ण के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे उसे केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि उस मनुष्य का प्रतीक मानते थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पौरुष और आत्मसम्मान के बल पर खड़ा रहता है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को विस्तृत कीजिए, क्योंकि आगे जो घटित होगा वो त्याग का वो स्वर है जिसे समय भी मौन होकर सुनता है। आइए वापस चलते हैं उसी गंगा के तट पर, जहां देवराज इंद्र खड़े हाथ फैलाए कर्ण के समक्ष, और कर्ण मानो स्वयं में तीनों लोक का सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग का भाग 6 का काव्य पाठ और चर्चा।
3: भुज को छोड़ ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं। ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन के दारुण व्रत का। जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है, विजय दान करता ना प्राण को रख कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं, पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा? इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा? अब जाकर कहिए, पुत्र मैं प्रथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है, और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को, उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है, दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा।
2: यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में।
1: चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे, सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में, अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला, क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, ज्यों के त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से, पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है, अहंकार वश इंद्र सरल नर को छलने आए थे, नहीं त्याग के महा तेज सम्मुख जलने आए थे, किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में, झुका शीश आखिर विबोले,
4: अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं, पुत्र सत्य तूने पहचाना मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं, देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर, क्या कह करूं प्रबोध जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगूं क्षमादान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं, दे पावन पद धूलि कर्ण दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भवर में मति है, नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा, मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा, तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं, कर्ण सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं, आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांह भी तेरी, तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं, घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा, नर जीता सुर हारा।
2: जब कर्ण ने कृपाण उठाई वह केवल देह भेदन का क्षण नहीं था, वह तपस्वी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी, जैसे आदित्य अपने ही अंश का तेज उतार कर जगत को समर्पित कर दे वैसे ही उसने कवच कुंडल शरीर से विलग कर दिए और पीड़ा समाधि से स्थिर स्वर्ण का आवरण उतरा, किंतु आत्मतेज सहस्र गुना दीप्त हो उठा। उस मार्मिक दृश्य में प्रतीत होता है मानो कवि ने केवल वर्णन नहीं किया, स्वयं कर्ण को ही जी लिया हो। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य तपस्या की चरम परिणति है।
1: उस क्षण देवराज की स्थिति भी विचित्र हो उठी, जैसे मेघ अपने ही गर्जन से चौंक जाए, जैसे वज्रधारी के हाथ से वज्र ही भारी पड़ जाए, वैसे ही इंद्र कर्ण के त्याग के सम्मुख स्तब्ध रह गए। उनका मुखमंडल मानो ग्रहण ग्रस्त चंद्र सा मलिन पड़ गया। देवलोक का अधिपति वहां एक संकोच ग्रस्त मनुष्य सा खड़ा था, जो छल लेकर आए थे वही त्याग की ज्वाला में दग्ध हो उठे। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की ऊंचाई अचानक झुक गई हो और धरती का एक वीर आकाश से भी अधिक विराट हो गया हो।
2: श्रोताओं, आज के समय में जब लोग सफलता के लिए समझौते करने को तैयार हो जाते हैं ना, तो कर्ण का चरित्र हमें यहाँ ये सिखाता है कि चरित्र की ऊंचाई पद या शक्ति से बड़ी होती है। उसके पास जीवन बचाने का अवसर था, किंतु उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और इंद्र का झुकना हमें ये बताता है कि कभी कभी अधिकार और पद भी नैतिकता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। सच्ची विजय वही है जहां मनुष्य अपने मूल्यों पर अडिग रहे, चाहे परिणाम उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसलिए इस प्रसंग की शिक्षा सरल है, शक्ति जन्म से नहीं चरित्र से बनती है, और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है।
1: मित्रों, सचमुच यह क्षण केवल एक दान का प्रसंग नहीं, मनुष्यता के गौरव का महोत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भी इस दृश्य को निहार कर विस्मित रह गई हो। दिशाओं में जो ध्वनि गूंज रही है उसे प्रशंसा कहें, वंदना कहें या विजय घोष, क्योंकि आज एक मनुष्य अपने त्याग से देवताओं के समकक्ष नहीं उनसे भी ऊंचा दिखाई देता है। कर्ण ने कवच और कुंडल देकर केवल अपना शरीर नहीं हल्का किया, उसने दान की परिभाषा को ही विस्तृत कर दिया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, रश्मि रथी की यात्रा अभी आगे बढ़नी है और कर्ण का संघर्ष भी अभी अधूरा है। उसका युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं उस दिन आरंभ हो गया था जब उसे अपने ही भाग्य से जूझना पड़ा था। अब अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे चतुर्थ सर्ग के अंतिम पड़ाव में, जहां सुनेंगे भाग 7 का काव्य पाठ।
4: हाँ हाँ, पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जानबूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिखेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वत्व अपना यह कहकर जतलाती है। इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है, सूर्य पुत्र ये नहीं कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी मैं कुटिल प्रवन चक्र, तू पवित्र मैं पापी, तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी, तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है, देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा, तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं, अतः कर्ण कर कृपा यहां से मुझे तुरंत जाने दो, अपने इस दूरदर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो, मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो।
2: तब कर्ण ने कहा,
5: धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर, देवराज अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर, बस आशीष दीजिए धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो वही मुकुट हो वही कवच कुंडल हो।
2: तब देवराज बोले,
4: कर्ण यदि धर्म तुझे छोड़ेगा निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा, और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से, अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से, धर्म नहीं मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा, पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा, तू मांगे कुछ नहीं किंतु मुझको अवश्य देना है, मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है, ले ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है, एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा, अतः वत्स मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो, लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।
1: दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं, दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, गया कर्ण निज घर को।
2: श्रोताओं ये प्रसंग केवल इंद्र और कर्ण का संवाद नहीं है, ये मनुष्य और देवत्व के बीच खड़ी उस अदृश्य रेखा का प्रसंग है जहां आकर सारे मानदंड बदल जाते हैं। देवराज इंद्र स्वयं अपराध बोध से भरे खड़े हैं और कर्ण सब कुछ देकर भी निर्भर निर्विकार और उज्जवल दिखाई देता है, यही तो इस प्रसंग का चमत्कार है। दान देने वाला छोटा नहीं हुआ, लेने वाला बड़ा नहीं हुआ, उल्टे दान ने कर्ण को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर इंद्र स्वयं अपनी ओर देखने में संकोच अनुभव करते हैं। लोक में कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है, कर्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही है, अपमान की अग्नि उपेक्षा की धूप और संघर्ष की आंधियों ने उसे जलाया अवश्य, परंतु अंततः वही अग्नि उसके व्यक्तित्व को कुंदन बना गई।
1: मित्रों राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात कह रहे हैं, वे ये नहीं दिखा रहे कि कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए, वे ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि वो क्या छोड़ सकता है इसमें निहित है। संग्रह सहज है, त्याग कठिन, मुट्ठी बांधना सरल है, हाथ खोलना कठिन। और जब कोई मनुष्य अपने प्राणों की सुरक्षा तक दान कर दे, तब वो केवल दानी नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है। कर्ण का तेज इसी त्याग से जन्मा है। इसीलिए इंद्र कहते हैं, जहां तुम पहुंच गए हो वहां देवत्व भी नहीं पहुंच सकता। कितना विलक्षण कथन है। दिनकर जी मानो कह रहे हो कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ पर विजय पा लेता है, तब वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है।
2: और यहाँ इस प्रसंग की एक और बात अत्यंत स्पर्श करती है। जब इंद्र वर मांगने को कहते हैं, तब कर्ण धन, राज्य, विजय या आयु नहीं मांगता। वह केवल ये प्रार्थना करता है कि धर्म में उसका भाव अचल रहे। कितना विशाल चिंतन है ये। सामान्य मनुष्य संकट के समय सुरक्षा चाहता है, कर्ण धर्म चाहता है। वह कवच नहीं मांगता, वह आस्था मांगता है। वह रक्षा नहीं मांगता, वह निष्ठा मांगता है। मानो कह रहा हो कि यदि धर्म साथ है तो कवच की आवश्यकता नहीं, और यदि धर्म साथ नहीं है तो कवच भी व्यर्थ है। यही भारतीय चिंतन की आत्मा है, जहां बाहरी शक्ति से अधिक महत्व भीतरी स्थिरता को दिया गया है।
1: आज के समय में जब मनुष्य का मूल्य प्रायः उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव से आंका जाने लगा है, तब कर्ण का ये प्रसंग हमें भीतर झांकने को विवश करता है। हम क्या बचा रहे हैं और किसके लिए बचा रहे हैं? जीवन भर हम जोड़ते रहते हैं धन, वस्तुएं, संबंध, पहचान, परंतु में मनुष्य को बड़ा उसका संग्रह नहीं बनाता, उसका समर्पण बनाता है। नदी इसलिए पूजनीय नहीं कि वो जल रोक कर रखती है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। कर्ण भी उसी नदी की तरह है, देता जाता है, देता जाता है, और जितना देता है उतना ही विराट होता जाता है। और शायद यही कारण है कि दिनकर जी ने कर्ण को अपना नायक बनाया। महाभारत में विजेता और भी हैं, राज सिंहासन पाने वाले और भी हैं, पर कर्ण जैसा चरित्र दुर्लभ है। वो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से बनती है। जन्म उसके हाथ में नहीं था, अपमान उसके हाथ में नहीं था, समाज का व्यवहार उसके हाथ में नहीं था, पर उसका आचरण उसके हाथ में था, और उसने वही चुना जिस उसका व्यक्तित्व अमर हो गया। यही रश्मिरथी का मर्म है और यही दिनकर जी का संदेश है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग का सबसे मार्मिक पक्ष शायद यही है कि यहाँ दान समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा आरंभ करता है। कवच कुंडल शरीर से अलग हुए हैं, किंतु कर्ण का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा है। देवराज अमोघ शक्ति देकर लौट गए, किंतु इस संवाद के बाद हमारे मन में जो प्रश्न, जो भाव, जो प्रेरणा शेष रह जाती है, वही इस काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि महान साहित्य वही होता है जो कथा समाप्त होने के बाद भी भीतर कुछ बोलता रहे। और इसी भावपूर्ण क्षण के साथ चतुर्थ सर्ग का ये अध्याय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। दान की यह ज्योति, धर्म की ये दृढ़ता और चरित्र की ये ऊंचाई आने वाले प्रसंगों में भी हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। सच ही तो कहा गया है, समय साम्राज्यों को भुला देता है, किंतु त्याग की कथाओं को नहीं। कर्ण का कवच न रहा, कुंडल न रहे, परंतु उसकी कीर्ति का कवच आज भी अक्षत है। यही उसकी विजय है, यही उसकी अमरता है। श्रोताओं, कभी कभी सिर्फ मौन रहने का ही मन होता है। ऐसे काव्यांश को सुनकर लगता है कि उसी चिंतन में रहें। सुनने वाले भी जैसे सब कुछ हार जाते हैं, हृदय में मानो इतिहास के वो पन्ने अंकित हो जाते हैं। उन्हीं पन्नों पर मनोरथ दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ रहा है रश्मि रथी का रथ। और देखिए कैसी अद्भुत दृष्टि रही कवि की, जिसने इस क्षण को केवल युद्ध कथा नहीं रहने दिया, बल्कि मानव गरिमा का घोष बना दिया। हाँ, यह शब्दों का नहीं, आत्मा का चित्रण है। जिस तरह कर्ण का तेज सबके सामने आता है, लगता है कवि ने उसे देखा ही नहीं, जिया है। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की महिमा है।
1: मित्रों, आज हमने उस अद्भुत प्रसंग को सुना जहां देव राजेंद्र स्वयं याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आए और उनसे जन्मजात कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण सब कुछ जानते थे, वे ये भी जानते थे कि ये दान उनके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा छीन लेगा। फिर भी उन्होंने अपने वचन, अपने धर्म और अपनी दानशीलता को जीवन से अधिक महत्व दिया। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत के महान योद्धा नहीं रहते, बल्कि त्याग, स्वाभिमान और आदर्श के शिखर पुरुष बन जाते। तो मित्रों, आज की सीख सरल है। सम्मान पद से नहीं, आचरण से मिलता है, और विजय परिणाम में नहीं, निर्णय में छिपी होती है। अब आगे का सर्ग और भी कठोर प्रश्न लेकर आएगा। रण समीप है और आदर्श की अग्नि परीक्षा अभिशेष है। तो अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर आपसे होगी भेंट, जहां आरंभ होगा रश्मि रथी का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी पंचम सर्ग। वहां एक मां का पश्चाताप है, एक पुत्र का स्वाभिमान है, और नियति के सबसे करुण अध्यायों में से एक हमारा इंतजार कर रहा है। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा, और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी आपकी रेडियो सखी भगवती सक्सेना ने,
4: मैं प्रवीण महुआले,
6: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: तो दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है

0: नमस्कार, मैं हूं रूप कुमार राठौड़। 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। जय हिंद।
1: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आज़ाद हिंद। मैं आपका दोस्त दीपक निमा
2: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
1: कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में आज हम बात करेंगे भारत के गौरव और विश्व विज्ञान के महान स्तंभ प्रोफेसर हरगोविंद खुराना जी के बारे में। विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मानवता की समझ को मूलभूत रूप से बदल दिया है। प्रोफेसर हरगोविंद खुराना उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले इस महान वैज्ञानिक की जीवन यात्रा एक छोटे से पंजाबी गांव से शुरू होकर विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान नोबेल पुरस्कार तक पहुंची। उनका जीवन कठिन परिश्रम, समर्पण, दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक अनुपम उदाहरण है।
2: श्रोताओं, हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर नामक एक अत्यंत ही छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव मुल्तान जिले में स्थित था जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। उनके जन्म के समय ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था और अविभाजित भारत के पंजाब की धरती पर बसा एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र था। हरगोविंद खुराना के पिता का नाम श्री गणपत राय खुराना और माता का नाम श्रीमती कृष्ण देवी था। उनके पिता गांव के पटवारी यानी राजस्व अधिकारी थे जो एक सरकारी पद था, लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं था। उस समय पटवारी का काम भूमि रिकॉर्ड रखना, राजस्व संग्रह में सहायता करना और गांव के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता था।
1: परिवार में हरगोविंद सबसे छोटी संतान थे। उनके चार बड़े भाई बहन थे जिनमें से एक बहन और तीन भाई थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन गणपत राय खुराना शिक्षा के महत्व को गहराई से समझते थे। उस समय के ग्रामीण भारत में, विशेषकर एक साधारण पटवारी के परिवार में, शिक्षा को इतनी प्राथमिकता देना असामान्य था। लेकिन गणपत राय जी दूरदर्शी थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया।
2: रायपुर गांव अत्यंत छोटा था, इतना छोटा कि वहां केवल 100 परिवार ही रहा करते थे। गांव में कोई उचित स्कूल भी नहीं था। शिक्षा की सुविधा केवल एक शिक्षक के रूप में थी जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। ये प्रारंभिक शिक्षा की अत्यंत सीमित व्यवस्था थी, लेकिन यहीं से हरगोविंद खुराना की शिक्षा यात्रा आरंभ हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार में केवल उनके पिता ही साक्षर थे, उनकी माता और अन्य परिवार जन पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय के ग्रामीण भारत की ये सामान्य बात हुआ करती थी। इस परिस्थिति में उनके पिता का शिक्षा के प्रति समर्पण और भी प्रशंसनीय हो जाता है।
1: हरगोविंद खुराना की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही उस एकमात्र शिक्षक से शुरू हुई, लेकिन उनके पिता जानते थे कि बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें बड़े शहर भेजना होगा। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मुल्तान भेजने का निर्णय लिया, जो उस समय पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर था। मुल्तान में हरगोविंद खुराना ने DAV दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में प्रवेश लिया। DAV स्कूल आर्य समाज द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान थे जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते थे। यहाँ उन्हें पहली बार औपचारिक और व्यवस्थित शिक्षा मिली। मुल्तान में रहकर पढ़ाई करना एक गरीब परिवार के लिए आर्थिक बोझ था।
2: युवा हरगोविंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आवास, भोजन और अन्य खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी प्रतिभा और लगन ने जल्द ही शिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो विशेष रूप से विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1943 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में प्रवेश लिया। लाहौर उस वक्त पंजाब की सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी हुआ करता था। पंजाब विश्वविद्यालय उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और 1943 में अपनी डिग्री हासिल की।
1: बीएससी में उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें स्नातकोत्तर एमएससी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। 1945 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। उनके एमएससी के परिणाम भी अत्यंत उत्कृष्ट थे। ये समय भारतीय इतिहास में अत्यंत उथल पुथल का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इन सभी परिस्थितियों के बीच एक गरीब परिवार से आए युवक का अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था।
2: एमएससी पूरी करने के बाद हरगोविंद खुराना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें भारत सरकार की ओर से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। ये उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी क्योंकि बहुत कम भारतीय विद्यार्थियों को यह अवसर मिलता था। 1945 में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें लिवरपूल विश्वविद्यालय में दाखिला मिला जो उस समय रसायन विज्ञान में शोध के लिए प्रसिद्ध था। वहाँ उन्होंने प्रोफेसर रोजर जे एस बियर के निर्देशन में पीएचडी का शोध कार्य शुरू किया।
1: प्रोफेसर बियर जैविक रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ थे और विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में काम कर रहे थे। ये वो क्षेत्र था जो आगे चलकर खुराना के करियर का केंद्र बनने वाला था। प्रोफेसर बियर के मार्गदर्शन में खुराना ने न्यूक्लियोटाइड्स के रसायन विज्ञान पर शोध किया। लिवरपूल में उनके वर्ष अत्यंत परिश्रम और सीखने के वर्ष थे। युद्ध के बाद इंग्लैंड में जीवन कठिन था, संसाधन सीमित थे। एक विदेशी विद्यार्थी के रूप में खुराना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एकाग्रता अपने शोध पर बनी रही।
2: 1948 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पीएचडी पूरी की। उनका शोध प्रबंध न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण और गुणों पर था। ये काम भविष्य में डीएनए और आरएनए के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। पीएचडी पूरी करने के तुरंत बाद खुराना ने पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए स्विट्जरलैंड जाने का निर्णय लिया। वे ज्यूरिक के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है।
1: वहां उन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग के साथ काम किया। प्रिलॉग स्वयं एक महान रसायनज्ञ थे। उन्हें बाद में 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला और कार्बनिक रसायन विज्ञान में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। खुराना ने 1948-49 में ज्यूरिख में प्रिलॉग के साथ काम करते हुए कार्बनिक संश्लेषण की उन्नत तकनीकों को सीखा। स्विट्जरलैंड में रहते हुए उनकी मुलाकात एस्तेर एलिजाबेथ सिबलर से हुई जो स्विस मूल की थीं। ये मुलाकात उनके व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी।
2: 1949 में खुराना वापस इंग्लैंड लौटे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्ट स्टॉट के साथ काम करने का मौका मिला। ये खुराना के करियर में एक निर्णायक मोड़ था। प्रोफेसर टॉड उस समय न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में अग्रणी शोधकर्ता थे। उन्होंने 1957 में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम पर काम करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल किया।
1: कैम्ब्रिज में टॉड की प्रयोगशाला में काम करते हुए खुराना ने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में गहरी विशेषज्ञता विकसित की। उन्होंने फास्फोएस्टर बंधन बनाने की नई विधियों पर काम किया जो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में अपनी पहचान बनाई। यहीं उन्होंने वे तकनीकें और दृष्टिकोण विकसित किए जो बाद में उनके नोबेल पुरस्कार विजेता बनने में काम आने वाले थे।
2: 1952 में खुराना को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय वैंकूवर कनाडा में एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उनके लिए एक स्वतंत्र शोध प्रयोगशाला स्थापित करने और अपने विचारों को मूर्त रूप देने का भी अवसर था। 1952 में ही उन्होंने एस्तेर एलिजाबेथ सिबलर से विवाह कर लिया। ये विवाह उनके जीवन में स्थिरता और खुशियां लेकर आया। एस्तेर न केवल एक सहयोगी जीवन साथी थी, बल्कि उन्होंने हमेशा खुराना के शोध कार्य को समझा और उसमें सहयोग भी दिया।
1: विवाह के बाद दोनों कनाडा चले गए। वैंकूवर में खुराना ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ उन्हें सीमित संसाधन थे, यहाँ उनके पास सीमित संसाधन थे और उन्हें अपनी प्रयोगशाला को शुरू से खड़ा करना था। लेकिन ये चुनौती उनके लिए अवसर भी थी। कनाडा में उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान पर अपना काम जारी रखा। उन्होंने विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण की नई और अधिक कुशल विधियां विकसित की। उनका काम धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने लगा।
2: वैंकूवर में रहते हुए उनके तीन बच्चे हुए, एक बेटी जूलिया एलिजाबेथ और दो बेटे डेव रॉय और एमिली एन। परिवार और शोध के बीच संतुलन बनाना कठिन था, लेकिन एस्तेर के सहयोग से ये संभव हुआ। 1952 से 1960 तक ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स पर काम किया और डीएनए और आरएनए के घटकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति की।
1: इस दौरान वैज्ञानिक समुदाय में डीएनए की संरचना को लेकर बड़ी उत्तेजना थी। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ये खोज आणविक जीव विज्ञान में क्रांतिकारी थी। खुराना का काम इस खोज के साथ पूरी तरह से प्रासंगिक था, क्योंकि वे डीएनए के रासायनिक घटकों पर काम कर रहे थे। 1960 में खुराना के करियर में फिर एक नया महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन अमेरिका में प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट फॉर एंजाइम रिसर्च के को डायरेक्टर के पद का प्रस्ताव मिला। ये एक प्रतिष्ठित पद था और बेहतर संसाधनों और सुविधाओं का अवसर था।
2: खुराना और उनका परिवार मेडिसिन विस्कॉन्सिन चले गए। यहाँ उन्हें एक उत्कृष्ट शोध वातावरण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और सहयोगियों की टीम मिली। विस्कॉन्सिन में उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किया। 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जूझ रहा था। डीएनए में संग्रहित अनुवांशिक सूचना किस तरह प्रोटीन के निर्माण में अनुवादित होती है, ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न था।
1: खुराना ने इस समस्या को रासायनिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सोचा कि यदि वे कृत्रिम रूप से ज्ञात अनुक्रम के न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बना सकें, तो वे परीक्षण कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड अनुक्रम किस अमीनो एसिड को कोड करता है। ये विचार सरल लग सकता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन था। उस समय न्यूक्लियोटाइड्स को एक विशेष क्रम में जोड़ना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। खुराना और उनकी टीम ने वर्षों तक बहुत कठिन परिश्रम किया।
2: उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम बनाए, फिर धीरे धीरे अधिक जटिल अनुक्रम बनाए। उन्होंने ये दिखाया कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह, जिसे कोडॉन कहा जाता है, एक विशेष अमीनो एसिड को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए UUU अनुक्रम फेनिल एलानाइन अमीनो एसिड को कोड करता है।
1: खुराना की विधि ने वैज्ञानिकों को पूर्ण अनुवांशिक कोड को समझने में मदद की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 64 संभावित कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करते हैं। कुछ अमीनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं और कुछ कोडॉन प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने या रोकने के संकेत देते हैं। इस काम के लिए खुराना को 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए गौरव का क्षण था।
2: 1968 का नोबेल पुरस्कार खुराना के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। स्टॉकहोम में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उनके काम को अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी। नोबेल पुरस्कार ने खुराना को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। भारत में उनकी सफलता का व्यापक रूप से जश्न मनाया गया। एक छोटे से पंजाबी गांव से आया व्यक्ति विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान को प्राप्त कर रहा था। ये एक प्रेरणादायक कहानी थी।
1: भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। विभिन्न भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक उपाधियां प्रदान की। नोबेल पुरस्कार के बाद भी खुराना अपने काम में लगे रहे। कई वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आराम कर लेते हैं या प्रशासनिक भूमिकाओं में चले जाते हैं, लेकिन खुराना नहीं। उनके लिए विज्ञान एक जुनून था, ना कि केवल एक करियर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद खुराना ने एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, एक पूर्ण कार्यात्मक जीन को पूरी तरह से कृत्रिम रूप से संश्लेषित करना। ये 1960 और 1970 के दशक में विज्ञान कथा जैसा लगता था।
2: 1970 के दशक की शुरुआत में खुराना और उनकी टीम ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो एक विशेष टीआरएनए के लिए जीन को कृत्रिम रूप से बनाएंगे। ये अत्यंत जटिल कार्य था, जिसमें लगभग 77 न्यूक्लियोटाइड्स को सही क्रम में जोड़ना था। ये काम अत्यंत श्रमसाध्य था। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को अलग से संश्लेषित करना, फिर उसे सही क्रम में जोड़ना और ये सुनिश्चित करना कि कोई त्रुटि ना हो, ये सब अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उस समय के तकनीकी साधन आज की तुलना में बहुत सीमित थे।
1: खुराना की टीम ने वर्षों तक इस परियोजना पर काम किया। अंततः 1970 में उन्होंने सफलतापूर्वक एक कार्यात्मक टीआरएनए जीन को पूरी तरह से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। ये आणविक जीव विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर था। ये पहली बार था जब मनुष्य ने एक पूर्ण जीन को रासायनिक रूप से बनाया था। इस उपलब्धि के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने यह प्रदर्शित किया कि जीवन के आणविक आधार को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि प्रयोगशाला में पुनर्निर्मित भी किया जा सकता है। इसने आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए।
2: इस काम के लिए खुराना को 1972 में अमेरिकी सरकार द्वारा नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया, जो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। और फिर शुरू हुआ MIT में एक नया अध्याय। 1970 में खुराना ने एक और महत्वपूर्ण करियर निर्णय लिया। उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय छोड़ दिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हो गए। MIT विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में से एक है।
1: MIT में उन्हें अल्फ्रेड पी स्लोन प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पद दिया गया। यहाँ उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं और प्रतिभाशाली सहयोगियों का समूह मिला। MIT में उन्होंने अपने शोध को नई दिशाओं में विस्तारित किया। MIT में रहते हुए खुराना ने झिल्ली प्रोटीनों, विशेष रूप से रोडोप्सिन पर काम करना शुरू किया। रोडोप्सिन वो प्रोटीन है जो हमारी आंखों में प्रकाश को पहचानने में मदद करती है। ये काम उनके पहले के काम से काफी अलग था, लेकिन ये दर्शाता है कि खुराना हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे।
2: उन्होंने रोडोप्सिन जीन का संश्लेषण किया, जो उनकी पहली कृत्रिम जीन से कहीं अधिक जटिल था। ये जीन लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा था। इस काम ने झिल्ली प्रोटीनों की संरचना और कार्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MIT में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई बाद में स्वयं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बने। हरगोविंद खुराना का व्यक्तित्व उनके वैज्ञानिक कार्य की तरह ही असाधारण था। वो एक अत्यंत अनुशासित, समर्पित और विनम्र व्यक्ति थे। उनके सहयोगियों और विद्यार्थियों ने उनके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं, वो एक जटिल लेकिन प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।
1: खुराना अपनी प्रयोगशाला में अत्यंत कठोर थे। उन्हें पूर्णता की उम्मीद थी अपने आप से और अपने विद्यार्थियों से। वे प्रायोगिक डेटा में थोड़ी सी भी अशुद्धता को स्वीकार नहीं करते थे। कई बार वे अपने विद्यार्थियों से प्रयोगों को बार बार दोहराने के लिए कहते थे जब तक कि परिणाम पूरी तरह से सुसंगत ना हो जाए। लेकिन जो मानक वे दूसरों से अपेक्षा करते थे वही मानक वे स्वयं भी बनाए रखते थे। वे अक्सर अपने विद्यार्थियों से भी अधिक समय प्रयोगशाला में बिताते थे। सुबह जल्दी आना और देर रात तक रुकना उनकी आदत थी। सप्ताहांत पर भी वे प्रयोगशाला में काम करते हुए दिखाई देते थे।
2: उनके एक पूर्व विद्यार्थी ने लिखा है, प्रोफेसर खुराना जैसा काम करना कठिन था, लेकिन ये सबसे अधिक शिक्षाप्रद अनुभव भी था। उन्होंने हमें न केवल विज्ञान सिखाया बल्कि वैज्ञानिक अखंडता और समर्पण का अर्थ भी सिखाया। खुराना बेहद विनम्र थे। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद भी वे कभी अहंकारी नहीं हुए। वे अपने काम को एक बड़े वैज्ञानिक प्रयास का हिस्सा मानते थे, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि। वो हमेशा अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों और पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार करते थे।
1: व्यक्तिगत जीवन में वे निजी व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक प्रचार और मीडिया का ध्यान पसंद नहीं करते थे। साक्षात्कार देना या सार्वजनिक भाषण देना उन्हें असहज करता था। वे अपना अधिकांश समय परिवार और प्रयोगशाला के बीच बांटते थे। उनकी बोलने की शैली संक्षिप्त और सटीक थी। वे बिना किसी अनावश्यक विस्तार से अपनी बात कहते थे। ये गुण उनके वैज्ञानिक लेखन में भी दिखाई देता था, स्पष्ट, सटीक और तथ्य आधारित।
2: हरगोविंद खुराना के व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी एस्तेर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1952 में हुआ उनका विवाह एक सच्चे साझेदारी का उदाहरण था। एस्तेर न केवल एक पत्नी थी बल्कि खुराना की सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और सहयोगी भी थी। एस्तेर खुराना के शोध को गहराई से समझती। हालांकि वे स्वयं वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुराना के काम में गहरी रुचि दिखाई। कई बार खुराना घर पर एस्तेर के साथ अपने शोध की चुनौतियों पर चर्चा करते। एस्तेर की समझ और प्रोत्साहन खुराना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।
1: उनके तीन बच्चे जूलिया एलिजाबेथ, देव राय और एमिली एन एक बहु सांस्कृतिक परिवेश में बड़े हुए। घर में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखा गया, जबकि बच्चे अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में पढ़े। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी भारतीय जड़ों को याद रखें। खुराना एक समर्पित पिता थे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते वे अपने परिवार के साथ थोड़ा ही समय बिता पाते थे, फिर भी वे अपने बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि रखते थे और उन्हें कठिन परिश्रम और ईमानदारी का महत्व सिखाते थे।
2: परिवार में हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं बोली जाती थी। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। घर में भारतीय भोजन बनाया जाता और भारतीय त्योहार भी मनाए जाते। अमेरिकी नागरिकता लेने के बावजूद खुराना ने अपने भारतीय मूल को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा अपने आप को भारतीय अमेरिकी के रूप में पहचानते थे। भारत के प्रति उनका लगाव जीवन भर बना रहा। वे नियमित रूप से भारत आते रहे। यहाँ वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा भी करते, व्याख्यान देते और भारतीय वैज्ञानिकों से मिलते। उन्होंने कई भारतीय

0: अपने साक्षात्कारों में वे अक्सर भारतीय मूल का उल्लेख किया करते। उन्होंने कहा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार भारत में ही मिले, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। वे अपने पिता के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। खुराना केवल अपने शोध तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। वे कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड में भी रहे। उन्होंने अनगिनत शोध पत्रों की समीक्षा की और युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन प्रदान किया
1: और विभिन्न वैज्ञानिक अकेडमियों के सदस्य थे, जिनमें नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज USA, रॉयल सोसाइटी UK और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी शामिल है। ये सदस्यताएं वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लिया और व्याख्यान दिए। हालांकि वे सार्वजनिक भाषण से बचना पसंद करते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो सभी वैज्ञानिक ध्यान से सुनते थे। खुराना ने अपने जीवन काल में कई डॉक्टरल विद्यार्थियों और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित किया, उनमें से कई आज दुनिया भर में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं।
0: जी हाँ श्रोता, उनका प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन उनके विद्यार्थियों को उत्कृष्टता देने के लिए तैयार किया करता था। हरगोविंद खुराना को उनके जीवन काल में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले। नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू हॉली निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से, लुइसा ग्रॉस हॉर्विट्स पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जीव विज्ञान या जैव रसायन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए, नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया, अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान था। विलॉर्ड गिब्स पुरस्कार अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रदान किया गया।
1: दोस्तों, गैर्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड 1980 कनाडा के गैर्डनर फाउंडेशन द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां, जिनमें शामिल है शिकागो विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडिकल कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय, भारत। खुराना का वैज्ञानिक योगदान आधुनिक जैव विज्ञान की नींव में शामिल है। उनके काम के बिना आज भी आणविक जीव विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना नहीं की जा सकती।
0: अनुवांशिक कोड की व्याख्या। उनके काम ने यह स्पष्ट किया कि DNA में संग्रहित सूचना किस तरह प्रोटीन में अनुवादित होती है। ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है। इसी तरह कृत्रिम जीन संश्लेषण, उनके द्वारा विकसित तकनीकों ने आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज जो भी जेनेटिक संशोधन होता है वो खुराना के मूलभूत काम पर ही आधारित है।
1: उनकी विधियों ने DNA अनुक्रमण तकनीकों के विकास में योगदान दिया, जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों को संभव बनाया। उनके काम में जीन थेरेपी, अनुवांशिक निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में योगदान दिया। आज का बहु अरब डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग खुराना और उनके समकालीनों के मूलभूत शोध पर आधारित है।
0: 2001 में खुराना के जीवन में एक त्रासदी घटी। उनकी प्यारी पत्नी एस्तेर का निधन हो गया। ये खुराना के लिए विनाशकारी झटका था। एस्तेर केवल उनकी पत्नी नहीं थी, वे उनकी सबसे करीबी मित्र थी, विश्वास पात्र और जीवन साथी थी। लगभग 50 वर्ष उन्होंने साथ बिताए थे। एस्तेर की मृत्यु के बाद खुराना गहरे अवसाद में चले गए। जो व्यक्ति हमेशा अनुशासित और केंद्रित रहा वो टूट गया। उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से भी दूरी बनाना शुरू कर दी।
1: उनके सहयोगियों और मित्रों ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन एस्तेर की अनुपस्थिति एक ऐसा रिक्त स्थान छोड़ गई जिसे कोई नहीं भर सकता था। खुराना अपने बच्चों के करीब रहे, लेकिन उनका एकाकीपन गहरा था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में काम करना जारी रखा, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। विज्ञान, जो हमेशा उनका जुनून रहा था, अब उनके दर्द से ध्यान भटकाने का एक तरीका बन गया था।
0: 2000 के दशक में खुराना की उम्र और स्वास्थ्य दोनों

0: उन्हें धीमा कर दिया। वे 80 के दशक में थे और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने MIT में अपना पद बनाए रखा और जब तक संभव था अपनी प्रयोगशाला में जाते रहे। उनके अंतिम वर्षों में वे अधिक चिंतनशील हो गए। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को याद किया, रायपुर के छोटे से गांव से लेकर MIT की प्रयोगशाला तक। ये एक असाधारण यात्रा थी।
1: वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। परिवार उनके लिए सांत्वना का स्रोत बन गया था। वे अपने पोते पोतियों को अपने गांव और अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपनी मानसिक तीक्ष्णता बनाए रखी। वे वैज्ञानिक साहित्य पढ़ते रहे और विज्ञान में नए विकास में रुचि रखते रहे।
0: 9 नवंबर 2011 को 89 वर्ष की आयु में प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में निधन हो गया। उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण थी अपने परिवार के बीच। उनके निधन पर विश्वभर के वैज्ञानिक समुदाय ने शोक व्यक्त किया। MIT विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन के खबर से भारत भर में शोक की लहर दौड़ गई और देश ने एक साथ अपने इस महान व्यक्तित्व को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की।
1: MIT के अध्यक्ष ने कहा, प्रोफेसर खुराना एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन के सबसे मौलिक प्रश्नों को समझने में मदद की। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के महान सपूत के रूप में याद किया और कहा, उनका जीवन युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। MIT ने उनके सम्मान में एक स्मारक व्याख्यान श्रृंखला स्थापित की। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया।
0: भारत सरकार ने 2018 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें याद करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। कई वैज्ञानिक संस्थाओं ने उनके नाम पर पुरस्कार और फेलोशिप स्थापित की। प्रोफेसर खुराना का जाना विज्ञान जगत के लिए अपूर्णीय क्षति था। उनका जीवन सत्य, शोध और राष्ट्र के प्रति समर्पण का उदाहरण रहा है। उन्हें हमारा सादर नमन। तो श्रोताओं, आज के हमारे इस कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में हमने चर्चा की प्रोफेसर हरगोविंद खुराना की, जो भारत के गौरव और विश्व विज्ञान के एक महान स्तंभ हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा
0: और मैं हूँ स्वाति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए। आइए सुनते हैं कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी क्रमशः मैसूर राज्य के अंतर्गत बेंगलोर आए। वहां कुछ दिन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका के मेडिकल ऑफिसर श्री पी पल्पू के घर में निवास किया था। ये केरल के एल्वा नामक समाज के थे, जिसके कारण पहले स्वामी जी का वहां के भद्र समाज में समादर नहीं हुआ। किंतु जिस प्रकार आग अधिक देर तक राख से ढकी नहीं रहती, ईंधन मिलते ही पूरी शक्ति के साथ धधक उठती है, उसी प्रकार स्वामी जी की प्रतिभा भी कहीं भी दीर्घ काल तक लोगों की दृष्टि से ओझल नहीं रह पाती थी। जन साधारण से वार्तालाप और जान पहचान होते ही वो प्रतिभा स्वमहिमा में प्रकट हो जाती। अतएव भारत में अन्यत्र जैसा देखा गया था, बंगलौर में भी वैसा ही हुआ। शीघ्र ही उनकी ख्याति फैलकर राज्य के दीवान श्री के शेषाद्री अय्यर के कानों में पड़ी।
1: यथा समय स्वामी जी से साक्षात्कार होने के कुछ ही मिनटों में अय्यर महोदय के हृदय में एक अपरिचित अज्ञात सन्यासी के उज्जवल भविष्य का चित्र दिखने लगा और उन्होंने सोचा कि इस सन्यासी में ऐसा चित्ताकर्षक व्यक्तित्व तथा दिव्य शक्ति है जो भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ जाएगी।
0: अय्यर महोदय ने उन्हें आदर पूर्वक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और स्वामी जी ने उस घर में 3-4 सप्ताह व्यतीत किए। यहीं पर मैसूर राज्य के अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं राज दरबार के अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियों से उनका परिचय हुआ। वे जहां कहीं जाते, वहीं धर्मनिरपेक्ष भाव से हिंदू गैर हिंदू सबके घर पर साग्रह अभिनंदित होते। उनकी धर्मानुभूति और धर्म की सरल व्याख्या सुनकर अय्यर महोदय ने एक दिन आश्चर्यपूर्वक कहा था,
2: हम में से कई लोगों ने धर्म के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु उससे हमारा क्या लाभ हुआ है। हम लोगों के समक्ष ये जो एक युवक उपस्थित है, उनकी अंतर्दृष्टि मेरे परिचित सभी व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, वे निश्चय ही धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर संसार में अवतरित हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार की कम उम्र में ही कहां से उनमें इतनी ज्ञान राशि और अंतर्दृष्टि आई।
0: मैसूर के महाराजा संभवतः इन युवक आचार्य को पाकर आनंदित और उपकृत होंगे, ये सोचकर सर शेषाद्री अय्यर ने उन्हें मैसूर ले जाकर महाराजा से परिचय करा देना चाहा। तरुण सन्यासी के गेरुआ वस्त्र पहने रहने पर भी उनकी आकृति और चलने की भंगिमा में एक ऐसी सरलता और प्रतिभा की ज्योति विराज रही थी कि महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार के सभागार में उनके प्रवेश करते ही महाराजा का मन खुशी से भर उठा। फिर स्वामी जी के विचारों की नवीनता, व्यक्तित्व का अपूर्व आकर्षण, पांडित्य की गहराई एवं धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि ने महाराजा के हृदय को जीत लिया। तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। इसके पश्चात महाराजा से उनकी अक्सर भेंट होती और लंबी चर्चाएं होती। महाराजा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार पूछा करते।
1: एक दिन महाराजा चामराजेंद्र वडियार ने अपने सभासदों की उपस्थिति में ही स्वामी जी से पूछा,
3: स्वामी जी, मेरे दरबारियों के बारे में आपका क्या मत है?
2: मेरे ख्याल से महाराज आपका हृदय तो बहुत सरल और साफ है, परंतु खेद की बात है कि आप हमेशा अपने दरबारियों से घिरे रहते हैं। दरबारी प्रायः सर्वत्र ही चापलूस हुआ करते हैं।
3: नहीं नहीं, कम से कम मेरा दीवान तो ऐसा आदमी नहीं है, वह बुद्धिमान और ईमानदार है।
2: परंतु दीवान का तो यही काम है ना कि राजा का धन लूटकर अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट को देना।
0: राजा ने तुरंत विषय बदल दिया और कुछ देर बाद स्वामी जी को दूसरे कमरे में ले जाकर बोले,
3: देखिए स्वामी जी, अत्यधिक साफ बातें हमेशा अच्छी नहीं होती। आपने मेरे दरबारियों के सामने जैसी बातें कही, आगे भी वैसी बातें बोलने पर मुझे डर है कि कोई आपको जहर ना दे बैठे।
2: आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आप सोचते हैं कि एक सच्चा सन्यासी केवल प्राणों के डर से सत्य बोलने में हिचकेगा? मान लीजिए आप ही के पुत्र आपके बारे में मेरा मत जानना चाहें, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके काल्पनिक गुणों का वर्णन करूंगा? क्या मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं।
1: किंतु कितने प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वामी जी मैसूर के राजा के परोक्ष उनके संबंध में बोला करते थे। स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी का दोष देखने पर उसके सामने ही उसके लिए भर्त्सना किया करते थे, किंतु उसके पीठ पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते। उसके दोष की बात उस समय उनके मन में आती ही नहीं थी।
0: मैसूर राज्य की राजसभा में एक दिन ऑस्ट्रिया देशवासी एक प्रसिद्ध संगीत विशारद से उनकी भेंट हुई। उनके सामने स्वामी जी ने जिस प्रकार की जानकारी दी, उससे उनके पाश्चात्य संगीत ज्ञान का परिचय पाकर सब दंग रह गए। एक दिन राजमहल के विद्युत इंजीनियर से स्वामी जी की भेंट हुई। चर्चा के क्रम में बिजली के विषय में बात आई। तब देखा गया कि स्वामी जी इस विषय में भी पारंगत थे। मैसूर में ही एक दिन स्वामी जी के उदार सार्वभौमिक धर्म भाव और अनुभूति की गहनता को लक्ष्य कर श्री अब्दुल रहमान नामक राजदरबार के एक सभासद आए। कुरान की कुछ बातें स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत कर इनके संबंध में उनका विचार जानने और अपना संदेह दूर करने की बात उन्होंने कही। स्वामी जी पहले से ही कुरान से घनिष्ठ रूप से परिचित थे, अतएव उक्त सज्जन की समस्या का उन्होंने ऐसा सुंदर समाधान कर दिया कि वे अपने को कृतार्थ समझने लगे। एक बार राज्यसभा में विद्वान पंडितों की सभा आयोजित हुई। विषय था वेदांत। पंडितों के बोल लेने के बाद सभी ने स्वामी जी से कुछ कहने को कहा।
1: स्वामी जी खड़े होकर सुललित संस्कृत में पहले सूत्र और बाद में विस्तार से अपना वक्तव्य देने लगे। पुस्तकों का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उनकी सहायक थी उनकी वाग्मिता, ज्ञान बाहुलता, सरलता और स्वानुभूति।
0: उन्होंने वेदांत को मात्र पंडितों के विचार जगत रूप में न ग्रहण कर मानव जीवन में उसकी उपयोगिता दिखाई। विभिन्न धर्मों के बीच वेदांत मत के सहारे किस प्रकार शांति और संभाव स्थापित हो सकते हैं, इसे बताना भी वे नहीं भूले। सभा में उपस्थित सब लोग उनके विचारों की मौलिकता और दृष्टि का विस्तार देखकर चकित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी जी से परम प्रसन्न होकर दीवान बहादुर ने एक दिन उनसे कोई एक उपहार ग्रहण करने का अनुरोध किया और एक सचिव यानी सेक्रेटरी को बुलाकर कह दिया कि वे स्वामी जी को लेकर राज्य की सर्वोत्कृष्ट दुकान में जाएं और स्वामी जी जो चाहें वही खरीद दें। दीवान बहादुर के सम्मान की रक्षा करने के लिए स्वामी जी उस सेक्रेटरी के साथ चले। सेक्रेटरी ने अपने पास एक चेकबुक रख लिया ताकि वस्तुओं की कीमत के अनुसार जितने पैसे हों आसानी से दिए जा सकें। शिशु सुलभ स्वभाव वाले स्वामी जी आनंद पूर्वक इधर उधर देखने निकल पड़े। अनेक अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्रशंसा भी की, किंतु कुछ भी लिया नहीं। अंत में थक कर विदा होते समय उन्होंने सेक्रेटरी से कहा,
2: मित्र, यदि मेरी पसंद के लायक कोई सामान ले जाने से ही दीवान जी प्रसन्न हो तो एक काम कीजिए, यहाँ का एक सबसे बढ़िया सिगार मुझे खरीद कर ला दीजिए।
0: सेक्रेटरी जी अवाक हो गए, किंतु उन्होंने आज्ञा का पालन किया और स्वामी जी ने निर्विकार चित्त से बाहर आकर प्रायः 12 आने मूल्य का वो एक सिगार जलाकर मुंह से लगाया और उसका कष्ट खींचते खींचते गाड़ी में चढ़कर राजमहल में आए। मानो ऐसी अमूल्य संपत्ति अन्य किसी के भाग्य में नहीं होती। सब सुनकर दीवान जी पहले तो हंस उठे, किंतु बाद में इन निष्प्रह साधु का वैराग्य देखकर चकित हो गए।
1: एक दिन महाराजा ने स्वामी जी को अपने कमरे में बुलवाया। दीवान जी भी साथ गए।
3: प्रणाम स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए। आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
2: सब आनंद मंगल है। कहिए, मुझे क्यों बुलाया?
3: स्वामी जी, आपकी विद्वता पर मेरा सारा राज्य मोहित है। आप मेरे मेहमान बने हैं, इससे मेरा मान बड़ा है। कहिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मेरे लायक कोई सेवा?
0: स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर न देकर ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, यद्यपि भारत की विशिष्टता दर्शन और आध्यात्म ही है, तथापि समय के अनुरूप उसे पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को आज अपनी विशेष संपदा आध्यात्म को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित कर देना होगा और उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार करेंगे।
3: स्वामी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपके विदेश यात्रा की सारी व्यवस्था कर दूंगा। कहिए, कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी?
2: आपको धन्यवाद महाराज कि आपने मेरे व्रत में सहायक बनना स्वीकार किया, पर अभी नहीं, पहले मैं रामेश्वर दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आपको जरूर बताऊंगा।
0: स्वामी जी के मन में था कि अगर वे विदेश जाकर वेदांत का पाठ पढ़ाएंगे तो समग्र भारत के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, किसी एक शक्ति की सहायता से नहीं।
1: जितने अधिक दिनों तक स्वामी जी मैसूर में रहते रहे, महाराजा उतना ही अधिक उनके प्रति अनुरक्त होने लगे। तदंतर जिस दिन स्वामी जी ने विदा मांगी, उस दिन महाराज ने दुखी होकर उनसे और भी कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा,
3: स्वामी जी, आपके व्यक्तित्व के स्मृति चिन्ह के रूप में मेरे पास कुछ रहना आवश्यक है, अतः आपकी अनुमति मिलने पर फोनोग्राम में आपके कुछ भाषणों को रिकॉर्ड करके रख लेना चाहता हूँ।
1: स्वामी जी से सहमत हुए और उस दिन स्वामी जी के कंठ स्वर का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ था वह पूर्णतः अस्पष्ट हो जाने पर भी राजभवन में यत्न पूर्वक रखा हुआ है। स्वामी जी के प्रति महाराज की श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि एक बार वे गुरुभाव से स्वामी जी के चरणों की पूजा करने को तत्पर हो गए थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया।
0: कुछ ही दिनों के उपरांत स्वामी जी ने कहा, वे अब किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। ये सुनकर महाराजा ने उन्हें कुछ कीमती उपहार देना चाहा, किंतु सन्यासी के लिए ऐसी वस्तुएं ग्रहणीय नहीं होने के कारण स्वामी जी ने उपहार लेना स्वीकार नहीं किया। तथापि महाराजा के सग्रह अनुरोध करने पर उन्होंने अंत में कहा,
2: अच्छा, आप अगर जिद कर रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा तो बिना धातु वाला एक हुक्का दीजिए, हाँ, वो मेरे कुछ काम का होगा।
1: महाराजा ने तब उन्हें एक नक्काशीदार रोजवुड का बना सुंदर हुक्का प्रदान किया। स्वामी जी से विदा लेते समय महाराजा ने उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इधर दीवान बहादुर ने चुपचाप उनकी जेब में नोटों की एक गड्डी ठूंस देने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने किसी तरह उसे ग्रहण नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा,
2: देखिए, आप यदि मेरे लिए सचमुच कुछ करना चाहती हैं, तो मेरे लिए रेलवे का एक टिकट खरीद दीजिए। मैं तो रामेश्वर जा रहा हूँ, किंतु रास्ते में 2-4 दिनों के लिए कोचीन राज्य में रुकूंगा।
1: उन दिनों कोचीन और श्रावण को राज्यों में रेलवे लाइनें नहीं थी, अतएव सुना जाता है कि शोरनूर रेलवे स्टेशन पर उतरकर स्वामी जी बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुंचे। गाड़ी जब शहर के भीतर से गुजर रही थी तब कोचीन राज्य के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी श्री डी ए सुब्रमण्य अय्यर अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। स्वामी जी ने गाड़ी से उतरकर उक्त सज्जन से पूछा, यहाँ क्या कहीं स्नान करने की उपयुक्त जगह है? स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित उक्त सज्जन ने स्वामी जी को अतिथि रूप में ग्रहण कर अपने मकान के एक हिस्से में उनके स्नान भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उन दिनों स्वामी जी के गले में कफ जम जाने के कारण कुछ कष्ट हो रहा था। अय्यर महाशय ने उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर दवा की व्यवस्था करा दी।
0: त्रिचूर में स्वामी जी मात्र कुछ ही दिन रहकर कुरुंगनोर या कोडंगलुर नामक प्रसिद्ध स्थान में चले गए। वो स्थान संस्कृति और एक काली मंदिर के लिए सुविख्यात था। स्वामी जी ने जब उस काली मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो पुजारियों ने रोक दिया, अतएव वे बाहर से ही काली माता को भूमिष्ठ प्रणाम कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में क्रैंगनोर राजभवन से कोचुन्नी थम्पुरन और भट्टन थम्पुरन नामक दो राजकुमार काली मंदिर में आए और स्वामी जी को वट वृक्ष के नीचे बैठा देख कर संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी ने जानना चाहा कि उन्हें मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया गया। दोनों राजकुमारों ने उत्तर दिया कि लोगों की, खासकर केरल से बाहर से आने वाले लोगों की जाति का पता लगाना कठिन होता है, इसलिए सबको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता।
1: इस प्रकार 3 दिनों तक स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप और शास्त्र चर्चा होने के बाद स्वामी जी के प्रति दोनों राजकुमारों में श्रद्धा जागी। बाद में राजमहल की महिलाओं ने वहां आकर स्वामी जी से संस्कृत में वार्ताएं की। स्त्रियों में भी इस प्रकार का संस्कृत ज्ञान है, ये देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। 4th दिन भी वे दोनों राजकुमार वहां आए, किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी जी पहले से ही कोचीन की ओर चले गए हैं। इसके कुछ महीनों बाद उन दोनों ने जब समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखी और शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उनकी विजय के बारे में पढ़ा, तब वे पहचान पाए कि ये वही वट वृक्ष के नीचे वाले स्वामी जी हैं।
0: कोचीन राज्य को छोड़कर स्वामी जी ने क्रमशः त्रावणकोर राज्य में प्रवेश किया। त्रावणकोर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। समुद्र तट पर स्थित त्रिवेंद्रम राज्य की नदी पर्वत शोभित और श्यामल वृक्षलता आदि से आच्छादित धरती बड़ी ही मनोरम है और इसके ही बीच बीच में स्थित धान के खेत और चित्र के समान गांव बड़े ही अच्छे हैं। वे त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंचे।
1: त्रिवेंद्रम में वे प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर के घर ठहरे। ये उन दिनों श्रावणकोर के महाराजा के भांजे और राज्य के प्रथम या सबसे बड़े राजकुमार श्री मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। राजकुमार उन दिनों अय्यर महोदय से पढ़कर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। श्रावणकोर के महाराजा महाविद्यालय में उन दिनों मद्रास के विख्यात विद्वान श्रीयुत रंगाचार्य रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। त्रावणकोर के श्री एस के नायर ने इन दोनों प्रोफेसरों से स्वामी जी के साहचर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है।
4: ये दोनों सज्जन स्वयं संस्कृत एवं अंग्रेजी में पंडित होने पर भी स्वामी जी से बात करने में विशेष आनंद का अनुभव करते। वस्तुतः जो कोई उनसे घनिष्ठ रूप से परिचित होता वो उनके तेजोमय व्यक्तित्व से मुग्ध होता और उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उनमें यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण क्षमता थी कि वे एक ही समय में एक साथ ही अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। संभवतः स्पेंसर के दर्शन, कालिदास या शेक्सपियर के किसी भाव, डार्विन के सिद्धांत, यहूदियों के इतिहास, आर्य सभ्यता के विकास, वेदों, इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म के संबंध में चर्चा शुरू होने पर स्वामी जी के पास सभी विषयों का समुचित उत्तर प्रस्तुत रहता। उनकी आकृति में गंभीरता और सरलता की रेखा स्पष्ट रूप से अंकित थी। उनका हृदय पवित्र, जीवन निष्पाप और संयत, खुला मन चित्त, सभी विषयों में उदार, दृष्टि व्यापक और सहानुभूति विश्वव्यापी थी। त्रावणकोर में रहते समय व्यक्तिगत वार्तालाप के समय वे समग्र भारतीय दृष्टि लेकर बातें करते और विशाल भारत के सभी क्षेत्रों में समाज सुधार और जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया करते।
0: त्रिवेंद्रम में स्वामी जी 9 रातें श्री सुंदरराम अय्यर के घर पर रुके थे। सुंदरराम ने उन दिनों का बहुत सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है,
5: स्वामी विवेकानंद से मेरी पहली भेंट त्रिवेंद्रम में सन 1892 ईस्वी के दिसंबर माह में हुई। उस समय उनके बारे में बहुत कुछ देखने और जानने का सौभाग्य मिला। वे मेरे यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ आए थे। मेरे 12 वर्ष के छोटे पुत्र ने उनको भी मुस्लिम समझ लिया था और उनके आगमन की घोषणा की थी। स्वामी जी ने जिस तरह की पोशाक पहन रखी थी उससे इस बालक के लिए भ्रम में पड़ जाना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू सन्यासी की ऐसी वेशभूषा नहीं होती थी। स्वामी जी ने बात बात में मुझसे अपने मुस्लिम दोस्त के भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। वो साथी कोचीन राज्य की सेवा में नियुक्त था और एक दीवान के सेक्रेटरी श्री डब्लू रमैया ने उसे स्वामी जी के साथ भेजा था। पिछले 2 दिनों से स्वामी जी ने थोड़े दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया था, किंतु जब तक उस मुस्लिम नौकर के भोजन की व्यवस्था नहीं हुई उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ ही मिनटों तक वार्तालाप कर मैं समझ गया कि स्वामी जी एक शक्तिशाली पुरुष हैं। मैंने जब उनसे पूछा, आप कैसा भोजन पसंद करते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया, आपको जो अच्छा लगे। हम सन्यासियों के लिए पसंद नापसंद जैसी कोई बात नहीं होती। ये जानकर कि स्वामी जी बंगाली हैं, मैंने टिप्पणी की, बंगाली समाज ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है और उनमें ब्राह्म प्रचारक केशव चंद्र सेन सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही उन्होंने मेरे समक्ष अपने गुरु श्री रामकृष्ण के नाम का उल्लेख किया और उनके अतुलनीय आध्यात्मिक गुणों की संक्षिप्त चर्चा कर कहा,
6: श्री रामकृष्ण की तुलना में केशव तो मात्र बच्चा है। केवल मैं ही नहीं, हमारे समकालीन अनेक विख्यात बंगाली श्री रामकृष्ण से प्रभावित हुए हैं। अपने परवर्ती जीवन में केशव चंद्र को भी उनकी छाओं के तले आकर सीखने का सौभाग्य मिला था, जिसके फलस्वरूप केशव चंद्र के धर्म जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। कई यूरोपीय भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते थे और उन्हें देवता की भांति श्रद्धा करते थे। एक दिन वे श्री रंगाचार्य के घर गए। रंगाचार्य त्रिवेंद्रम कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उस समय भी संपूर्ण दक्षिण भारत में विद्वता और विज्ञान में पांडित्य के लिए कीर्ति की उच्चतम शिखर पर अधिष्ठित थे। घर में उनके नहीं रहने के कारण हम लोग गाड़ी से त्रिवेंद्रम क्लब गए।
1: उस क्लब से वापस आते समय एक घटना घटी।
5: क्लब छोड़कर जाने के समय नारायण मेनन ने उक्त ब्राह्मण पेशकार को प्रणाम किया। इस पर उनके अभिवादन के जवाब में उन्होंने बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर स्वीकार किया। जब हम लोगों के विदा होने का समय आया, तब दीवान पेशकार द्वारा स्वामी जी को प्रणाम किए जाने पर स्वामी जी ने सन्यासियों की प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया। इससे पेशकार महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये अधिकार जताया कि उन्होंने जिस प्रकार स्वामी जी को प्रणाम किया है, ठीक उसी प्रकार स्वामी जी को भी प्रति प्रणाम करना होगा। तब स्वामी जी ने पेशकार की ओर मुड़कर कहा,
6: यदि आप नारायण मेनन को अपनी प्राचीन रीति से जवाब दे सकते हैं, तो मेरे द्वारा अपनी रीति से आपका अभिवादन स्वीकार करने पर आपके नाराज होने का क्या कारण है?
5: इस प्रतिउत्तर का अपेक्षित परिणाम हुआ और दूसरे दिन पेशकार के भाई ने हम लोगों के पास आकर विगत रात्रि की कष्टकर घटना के लिए क्षमा याचना की। क्लब में स्वामी जी के थोड़ी ही देर रहने पर भी सब पर उनका गंभीर प्रभाव पड़ा था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वायदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह, ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

तो ये था कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आपने ट्यून किया अपने रेडियो सेट पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: अगर आपको दो हफ्तों से ज्यादा खांसी है तो इसे हल्के में ना लें, ये टीबी भी हो सकता है। तुरंत डॉक्टर से मिले और बलगम की जांच कराएं। टीबी किसी को भी हो सकता है। अगर आपको टीबी हो गया है तो बिना भूले पूरा कोर्स करें।
2: कोई भी टीबी मरीज इलाज से छूटे नहीं, इसके लिए हमने नई रणनीति पर काम किया। हमने आयुष्मान भारत योजना से जोड़ा है। हम टीबी की रोकथाम के लिए 6 महीने के कोर्स की जगह केवल 3 महीने का ट्रीटमेंट भी शुरू कर रहे हैं। अब नई व्यवस्था में मरीज को हफ्ते में केवल 1 बार दवा लेनी होगी। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का कैपेसिटी एनहेंसमेंट किया है। हम ट्रेस, टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट एंड टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। मुझे विश्वास है हमारा ये संकल्प जरूर सिद्ध होगा। यस वी कैन एंड टीबी। टीबी हारेगा, भारत जीतेगा।
1: दो हफ्तों से ज्यादा खांसी, हो सकती है टीबी की बीमारी। टीबी हारेगा, देश जीतेगा। रेडियो आजाद हिंद द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: तो श्रोताओं, हमारी सुबह की सभा यहीं संपन्न होती है। आप बने रहिए हमारे साथ और आनंद लीजिए दोपहर की सभा का। सुनते रहिए एफएम 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
4: न जी भर के देखा न

नमस्कार, मैं हूं चंदन दास, गज़ल गायक। 90.8 मेगा हॉर्स पर आप सुन रहे हैं रेडियो आज़ाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं,

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है। इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है। ए जी प्रीत कर।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार रसिक जनों, मैं शाहिर अनंत फंदी। लगभग 270 साल पहले महाराष्ट्र के संगमनेर में जन्मा एक फकीर मंदी से कविता के बहाने दोस्ती हुई, कुछ सीखा, लिखा, लावणी, पौवाड़े, पद कटाव, फटका, सब लिखा और गाया। जीवन में कितने फंदे हैं, माया, मोह, धन संपत्ति और क्या क्या, कि सब मुझे झकझोरते रहते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैं क्या अजर अमर हूं? ना ना ना, मेरी आत्मा आबसी है सूत्रधार में। जब मुझे पता लगा कि प्रातः स्मरणीय अहिल्याबाई पर नाटक होना है तो मन नहीं माना। मेरी शब्द विलास में डूबी कलम में कीर्तन का रंग उन्होंने ही भरा था। नाच गाने रस रंग से दूर भक्ति के भाव में डुबाया था मुझे महेश्वर में। जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, जीवन में जब कठिनाई हो सरल सत्य पथ नहीं छोड़ना, भटक भटक कर दुख मत पाना, दुनिया से मुख नहीं मोड़ना।
2: साधु साधु, कविता में ऐसा फटका तो बस अनंत फंदी तुम्हारी कलम का जादू है।
1: प्रणाम स्वीकार करें मेरा, अहो भाग्य हमारा। अहिल्याबाई के दरबार के संस्कृत विद्वान और महान वक्ता हमारे बीच हैं, खुशाली राम जी।
2: मालवा की संस्कृति में सुदूर महाराष्ट्र की खुशबू का मिलन सोने में सुहागा मिलने जैसा है।
1: खुशाली राम जी, आपका आना जैसे कि प्राण वायु का झोंका है।
2: अरे इतना महिमा गान भी ठीक नहीं, अगर महिमा गानी है तो देवी अहिल्याबाई का यशगान करो।
1: उनका जीवन ही तो हमारे आज के नाटक की भावभूमि है। इतना लंबा समय काल, समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें।
2: उनका बचपन रोमांच से भरपूर था, वहीं से शुरू करें।
1: हाँ, नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई। नाम अहिल्या था कन्या का, पुण्य समय अवतरित हुई, भक्ति भाव में मंथा डूबा, गाथा इनकी कही गई।
2: अरे कविराज जरा रुको, थोड़ा परिचय दे दूं। महाराष्ट्र के जामखेड़ के पास एक गांव है चौढ़ी। यहां मनकोजी शिंदे के यहां 31 मई 1725 को एक कन्या ने जन्म लिया।
1: माता सुशीला ने सोच विचार कर उसका नाम रखा अहिल्या।
2: अहिल्या का अर्थ होता है प्रथम।
1: हाँ, हर काम में सबसे आगे, सारा जीवन वे हर काम में आगे रहीं।
2: घर में संतों की वाणी अभंग गाए जाते, उसी से अहिल्या के मन में एक कल्याण की भावना ने घर कर लिया।

0: सुनो बेटी, इस गांव के पाटिल मनको जी का घर कहाँ है?
1: जी कहिए, मैं हूं उनकी बेटी अहिल्या।
0: हम तीर्थयात्री पास के राजवाड़ी गांव के हैं, पालकी लेकर पंढरपुर जा रहे हैं, मनको जी से मिलना था।
1: बाबा अभी खेत पर से लौटे हैं, घर पर ही हैं।
0: जय हरि विठ्ठल मनको जी।
2: जय हरि विठ्ठल, जय हरि विठ्ठल। आइए आइए आइए, आप तो राजेवाड़ी गांव के शाहू जी है ना?
0: खूब पहचाना आपने, वार करी है, पंढरपुर जा रहे हैं।
2: अहो भाग्य जो आपके दर्शन हुए। बाकी लोग?
0: वहीं देवी के मंदिर में है, विश्राम कर रहे हैं।
2: आपका भोजन? मैं कुछ धानी मुरमुरे भिजवा देता हूँ।
0: वो सब तो साथ में है।
2: तो फिर मैं नींबू की शिकंजी और छाछ का प्रबंध करवाता हूँ।
0: जैसी आपकी इच्छा।
2: और ये चांदी के 11 रुपए हमारे गांव की ओर से विट्ठल देव के मंदिर में अर्पण कर देना। इच्छा तो मेरी भी थी पंढरपुर जाने की, पर खेती में बहुत काम है, क्या करूं। अहिल्या।
1: जी बाबा।
2: अपनी माँ से कहो एक घड़ा छाछ मंदिर में भिजवा दे।
1: जी अभी जाती हूँ।
0: आपकी कन्या बहुत गुणवंती है।
2: हाँ, दया भाव बहुत है उसमें, गांव में सबसे लाडली है।
0: झूठ नहीं कहूंगा, तीर्थयात्री हूं, विट्ठल का भक्त।
2: कहना क्या चाहते हैं आप?
0: मैं कुछ देवीय शक्ति देख रहा हूं इसमें।
2: अरे आपकी उदारता है, अभी तो 8 वर्ष पूरे किए हैं उसने।
0: जीवन के गुण धर्म उम्र से नहीं आके जाते।
2: तो फिर?
0: ये तो ईश्वर की देन है, जो विधाता ने उसकी झोली में भर दिए है।
2: ये तो मेरा सौभाग्य है।
0: आपकी पुत्री राजरानी होगी।
2: हरि इच्छा शाहू जी, कहां हम साधारण किसान और कहां वो।
1: लीजिए।
0: तुम्हारा भविष्य में देख रहा हूं, माउली हो तुम, माउली।
1: जी
2: आपकी वाणी सच हो।
3: जय भवानी।
4: जय भवानी।
3: मालवा के सुबेदार मल्लार राव जी होलकर पूना की यात्रा पर विश्राम के लिए।
2: अहो भाग्य, अहो भाग्य, चंडिका मंदिर में बहुत स्थान है।
3: आप व्यवस्था करें, मैं सूचना देता हूँ।
5: जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: जय भवानी। मैं मनकोजी शिंदे, चौड़ी गांव का पाटिल, प्रणाम और स्वागत करता हूँ आपका।
0: मैं राजवाड़ी गांव का मुखिया डिंडी हूँ, पंढरपुर जा रहे हैं, प्रणाम।
5: क्या नाम है बेटी तुम्हारा?
1: जी अहिल्या।
5: आशीर्वाद। ये मंदिर में क्या कर रही हो?
1: बहुत से तीर्थयात्री है ना, सेवा कर रही हूँ।
5: सेवा करना अच्छा लगता है तुम्हें?
1: अच्छा, मुझे बहुत आनंद आता है।
5: क्यों?
1: माँ कहती है दे देवाचे मंदिर,
5: याने ये दे ईश्वर का मंदिर है, यही ना?
1: आपको कैसे पता?
5: मेरे गुरु ने भी सिखाया था यही।
1: सच? तब तो हम गुरु भाई हुए है ना?
5: हाँ बिल्कुल।
1: मैं जब किसी को खाना खिलाती हूँ, पानी देती हूँ, सेवा करती हूँ, तो
5: फिर क्या?
1: तो मुझे उनमें भगवान दिखाई पड़ते हैं।
5: क्या मुझ में भी?
1: हाँ आप में भी, आप सबसे अलग थोड़ी ही हैं। और तू?
5: ना ना बेटी ना, जीवन में आज पहली बार मन और तन दोनों तृप्त हुए।
1: क्यों, पहले कभी छाछ नहीं पी क्या?
5: नहीं बेटी, मेरी माँ के मरने के बाद पहली बार किसी ने इतने प्रेम से कलेवा छाछ करवाया है।
1: अरे अरे रो मत, यहाँ रहोगे ना तो रोज इतने ही प्रेम से खिलाऊंगी।
5: मैं तो यहाँ नहीं रह सकता, पर तुम जरूर मेरे साथ रहोगी। मनको जी।
2: जी।
5: मैं अपने पुत्र खांडेराव के लिए आपकी बेटी को चाहता हूँ।
2: जी कहाँ आप, कहाँ हम, मैं।
5: आप ऐसी शीलवान कन्या के पिता हैं, मैं आपका जीवन धन आपसे मांग रहा हूँ।
2: अहिल्या हमारे परिवार की जीवन ज्योति है।
5: अब उसका दिव्य प्रकाश इंदौर के राजमहल को भी आलोकित करेगा।
2: स्वीकार है महाराज, स्वीकार है।
5: अब हम जाना चाहेंगे। ऐसा लगता है इस शुभ कार्य के लिए ही विधाता ने मुझे इस रास्ते भेजा।
2: आपने बड़ी कृपा की महाराज, मैं तो धन्य हो गया।
1: राजा जी, आपने मेरे बाबा को क्यों रुलाया?
5: ये खुशी के आंसू हैं बेटी, तुम हमारी बहू बनकर आओगी। मनको जी, आप चिंता ना करें।
2: बेटी के विवाह की चिंता तो होगी ही महाराज।
5: अभी हम पूना जाकर सारी व्यवस्था कर देंगे। आपका घर धन्य धान्य से भरपूर हो जाएगा। पेशवा से आपकी मनसबदारी भी तय करवा देंगे। चलें। जय भवानी।
4: जय भवानी।
2: आपकी वाणी सच हो गई महाराज, आपकी वाणी सच हो गई।
0: ये तो होना ही था, बिटिया बड़ी भाग्यशाली है।
2: जी महाराज।
6: देखा खुशाली राम जी, सेवा और विनय भाव से
7: आप संसार जीत सकते हैं।
6: हाँ, इसीलिए कहता हूं सबको प्रेम भाव से जीना है। अच्छे जहां विचार मिले उसको मन में पीना है। निंदा नहीं किसी की करना, बस चोरी से डरना है। सत्कर्मों की छाया में जीवन अच्छा करना है।
7: वाह कविराज वाह, आपने जीवन का सूत्र बता दिया।
6: हमारे वेद पुराण भी यही कहते हैं। अब नाटक आगे बढ़ाएं।
7: बिल्कुल बिल्कुल। फिर क्या हुआ अहिल्या का?
6: होना क्या था, धूमधाम से विवाह हुआ। राजे महाराजे आए और राजसी ठाट से नन्ही अहिल्या पालकी में सवार हो इंदौर आ गई।

0: रानी साहिबा, कैसी लगी हमारी पसंद?
1: बड़ी परख है आपको, कितनी दूर से गुणवंती ढूंढ लाए।
0: सब गणेश जी की कृपा है, अब उसको राजमहल के संस्कार, शिक्षा दीक्षा।
1: कल अहिल्या से बात की, उसकी माँ ने काफी पढ़ाया है घर में, मराठी, संस्कृत, गणित।
0: ये तो अच्छी बात है, पर उसे मोड़ी लिपि सिखाना भी ठीक रहेगा।
1: क्यों, वो क्या राजकाज करेगी?
0: समय किसने देखा है, अरे पेशवा से सारी चिट्ठी पत्री मोड़ी लिपि में होने से सब गुप्त रहता है।
1: मोड़ी की चार लिपि है, अलग अलग।
0: मेरे विचार से रानाड़ी लिपि ठीक रहेगी।
1: ठीक है, कल से उसके लिए अलग पढ़ाने वाले की जरूरत होगी, मैं सब व्यवस्था कर दूंगी।
2: समय अपनी गति से चलता रहा। अपनी सासू माँ के मार्गदर्शन में अहिल्या की शिक्षा जारी रही।
3: केवल शिक्षा नहीं, राज दरबार के दांव पेंच, राजनीति के सूत्र और सैन्य संचालन के रहस्य भी धीरे धीरे उनकी पकड़ में आने लगे।
2: मल्हार राव कुशल सेना नायक थे और मराठा गुरिल्ला युद्ध के साहसी खिलाड़ी।
3: उनके पुत्र खांडे राव ने भी शस्त्र शिक्षा अपने पिता से पाई।
2: और एकांत में खांडे राव अपनी पत्नी अहिल्याबाई को शस्त्र चलाना सिखाते थे।
3: जामखेड़ के जंगलों में घूमने वाली अहिल्या जल्दी ही सब सीख गई। उसका बचपन अब कहीं दूर जा चुका था और अब वो तैयार थी हर विपत्ति का सामना करने के लिए।
0: कहो सेनापति जी, क्या समाचार है?
4: हुना से बाजीराव जी पेशवा का संदेश आया है। पत्र के अनुसार मालवा का अधिकांश भाग अब आपको दे दिया गया है। सेना रखने का खर्च भी अब आपका 4 गुना बढ़ा दिया गया है।
0: इसका मतलब अब हजारों की सेना हमारे नीचे रहेगी, यानी और अधिक लड़ाइयां, युद्ध।
4: हमारी सेना को पुर्तगालियों से लड़ने वसई जाना होगा।
0: पश्चिम में समुद्र किनारे?
4: जी ठीक कहा। इसके अलावा पत्र में उत्तर भारत की तरफ सैन्य अभियान के कूट संकेत भी हैं।
0: पेशवा को हमारी सेना की बहादुरी पर विश्वास है, अच्छा है। खांडे राव जी भी इन सभी अभियानों में साथ रहेंगे?
4: जी, उन्हें सूचना भेज दी जाएगी।
0: सेना में बहादुर साहसी युवकों की भर्ती की मुनादी करवा दें, आवश्यक व्यवस्था करें।
4: जैसी आज्ञा।
5: अहिल्या, कुछ सुना तुमने?
6: हाँ, सासू माँ कह रही थी उधर राजस्थान, दिल्ली और आगे लाहौर तक जाना।
5: हाँ, रोहिल्या के साथ और मुगलों के साथ भी।
6: कौन कौन जाएंगे आपके साथ?
5: जयप्पा शिंदे, गंगाधर तात्या, तुकोजी राव तो हैं ही, सेना भी बड़ी होगी।
6: कब जाना है?
5: शायद 15 दिन बाद, गणेश चतुर्थी के दिन।
6: महल के गणेश मंदिर में अखंड दीप जलता रहेगा आपके विजय के लिए।
5: और मेरे मन में तुम्हारी याद का दीपक।
2: ये सैन्य अभियान काफी लंबा चला। फतेहगढ़ की लड़ाई में रोहिल्ला और बंगश पराजित हुए। 1752 में सफदरजंग मराठा सेना के साथ आए अहमद शाह अब्दाली से संधि हुई। इसी समय पेशवा का संदेश आया, पूना जाओ, पूना पर आक्रमण हुआ है।
3: वहां से मराठा सेना फिर लौटी और राजस्थान के कुम्हेर किले पर घेरा डाल दिया।
2: पेशवा के छोटे भाई राधोबा, होलकर और सिंधिया की सेना की मदद से राजा सूरजमल को हराना चाहते थे,
3: पर 4 महीने की घेरेबंदी के बाद भी किला जीत ना सके।
2: विधाता कुछ और संकेत दे रहा था। 24 मार्च 1754 को किले से दागे गए तोप के गोले ने खांडे राव की जीवन लीला समाप्त कर दी।
3: क्रोधित मल्हार राव कूटनीति के तहत सूरजमल से संधि करके इंदौर लौटे, अपने पुत्र को खोकर।
2: ये कैसा समय आ गया, जिस महल में खुशी के स्वर गूंजते थे वहां विषाद योग। मात्र 20 वर्ष के वैवाहिक जीवन के बाद ये कैसा अनर्थ। छाया अंधकार महलों में अजब भाग्य की माया, रोती थी हल भाग अहिल्या बन विषाद की काया। अब जीवन में क्या रखा, अब जीवन में क्या रखा, काया भीगी असुवन में साथ पति के सती हो सकूं, सोचा मन ही मन में।
1: आप अकेले कैसे महाराज, कहां है मेरा लाल?
0: हम क्षत्रिय हैं रानी साहिबा, राजकुमार रण में खेत रहे।
1: आपने रक्षा नहीं की उसकी, आप तो समर्थ थे ना।
0: रक्षा तो की, 4 महीने कुम्हेर दुर्ग को घेर करके रखा।
1: ये तो घेरा था, युद्ध तो नहीं?
0: हाँ, हम डेरा डाले हुए थे, पर एक दिन शत्रु ने तोप का गोला दागा जो सीधा खांडेराव के तंबू पर गिरा और
1: वो कर्तव्य की बलि वेदी पर
0: अपना जीवन होम कर बैठा।
1: वीर था मेरा पुत्र, पिछले 10 वर्षों में कितने युद्ध में आपके साथ रहा, हमेशा जीत कर ही आया।
0: और होलकर सेना का ध्वज कभी झुकने नहीं दिया।
4: क्षमा करें महाराज, वंश परंपरा के अनुसार संस्कार की तैयारी हो चुकी है।
0: जी, राजकीय सम्मान का भी ध्यान रखें।
4: जैसी आज्ञा, वैसा ही होगा।
6: महाराज क्षमा करें,

0: ऐसा कैसे संभव है? नहीं, ये उचित नहीं।
1: पति के प्रति तुम्हारा अनुराग, इतना प्रेम वंदनीय है, पर सती, नहीं नहीं नहीं।
0: अपने बच्चे मालेरा और मुत्ताबाई के बारे में नहीं सोचा? वे भविष्य है होलकर वंश के।
2: सोचा तो, पर पति के बगैर एक स्त्री का क्या जीवन है?
1: जीवन ईश्वर का अंश है, वो केवल तुम्हारा नहीं, उसके साथ दूसरों का जीवन और कल्याण भी जुड़ा है।
2: कैसे?
1: भूल गई? अपने गांव में कितने प्रेम और सेवा भाव से लोगों की सेवा करती थी।
2: तब मैं अकेली थी।
1: ना ना ना, प्रेम और सेवा भाव तुम्हारे मन से गया नहीं। अब तुम प्रजा के कल्याण की सोचो। तुम्हारे पास साधन है, शक्ति है, अधिकार है।
2: हाँ है तो, पर जीवन में अब आनंद कहाँ?
1: हाँ, विलास अब नहीं है, पर समर्पण का आनंद है।
2: किसे किसे करूं समर्पण? इस व्याकुल मन को?
1: अपनी व्याकुलता इन्हें अर्पित करो। ये शिव हैं। शिव का अर्थ ही है सुंदर और कल्याणकारी, अमंगल का नाश और मंगल का उदय।
2: यदि शिव ही मंगल का मूल है तो मेरा अमंगल क्यों?
1: चित को शांत करो। यह प्रश्न जो तुम्हें दुख दे रहा है स्वाभाविक है, ये तुम्हारी सांसारिक दृष्टि है। मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि इस जन्म में जन जन के कल्याण के लिए जो तुम्हारी भूमिका है, ये उसके उदय का संधिकाल है।
2: यानी? मैं समझी नहीं।
1: समझो इसे, जन्म और मृत्यु है क्या? सर्व शिवमय जगतः, इस असार संसार में सब शिवमय है। ये संसार शिवत्व का ही प्रकटीकरण है। शिव इस सृष्टि का शाश्वत तत्व है, सब तत्वों का सार और मूल।
2: अर्थात यहीं से जन्म और इसी में विलय। सर्वम शिवमय जगता, सर्वम शिवमय जगता।
1: संतुलन साधना ही शिवत्व है। लय और प्रलय दोनों शिव के अधीन है। शिव सौम्य भी हैं और रुद्र भी। ये अर्ध नारीश्वर हैं, पुरुष और स्त्री का सम्मिलित रूप। वे गृहस्थ भी हैं और वीतरागी भी। ये संतुलन ही कल्याणकारी शिवत्व है।
2: ओम नमः शिवाय, चैतन्याय, चिदंबराय।
1: ये जीवन, ये साम्राज्य शिव को अर्पित करो और उनकी ओर से इस राज्य पर कल्याणकारी शासन करो।
2: जैसी आज्ञा पिताजी। ओम नमः शिवाय।
3: अहिल्या को ढाढ़स बधाकर मल्हार राव पुत्र के अंतिम संस्कार में चले जाते हैं। धीरे धीरे दुख की छाया कम होने लगती है, राजकाज चलने लगता है।
4: अहिल्या सत्संग और भक्ति में अपने दिन काटने लगती है।
3: 20 मई 1766 को आलमपुर में मल्हार राव होलकर का निधन हो जाता है।
4: भालेराव होलकर को सत्ता मिलती है, पर अहिल्या बाई की देखरेख में।
3: पर क्रूर काल को यह भी मंजूर नहीं था। बीमार भालेराव भी सत्ता सुख नहीं भोग पाता, उसका देहांत हो जाता है।
4: एक वर्ष के भीतर ही ससुर और पुत्र को खोने के बाद अहिल्या बाई धीरज से राजकाज संभाल लेती है। यही वो परिवर्तन बिंदु है जहां से मालवा की प्रजा अपना उत्कर्ष देखती है।
2: सभी प्रजाजन और गुरुजनों को प्रणाम।
5: रानी मां, राज्याभिषेक के बाद आपका दरबार में स्वागत है।
2: मैंने अपने पूज्य महाराज मल्हार राव जी को वचन दिया था कि उनके अधूरे काम मैं पूरा करूंगी।
5: ऐसा ही होगा, हम सेवा में आज्ञा करें।
2: महाराज जी ने अनेक लड़ाइयां लड़ी, अब हम यहाँ अमन चैन चाहते हैं।
6: आसपास के राज्य तो सब शांत है, हाँ पाताल पानी और उधर जंगलों में डाकू गांव के लोगों को तंग कर रहे हैं।
2: आप घोषणा करवा दें जो वीर उन डकैतों को पकड़ेगा, हम अपनी पुत्री मुक्ताबाई का विवाह उससे करेंगे। पुरोहित जी, हम महेश्वर को अपनी राजधानी बनाना चाहते हैं, आपकी क्या राय है?
5: शुभ विचार है। नर्मदा का पावन तट और घने जंगल, पहाड़ सुरक्षित जगह रहेगी।
6: उधर के आदिवासी भील भिलाले हमारे साथी और मित्र हैं।
2: राजकोष से पैसे की व्यवस्था करें। हाँ, हमारा महल सादगी से बनेगा, वहां से माँ नर्मदा के दर्शन हो, ये ध्यान रखें।
3: बहादुर युवा यशवंत राव ने डकैतों को पराजित किया और उसका विवाह मुक्ताबाई से संपन्न हुआ।
4: महेश्वर में अहिल्याबाई ने भगवान शिव का विशाल मंदिर भी बनवाया।
3: विरोधियों ने खूब हल्ला मचाया, पर सेना तुकोजी राव के नेतृत्व में रानी के साथ थी। शिव की पूजा शिव का अर्चन, शिव की पूजा शिव का अर्चन और नर्मदा का पावन जल, जनहित में कल्याणी बनकर बनी अहिल्या मात सकल।

0: आज शिवरात्रि का पावन पर्व है। प्रजाजन अपनी तकलीफ हमें बता सकते हैं।
1: दरबार में मराठी कवि मोरोपंत, शायर अनंतराम भंदी, संस्कृत विद्वान खुशाली राम भी मौजूद हैं।
0: हम महेश्वर को विद्या और संस्कृति का केंद्र बनाना चाहते हैं। आप सभी सहयोग करें।
2: यहाँ की जलवायु वस्त्र साड़ी आदि बनाने के लिए अच्छी है।
0: ठीक है, हम सूरत से कारीगर लाकर यहाँ बसाएंगे, उन्हें उचित आवास और धन देंगे।
3: जी, सैकड़ों परिवारों को काम मिलेगा।
4: संस्कृत विद्यालय और शिक्षण का काम मैं संभालूंगा।
2: रानी माँ, हमारे समाज में माँ बहनों के लिए कोई पाठशाला नहीं है।
0: ये उचित नहीं है। खुशाली राम जी, आप इसकी योजना बनाएं। कहाँ कहाँ महिलाओं लड़कियों के लिए पाठशाला खोल सकते हैं, हम व्यवस्था करेंगे।
5: रानी माँ, जैसे कि हम पंचायतों को अपने क्षेत्र में शासन और व्यवस्था के लिए सुविधा दे रहे हैं, शिक्षा का जिम्मा भी उन्हें ही दे दें।
0: उचित सुझाव है। पंचायतों की सहयोग राशि और आय के लिए जमीन दी जा सकती है।
5: बंदोबस्त अधिकारी इस सारे काम के लिए लगाए जा सकते हैं।
0: मेरे पास लगान और दूसरे करों के बारे में काफी सूचना आई है।
5: असल में आसपास के छोटे राजा जमींदार अपने फालतू खर्चों के लिए हर कभी किसानों पर, व्यापारियों पर, दुकानदारों पर कर लगा देते हैं।
0: ये अत्याचार सब बंद करिए। किसानों व्यापारियों से बात करके लगान और कर की सीमा तय करें। उनका भी इतना हो और राज्य का भी खर्चा चलता रहे।
3: रानी माँ, बाहर कुछ मजदूरों की भीड़ लगी है, आपके दर्शन चाहती है।
0: आने दीजिए।
6: रानी माँ, हम गरीबों की भी सुनिए। ये बड़े बड़े व्यापारी, सामान, जमींदार हमसे खेतों में, हाट में काम करवाते हैं और एक ढेला भी नहीं देते। मजदूरी मांगो तो कभी आधी और कभी मार मिलती है।
2: हम गरीब भूखे मरते हैं, हमारे बच्चे अदनंगे बीमार घूमते हैं।
3: कभी बीमार होते हैं तो कोई दवाई या उपचार भी नहीं मिलता, ऐसे ही मर जाते हैं तड़प कर।
0: राज वैद्य को बुलाया जाए। राज वैद्य जी, आसन ग्रहण करें। इन गरीबों की सेवा के लिए आप क्या कर सकते हैं?
1: सामान्य सुलभ औषधि हम इन्हें निशुल्क दे सकते हैं। ये ग्रामीण आदिवासी जंगली बूटी के जानकार हैं। ये जंगल से सामग्री ला दें, हम औषध बनवा देंगे।
0: आप खुश हैं? मंजूर है? राज वैद्य जी, आप योग्य शिष्य भी तैयार करें ताकि उन्हें हम गांव भेज सकें। राशि हम देंगे। मंत्री जी, मजदूरों की मजदूरी के नियम तय करें, कोई बेगार नहीं करेगा, और भूखों के लिए अनाज राज्य के भंडार से दिया जाए।
5: पेशवा का पुणे से पत्र आया था अंग्रेजों के बारे में।
0: पेशवा को पत्र में साफ साफ लिख दें, आप बाघ, शेर, तेंदुओं को तो लड़ाई में मार सकते हैं, पर ये अंग्रेज रीछ के समान है। जब तक सिर में इनके मर्म स्थल पर ना मारा जाए, ये मरेंगे नहीं। पेशवा अंग्रेजों से दूर ही रहें तो अच्छा।
7: रानी माँ, आज श्रावण सोमवार है, आपके मंदिर जाने की तैयारी कर दूं?
0: हाँ, आज हजारों पार्थिव शिवलिंग बनेंगे।
7: सब व्यवस्था हो गई है?
0: सबको कह दो कि हर पार्थिव शिवलिंग में चावल के 8-10 दाने जरूर रखें,
7: ताकि नर्मदा मैया के जीवों को भोजन मिल सके, यही ना?
0: सभी तत्व शिव में है, उनको पालना है, हम तो केवल साधन है।
8: अपना सारा जीवन परोपकार में लगाने वाली पुण्य श्लोका अहिल्याबाई ने सारे देश में मंदिरों का जीर्णोद्धार किया।
9: आलमपुर में उन्होंने मल्हार राव और कुम्भेर में पति खांडे राव के स्मृति चिन्ह बनवाए।
8: बद्रीनाथ, वाराणसी, अयोध्या, द्वारका, अमरकंटक, बेलूर, चित्रकूट, गंगोत्री, गया, गोकर्ण, हरिद्वार और केदारनाथ आदि अनेक स्थानों पर बने मंदिर उनकी कीर्ति गाथा आज भी सुना रहे हैं।
9: अपनी निजी संपत्ति से बनाए गए ये सभी स्थान उस काल की स्थापत्य कला के भी सुंदर नमूने हैं।
8: मात्र 70 वर्ष की आयु में 13 अगस्त 1795 को लोकमाता अहिल्या शिवलोक को चली गईं।
9: क्या कहें कितनी कहें उस कल्याणी की यश गाथा। मन थक जाता है, कलम रुक जाती है।
8: 250 वर्ष पुरानी इस कथा में आपको आनंद जरूर मिला होगा। हमें आज्ञा दें, आज करें गुणगान सभी मिले, ऐसी जीवन गाथा का अपने दुख की छाया में उपकार उसी को आता था। जगह जगह पर बने शिवालय, जगह जगह पर बने शिवालय, मंदिर चमके गौरव से, जन जन को सुख चैन मिला, बचे युद्ध के रौरव से, सबके जीवन में मंगल हो, मन में इच्छा दमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव ध्रुव तारे सी चमक रही, मात अहिल्या नारी गौरव ध्रुव तारे सी चमक रही।
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या माता की
11: जय हो,
10: अहिल्या

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है कार्यक्रम भारत भारती। श्रोताओं, आज के कार्यक्रम भारत भारती में हम आपको सुनवा रहे हैं सितार वादन काजल जोशी का, और उसके बाद प्रस्तुति होगी अजय टिपानिया के गायन की। अंतिम प्रस्तुति दी जाएगी अजय प्रसन्ना के बांसुरी वादन की। तो लीजिए पेश है सबसे पहले सितार वादन काजल जोशी का।

श्रोताओं, अभी आपने सुना सितार वादन, जिसे पेश किया काजल जोशी ने। अब बारी है गायन की अजय टिपानिया द्वारा, जिसे प्रस्तुत किया जा रहा है।

इस तरह से प्रेम की प्यास जब लगती है तो हम उस अमी का पान करें। एक भजन में सद्गुरु कबीर इस तरह से कहते हैं।

गगन में इस तरह की झड़ी लगती है तो फिर उससे प्रीत होती है। इसी बात को साहेब कबीर ने एक भजन में इस तरह से कहा है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत भारती। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।
1: श्रोताओं, भागती दौड़ती जिंदगी में कुछ पल हंसने हंसाने के लिए, मुस्कुराने के लिए, गुदगुदाने के लिए मिल जाए तो ऐसा लगता है जैसे तप तपाती गर्मी में कोई ठंडी हवा का झोंका आया और मन को सुकून दे गया। और हमारा भी यही प्रयास रहता है कि हम अपने कार्यक्रमों के द्वारा आपको वो सुकून दे सकें कि आप मन ही मन गुदगुदाएं और मुस्कुराए बिना ना रह सकें। तो प्रस्तुत है हमारे हास्य नाटक LPG का 7वां सिलेंडर। श्रोताओं, दुनिया में 7 अजूबे हैं, धरती पर 7 समंदर हैं। शादी के समय 7 फेरे लिए जाते हैं, पति और पत्नी एक दूसरे को 7 वचन देते हैं, सरगम के सुर भी 7 होते हैं, यहां तक कि इंद्रधनुष के रोशनी के रंग भी 7 हैं। और तो और, हमारा भोपाल भी 7 पहाड़ियों पर बसा है। पर हमें समझ में नहीं आता कि सब्सिडी वाले रसोई गैस के सिलेंडरों की संख्या 6 क्यों है। सरकार को न जाने क्या सूझी कि उसने किचन के सिलेंडरों का कोटा साल भर में 6 फिक्स कर दिया। अरे ज्यादा नहीं, कम से कम 7 के आंकड़े का तो ख्याल रखा होता। तो लीजिए, हाजिर है सिलेंडरों की इसी कश्मकश से गुजरते हुए एक परिवार की राम कहानी।
2: ओफ यार, ये जूते कहाँ रख दिए?
3: ये जूते मिल जाए तो फिर चश्मे।
2: अरे सुनती हो क्या यार, ये लोग फोन मोबाइल कहाँ रखा है मेरा यार?
4: सुनिए जी, टिफिन। अरे सुन रहे हैं?
2: हाँ?
4: आज ऑफिस के टिफिन में आपको ब्रेड बटर दे रही हूँ, कहिए तो थोड़ा सा सॉस भी रख दूं।
2: ओफ, क्या कह रही हो, ब्रेड बटर?
4: हाँ।
2: अरे यार, तुम तो जानती हो कि ब्रेड मेरे पेट में चिपकती है, गोंद की बाप है ये चिपकोपन में। सुबह फ्रेश होना मुश्किल हो जाता है, चाय पर चाय पीते जाओ पर जोड़ है कि टूटते ही।
5: अरे मम्मी, पापा को भुने चने दे दीजिए लहसुन मिर्ची की चटनी के साथ, पापा कहते हैं भुना चना पेट साफ रखता है।
2: क्या बकवास किए जा रहे हो तुम लोग, कुछ ढंग का टिफिन नहीं दे सकते तुम मुझे? ब्रेड बटर भुना चना, मानो अग्निदेव हड़ताल पर चले गए हो।
4: चले गए नहीं है, पर जाने की धमकी जरूर दे रहे हैं।
2: क्या मतलब
4: भाई? 5 महीने बाकी हैं अभी साल पूरा होने में,
2: और नोटिस दे दिए हैं कि अब काम पे नहीं आएंगे वो, यही कहना है ना तुम्हें?
4: हाँ हाँ, कुछ ऐसा ही समझ लीजिए बस। पिछले 7 महीनों में हमने 4 सिलेंडर चट कर दिए हैं, अब बचे हैं कोटे के खाली 2 सिलेंडर।
2: क्या?
4: और महीने बचे हैं 5, यानी 1 सिलेंडर अब हमें 2.5 महीने चलाना है, जबकि जिस हिसाब से चल रहे हैं ना हम, हमारा 1 सिलेंडर 2 महीने भी तो चलता नहीं, और कुकिंग में कटौती भी करनी पड़ेगी।
2: कटौती माय फट, अब क्या पेट पर पट्टी बांधकर नौकरी करूंगा मैं? हार तोड़ खटो ऑफिस में और इसके बाद खाना भी नहीं मांगो? कमाल है भाई, कमाल है, है? एक सुबह गरम पराठा ना दो तो तुम्हारी बाई भी भाग जाए काम छोड़कर, और मैं
4: ए, देखो देखो जी, बाई से अपनी बराबरी मत करो, कह देती हूँ मैं। हाँ भाई, तुम मुंह फुला लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा मेरा,
2: है?
4: मगर बाई, बाप रे बाप, दूसरा पति तो मिल जाएगा।
2: क्या?
4: पर दूसरी बाई नहीं मिलने वाली भाई, उसके नाश्ते में कटौती का तो सवाल ही नहीं उठता, बाकी चाहे जो हो। अरे देख तो मंजू, लगता है कांता बाई आ गई। क्यों रे कांता, ये कोई टाइम है आने का? पहले तो तू कभी कभार ऐसा करती थी, पर अब तो तेरा रोज रोज।
6: अरे क्या करूं भाई साहब, सरकार ने सिलेंडरों में आग लगा के रखी है ना, अब जलते सिलेंडर से आग तो लग सकती है पर खाना बनने से रहा। सुबह सवेरे सवेरे लकड़ी बीन ना जाऊं ना तो लकड़ी भी ना मिले, एक अनार 100 बीमार वाला हाल है। एक टाइम लकड़ी के टुकड़ों पर खाना पकता है और एक टाइम गैस सिलेंडर पर, अब देर तो होगी ना भाई, आखिर नौकरी भी तो पापी पेट की खातिर ही कर रही हूँ ना।
2: हाँ, हाँ, तू ही कर रही है अपने पापी पेट की खातिर, और हम तो ऐसे ही कर रहे
4: हैं। अरे सुनिए तो, टिफिन तो ले जाइए, अरे कुछ एकदम खाली पेट रहेंगे क्या? उफ़
6: साहब, नाराज हो गए क्या भाई साहब?
4: अब छोड़ ना, तू नाश्ता कर ले।
6: भाई साहब, नाश्ता तो कर लूंगी पर आज है ना वो है ना पराठे के साथ है ना चाय भी मिल जाती तो थोड़ा सा क्या है ठंड है ना।
4: अच्छा बनाती हूँ अभी।
6: हाँ हाँ तो कई दिन भी हो गए सुबह की चाय नहीं मिली ना भाई साहब। पहले तो ठेले पर वो 2 रुपए कट मिल जाती थी पर अब अरे अब तो उनके भी रेट सिलेंडर की तरह भबक रहे ना।
4: ये ले चाय। अब मेरा माथा खराब ना कर कांता। देखा ना तूने कैसे लड़कर गए हैं अभी। तू चाय पी। तुझे तो गरम पराठे दे रही हूँ और वे भुने चने लेकर चले गए। तुझे क्या मालूम कि वो कैसे कैसे।
6: मालूम है भाई साहब। रो मत रो नको। मालूम है मेरे को सब मालूम है। अरे आग की जरूरत तो मेरी रसोई में भी पड़ती है ना। वो चाय वाले भी बोलते कि सरकारी रेट 2 गुना होता है ना तो ब्लैक वालों का रेट 4 गुना हो जाता है। हाँ
4: मैं क्या करूँ। सरकार तो कुछ भी बोल देती है बस। अब मैं कैसे घर चलाती हूँ ना। मैं ही जाती हूँ।
6: रो
4: हो गई ना तेरी चाय। अब जा बाकी काम कर।
6: हाँ,
4: झाड़ू पोछा पड़ा है सुबह से।
6: हाँ,

0: मंजू।
1: हाँ मम्मी।
0: जरा टीवी की आवाज कम कर दे बेटा।
1: हाँ मम्मी करती हूँ।
2: सुनो ना, सॉरी सुबह मेरी वजह से आपका मूड ऑफ हो गया, पर मैं क्या करूं बताओ। मेरे हाथ में तनख्वाह देखकर तो तुम निश्चिंत हो जाते हो, घर तो मुझे चलाना पड़ता है ना।
3: नहीं रचना, गलती मेरी भी है। अरे यार, मैं तो एक छोटा सा कर्मचारी हूँ, बॉस तक की बीवी ने राशनिंग का हुक्म सुना दिया है।
1: क्या?
3: बेचारा सुबह का नाश्ता अंकुरित चने से करता है। दांत साथ नहीं देते उस उम्र में, पर करे क्या, किसी तरह टेबलेट समझ कर कटक लेते हैं।
2: अच्छा सुनो, क्यों ना हम एक काम करें।
3: हाँ बोलो।
2: एक सोलर कुकर खरीद लें, दाल चावल तो उबल ही जाएगा ना उसमें।
3: हाँ, हाँ, हाँ।
2: सूरज भगवान की सब्सिडी और सरकारी सब्सिडी, इन दोनों को मिलाकर हमारा काम किसी तरह चल ही जाएगा।
3: क्या बात है भाई, क्या बात है। हमारी मेहमान साहब तो बहुत समझदार हो गई है। अब जाके हमें समझ में आया कि वैदिक काल में लोग अग्नि की इतनी पूजा क्यों करते थे। सच सच, ज्ञान पढ़ने से नहीं आता, ज्ञान आता है भोगने से।
2: अब देखिए जी, 5 महीने हमें 2 सिलेंडरों के सहारे निकालने हैं।
3: बिल्कुल।
2: ओके, तो अब सोलर कुकर ने 1/3 लोड भी ले लिया।
3: हाँ, हाँ।
2: तो गाड़ी धक ही जाएगी किसी तरह। फिर आपको भी टिफिन में ब्रेड चने नहीं खाने होंगे, हॉट केस में रखे गरम गरम दाल चावल की खुशबू से आप ऑफिस में अपना करवा चौथ खोलिएगा।
1: और मम्मी, फिर मैं भी गर्मा गर्म पोहे खाऊंगी रोज सुबह।
2: हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं भाई, अब तो सोलर कुकर देव का ही सहारा है, वे ही इस संकट से छुटकारा दिला सकते हैं अब।
3: वाह वाह, संकट
2: सोलर
3: मोचक।
2: कुकर देव की जय।
3: अरे यार रचना, ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे, कहाँ मेरा लंच बॉक्स है, ला।
2: माफ करना जी,
3: क्या
2: लगता है दोपहर के पहले नहीं पकने वाला है ये दाल चावल। ये सोलर कुकर में डाला है ना, और आज सूर्यदेव भी नरम पड़े हुए, लगता है उन्होंने भी सब्सिडी घटाने का मन बना लिया है।
3: ए भगवान, दुबले को दो आषाढ़। यार एक काम करो, अटपका ही भर दो तुम टिफिन में यार, पेट की आग से ही पक जाएगा अब तो खाना। आखिर आदि मानव भी तो कच्चा मांस ही खाता था, और कितना आटा कट्टा होता था।
2: ओहो, मुझे क्यों सुना रहे हो, अब सूरज देव ठंडे पड़ते जा रहे, तो मैं क्या कर लूं?
3: क्या करूं?
2: उनके आगे मोर्चा तो लेकर नहीं जा सकती ना। सारी मुसीबत मेरी, जैसी सरकार वैसे ही भगवान, आम आदमी के तो सबके सब दुश्मन है।
3: यार, अरे यार रचना, एक आइडिया आया है दिमाग।
2: हटो जी,
3: एकदम सुपर हिट है। एक काम करो, जिस हाल में भी है दाल चावल, तो उठा लाओ उसे, जल्दी लाओ, लाओ तो।
2: अरे अरे अरे अरे, क्या हो गया जी आपको, क्या आप सचमुच ही आदि मानव तो नहीं है? हे भगवान, सिलेंडरों की समस्या ने अब आपके दिमाग पर कोई असर तो नहीं डाल दिया?
3: अरे चुप रहे भाई, चुप रहे, मैं तुझे पागल दिखता हूँ। अरे लेके आओ यार सही अपना कच्चा पक्का खाना, फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे क्या करना है।
2: सच
3: लाओ, लाओ, जल्दी जाओ, जल्दी जाओ। हाँ,
2: ये लीजिए।
3: हाँ,
2: ये
3: हाँ।
2: बताइए अब क्या करूँ इस कच्चे पक्के खाने का?
3: अरे करना क्या है यार, ये सोलर कुकर के डब्बों को अब असली कुकर में डाल दो और उसको फिर गैस पर चढ़ा दो।
2: हाँ, अब फिर क्या फायदा हुआ?
3: ओफो, यही तो फर्क है तुम्हारी और हमारी अकल में। अरे अब खाना पकाने में आधा गैस खर्च होगा कि नहीं होगा, हैं? आधा गैस।
2: वाओ, मान गए आपको, वो क्या कहते हैं ना जी, दिनेश, मतलब दिनेश।
3: हाँ, मतलब हम दिनेश।
4: रचना और दिनेश ने न जाने क्या क्या तरीके अपनाए, पर सिलेंडर देव की आयु 2.25 महीने के ऊपर न जा सकी। एक बार फिर घर की दीवारों पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। 7वें सिलेंडर की कल्पना ही डरावनी है। भारत में आम आदमी का कलेजा अभी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह 1000 रुपए का सिलेंडर खरीद करके अपना रसोई का चूल्हा जला सके। पति पत्नी की 2 सदस्यीय कमेटी इस कठिन समस्या का हल तलाशने के लिए बैठ गई।
2: सुनो मामा जी एक काम करते हैं, घर में आलू आज से पूरी तरह बंद।
3: उससे क्या होगा, क्या बाकी सब्जियां कच्ची खाई जाएंगी?
2: अरे नहीं जी, सब्जियों का बिहेवियर आप क्या जानोगे दिनेश बाबू, ये तो हम गृह स्वामिनियां ही समझ सकती है।
3: क्या मतलब?
2: मतलब ये देखो, अब हमें पत्ते वाली सब्जियां खानी चाहिए, हाफ फ्राइड, पोषक तत्व भी भरपूर और गैस की बचत भी। वो डॉक्टर्स कहते हैं ना कि सब्जियों को ज्यादा पकाने से उनके पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं, नष्ट नष्ट नष्ट,
3: और मेरा वेट भी कंट्रोल में रहेगा, है ना?
2: वाव, क्या बात कही है आपने, तो मेरे मुंह की बात छीन ली, वेट कंट्रोल, तो समझिए सब बीमारियां कंट्रोल।
3: अरे भाड़ में जाए तुम्हारे पोषक तत्व और वेट कंट्रोल,
2: है?
3: जान ही दे देते हैं ना बाबा अपनी, है? न रहेगा वेट और न रहेगा कंट्रोल, और न करना होगा ऐसे कंट्रोल में, गैस सिलेंडर की जरूरत भी खत्म।
2: अरे क्यों नाराज होते हैं जी मेरे भोले पतिदेव, भाई आपकी तनख्वाह से तो काम चल नहीं रहा है, आपकी पेंशन से कैसे काम चलेगा?
3: क्या,
2: हमारा गोलू अभी छोटा है, अभी उसे बाप की जरूरत है जी।
3: जरूरत है तो नहीं होगा आलू बंद, हा? मेरा पेट ही नहीं भरता आलू के बिना। अरे आने दो सातवां सिलेंडर 1000 रुपए में, पर आलू पर कैंची कभी नहीं चलेगी।
2: ये भी आ गए सातवें सिलेंडर के दूध बनकर, करीबी में आटा गिला, गैस का 6 दिन का कोटा अब 3 दिन में ही खत्म हो जाएगा। पहले का जमाना ही अच्छा था, जंगल से लकड़ियां काट कर लाओ, मजे से चूल्हा जलाओ, कम से कम मेहमानों से डर तो नहीं लगता था।
3: क्या भुनर भुनर कर रही हो जी तुम, हैं? तुम औरतों की यही आदत मुझे बुरी लगती है, खुलकर नहीं बोलती, ऐसा लगता है जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। क्या हुआ?
2: घर में मेहमान है, गैस का हिसाब किताब तो पहले ही गड़बड़ाया हुआ था, पर अब तो पूरा गड़बड़ छाला हो चुका है, कोई प्रधानमंत्री राहत कोष भी तो नहीं होता ऐसे मामलों के लिए।
3: अरे ठीक कहती हो तुम, एक प्रधानमंत्री गैस कोष जरूर होना चाहिए, जिससे उन लोगों की मदद हो सके जिनके यहाँ मेहमान वगैरह आ जाएं। इन लोगों ने सिलेंडर का कोटा फिक्स करते हुए ये नहीं सोचा कि मेहमान भी आएंगे घर में, अरे कभी ठंडे खाने को गर्म भी करना पड़ेगा, कभी त्योहार भी पड़ेंगे, बस फ्लैट ऑर्डर पास कर दिया कि साल भर में 6 सिलेंडर। त्योहारों को गुड बाई बोल दो, मेहमानों को पहचानने से इनकार कर दो, खाना ठंडा हो जाए तो उसे वैसे ही निगल लो। पता चला बाहर की गैस बचाने के चक्कर में पेट के भीतर गैस भंडार बन गया।
2: सुनो सुनो सुनो सुनो सुनो, क्या खूब बात कही है,
3: क्या
2: बातों ही बातों में समस्या का अच्छा समाधान बता दिया।
3: अच्छा,
2: अगर कोई टेक्नोलॉजी इजाद हो सके कि इस गैस भंडार को सिलेंडरों में पैक कर ली जाए,
3: क्या
2: तो सारी समस्या ही खत्म। तब तो गैस कंपनियां कहेंगी जो साल में 6 से ज्यादा सिलेंडर इस्तेमाल करेगा उसे 50% का डिस्काउंट दिया जाएगा,
3: और फिर भी कोई खरीदार नहीं मिलेगा। आखिर मुफ्त की चीज कोई डिस्काउंट में भी क्यों खरीदे।

0: वाह वाह वाह वाह
1: यार, खाने में कुछ मजा नहीं आ रहा आजकल।
0: हाँ, लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हो यार आलोक भाई?
1: क्या बताएं यार,
0: क्या हुआ
1: यार दिनेश? सरकार इतनी बेरहम कैसे हो सकती भाई? ये
0: क्या हो गया? क्या
1: अरे मतलब? यही सिलेंडरों का कोटा।
0: हाँ,
1: कहते हैं साल में 6 से ज्यादा नहीं देंगे।
0: हाँ,
1: अरे भैया जब हम छोटे थे 60 रुपए का आने वाला सिलेंडर अब 500 रुपए का हो चुका है। कोटा करण अलग से, ऊपर से तुर्रा ये कि देश की आर्थिक तरक्की हो रही है। वाह,
0: सही कह रहा है यार तू आलोक। आर्थिक तरक्की तो तभी होगी ना जब हम लोग आधा पेट खाएंगे।
1: सही कहते हो, सही
0: पेट भर खाना खा लेंगे तो देश की तरक्की के लिए पैसा ही नहीं बचेगा।
1: हाँ, ये भी तुमने ठीक कहा। और करनी और करमगत ऐसे भैया के घर में जो हमारे कुकिंग मिनिस्टर बैठी है ना, अब वो खाने का कोटा फिक्स कर रही है। कहती है सुबह 1 से ज्यादा चाय नहीं मिल सकती।
0: जी, जी, जी,
1: टिफिन भी खाना है तो कच्चा माल खाओ, शाम की चाय बाजार में जाकर पियाओ। और कभी कभी तो ये कहती है कच्चा खाना खा करके जलते तवे पर बैठ जाओ।
0: अरे भाई क्या क्या बात कही है आपने, मेरे घर में भी यही सब चल रहा है। 6ठा सिलेंडर खुल चुका है। हाँ, और मेहमानों को भी इसी वक्त आना था। बड़ी मुश्किल से विदा हुए हैं, लगता है उनके घर में भी सिलेंडरों का कोटा खत्म हो रहा था। सोचा कुछ दिन दिनेश भाई के यहाँ चलो।
1: भैया दिनेश, मुझे तो अब मेहमानों से डर लगने लगा है। सोचता हूँ घर में आए मेहमान तो उन्हें होटल अलाउंस दे दूं बिल्कुल कैश, और कहूँ भैया ये लो पकड़ो और होटल में जाकर खाना खा पी लो बस।
0: हाँ बॉस, हमारी संस्कृति में कहते हैं अतिथि देवो भव। लेकिन सरकार की वजह से अब मेहमान भगवान नहीं जानी दुश्मन लगते हैं, जो आधे सिलेंडर गैस अपने संग उड़ा ले जाते हैं।
1: यार दिनेश, एक आइडिया आ रहा है मेरे दिमाग में।
0: वो क्या आ रहा है भाई, सुनाओ।
1: देख, क्यों ना हम सब मिलकर एक सिलेंडर इमरजेंसी फंड बनाए। किसी के घर में अगर 6ठा सिलेंडर समय से पहले खत्म हो जाए तो इस फंड से उसकी मदद की जा सके।
0: हाँ यार, मगर इस फंड में सिलेंडर आएंगे कहाँ से?
1: देख, हमारे यहाँ कई बार लोग छुट्टी पर बाहर जाते हैं ना।
0: जी, जी।
1: कभी कोई काम से बाहर चला गया, कोई अपने गांव चला गया, या अन्य किसी वजह से अगर किसी का कोटे वाला एकाध सिलेंडर बच जाए तो वो इसे हमारे फंड में दान कर दे।
0: वाह,
1: बदले में हम उसका सम्मान समारोह करेंगे, अखबारों में फोटो सहित न्यूज छपवाएंगे और लोगों को बताएंगे कि भैया आज के वक्त में ये है सिलेंडर दानी, यानी सिलेंडर दान महादान।
0: वाह यार, आइडिया तो दास हुए।
1: हाँ।
0: चल जाए तो सुपर हिट। कम से कम बिना तड़के की दाल खाने से तो छुटकारा मिलेगा।
1: क्यों भैये?
0: हाँ।
1: तुम्हें सिलेंडर दान नहीं करना है क्या?
0: है?
1: अरे दान त्याग मांगता है त्याग, भोग के बूते पर भी कभी कोई दान होता है।
0: जी अरे भाई, हमारी गिनती तो दान लेने वालों में ही रखो यार, तुम्हें देने वालों में तो तुम अपना नाम भले लिखवा लो।
1: देखो भैया दिनेश, सिलेंडर दान महादान।
2: दिनेश और रचना की सारी हिकमतें मिलकर भी 6ठे सिलेंडर की आयु को दीर्घायु न कर सकी। अभी साल पूरा होने में 1 महीना बाकी था, पर अचानक एक रात गैस का बर्नर भभक कर बुझ गया। समझ गए वे दोनों कि पंछी उड़ चुका है। सिलेंडर के भीतर रहने वाली गैस रूपी आत्मा महाप्रायण कर चुकी है। अब यह जो लाल रंग का लोहा बचा है, यह तो नश्वर शरीर है।
3: ओफो, अब क्या करूं, सब्जी अभी कच्ची है, गोलू का दूध भी गर्म नहीं हुआ, सुबह की ओफो, क्या मुसीबत है। अजी सुन रहे हो? सुनना जरा।
0: हाँ, हाँ,
3: देखो ना, गैस खत्म हो गई, पूरा काम पड़ा हुआ है, अब मैं क्या करूं बताओ। इसी बात का डर था।
0: एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, सुनो, लुढ़का कर देखते हैं सिलेंडर को, शायद थोड़ी सांसें बची हो अभी, 5-10 मिनट और जी जाए किसी तरह।
3: संभल के
0: जलाओ।
3: चल गया, जल गया। ये देखो, ये देखो लौ निकल रही है बर्नर से। हे भगवान, तू सचमुच कितना दयालु है भगवान, भक्तों का संकट दूर करने वाला। काम चला दो किसी तरह शारदा माता, हम सब परिवार मैहर दर्शन को आएंगे माता।
0: अरे क्या पागल हुई हो, कितने घाटे की डीलिंग है ये तुम्हारी, तुम्हें होश भी है? दर्शन करने का खर्चा कितना बैठेगा तुमने सोचा है कभी? अरे ये तो गज बचाने के चक्कर में थान हारने वाली बात है।
3: चुप रहो जी, कहीं माता रानी नाराज हो गई ना तो थान तो क्या, दुकान ही हार जाओगे तुम। एक एक सिलेंडर को तरसोगे, साल भर गाय की तरह कच्चा सानी खाते रहना, होश ठिकाने आ जाएंगे तुम्हारे।
2: लड़ाई के मैदान में जिस तरह कोई बहादुर सैनिक मरते मरते भी दो चार दुश्मनों को लुड़का देता है, वैसे ही दम तोड़ते सिलेंडर ने भी रात का खाना पका दिया है। पर सुबह क्या होगा, यह चिंता पति पत्नी को इस खाने का आनंद नहीं लेने दे रही। हर गौर के साथ चिंता की दो फांके निगल रहे थे वे दोनों। सुबह चाय कैसे बनेगी, दूध कैसे गर्म होगा, नाश्ता कैसे बनेगा, अनगिनत सवाल पति पत्नी के बीच राहु की तरह पंख फड़फड़ा रहे थे।
0: ये क्या कर रही हो रचना, आज रद्दी वाले को बुलाया क्या तुमने?
3: रद्दी वाले को नहीं बुलाया है, ये तो चाय बनाने का इंतजाम चल रहा है पति देव जी।
0: यानी अब रद्दी के कागजों से रसोई पकेगी?
3: नहीं, ये केवल सुबह का इंतजाम है।
0: तो
3: इसके बाद अगर कोई रसोई जलानी है तो जाकर कबाड़ी के यहाँ से एक आध क्विंटल रद्दी कागज खरीद कर ले आओ।
0: एक क्विंटल रद्दी कागज?
3: हाँ,
0: यानी 1000 रुपए का बिल। लग रहा है गैस खत्म नहीं हुई है रचना, बल्कि तुम्हारे दिमाग में चढ़ गई है। इतने में तो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर ही आ जाएगा।
3: वही तो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ।
0: क्या?
3: अब सब्सिडी का मोह छोड़िए, क्या पता कल को इन 6 सिलेंडरों पर भी सब्सिडी खत्म हो जाए। तो अभी से हमें आदत डालते रहना चाहिए, वही अच्छा है।
0: पर रचना, हमारे बजट का क्या होगा तब? ये एक्स्ट्रा खर्च कहाँ से आएगा भाई? किसकी जेब काट कर हम अपना घर चलाएंगे है? अब तो कर्मचारी संगठनों को सरकार से कुकिंग अलाउंस भी मांगना चाहिए। भाई खाना खाए बगैर तो कर्मचारी काम कर ही नहीं सकता। तनख्वाह से अनाज तो खरीद सकते हैं पर पका नहीं सकते उसे। पकाने के लिए अलाउंस का हक तो बनता है
3: यार। चिंता न करिए पति देव जी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ तो आपकी चिंताएं भी साझा करूंगी। अब सोच लिया है मैंने कि बजट को कैसे बैलेंस करना है।
0: कैसे बैलेंस करना है?
3: तो लीजिए, पेश है। कल से दूध का 1 पैकेट कम आएगा घर में
0: जी।
3: साल भर
0: है?
3: भविष्य के लिए अपने आप को तैयार रखना है। आज नहीं तो कल सब्सिडी वाले सिलेंडर बंद होने ही। पूरा दूध कच्चा पीने से अच्छा है कि आधा दूध उबाल कर पियो, पका खाना बोनस होगा।
0: पर काम कैसे चलेगा, 2 पैकेट में तो पूरा पड़ता नहीं है, 1 पैकेट में क्या होगा?
3: अरे पढ़ने का क्या है, 4 में भी ना पड़े और छोटी थैली में भी काम चल जाए। आखिर हमें उतने ही पांव पसारने चाहिए जी जितनी हमारी चादर है। कर्ज लेकर घी पीने की फिलॉसफी तो सही नहीं है ना। चाय में दूध थोड़ा कम पड़ेगा, फुल के बजाय कट चाय पी जाएगी। गोलू के दूध में भी थोड़ी राशनिंग हो जाएगी, इससे चीनी भी बचेगा और डायबिटीज का खतरा भी खत्म।
0: वाह वाह,
3: बीमार होने का रिस्क कम, यानी दवा दारू का खर्च भी बचा।
0: बहुत खूब,
3: बस हो गया बजट बैलेंस। बजट क्या, सरप्लस कहिए साहब, सरप्लस।
0: क्या बात है।
2: अब घर में 7वां सिलेंडर आ चुका है। पैसे जरूर दुगने से ज्यादा लग गए पर रसोई तो गर्म हो गई। कुकर की सीटी बज उठी है, चाय उबल रही है, जीवन की ऊष्मा सोंधी सोंधी महक रही है।
3: ये क्या है जी आपके हाथ में?
0: बूझो तो जानू।
3: अब बूझना क्या है, ये तो गैस का चूल्हा है, साफ समझ में आ रहा है। अब ये क्या फितूर सूझी आपको, एक नया खर्च बेवजह। भाई हमारा चूल्हा अच्छा भला तो काम कर रहा है अभी।
0: अच्छा भला नहीं काम कर रहा है धर्म पत्नी जी। अपना चूल्हा कभी ध्यान से देखा है आपने? पुरानी टेक्नोलॉजी का है तुम्हारी तरह ये चूल्हा।
3: तो क्या हुआ, मेरी तरह जलता भी तो है ये चूल्हा।
0: मगर गैस जरूरत से ज्यादा खाता है। पुरानी फिएट कार की तरह ये, जो चलती कम और धुआं ज्यादा देती है। तुमने ध्यान से देखा है कभी इसे? देखा है कभी इसे?
3: क्या
0: बर्तन की पेंदी कितनी काली हो जाती है इससे है?
3: और इस नए चूल्हे में?
0: तुम खुद ही खोल कर देखो इसे, सब समझ में आ जाएगा तुम्हें।
3: अरे इसमें तो लिखा है हाई थर्मल एफिशिएंसी अप टू 75%।
0: और तुम्हारे पुराने चूल्हे में क्या लिखा है ये भी देख लो लगे हाथ।
3: अब इसमें इसमें तो कुछ भी लिखा नजर नहीं आ रहा जी।
0: नहीं आ रहा ना?
3: नहीं
0: आएगा भी नहीं।
3: क्यों?
0: क्योंकि कुछ लिखने लायक होगा तब ना लिखा जाएगा।
3: अरे
0: मुझे भी नहीं मालूम था। वो तो जब से सिलेंडरों की राशनिंग हुई है चारों ओर रिसर्च शुरू हो गई है कि गैस कैसे बचाई जाए। कंपनियां भी अब स्टार रेटेड चूल्हे बाजार में ला रही हैं जो कम गैस खाते हैं। कई बुकलेट पब्लिश हुए हैं जिनमें बताया जा रहा है कि खाना कैसे पकाया जाए जिससे गैस की बचत हो। एक फ्री बुकलेट इस चूल्हे के साथ भी है, देख लो।
3: यही है ना बुकलेट?
0: हाँ यही है। क्या लिखा है बड़ा?
3: लिखा है हाउ टू सेव कुकिंग गैस इन किचन।
0: हाँ अब इसे जरा पूरा खोल कर पढ़ो तो। हाँ पढ़ो।
3: देखो ना, गैस बचाने के टिप्स
0: जी।
3: नंबर एक, गैस का चूल्हा ऑन करने के पहले पकाने की सामग्री अपने पास रख लें
0: जी।
3: इससे चीजें ढूंढने के दौरान आपकी गैस फालतू बर्बाद नहीं होगी
0: जी।
3: अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है।
0: हा।
3: अच्छा नंबर दो, सेपरेटर की मदद से एक ही प्रेशर कुकर में अनेक चीजें एक बार में ही पकाएं।
0: आगे बढ़ो, आगे बढ़ो।
3: वाह। नंबर तीन, चीजें कम पानी में पकाएं, ज्यादा पानी को भाप में बदलने के लिए ज्यादा गैस की बापरे। नंबर चार, बर्तन में रखा पदार्थ जैसे ही उबलना शुरू करे आँच धीमी कर दो।
0: जी जी,
3: सिंपल। ओके एक और है, एक और। दाल चावल को पकाने के पहले थोड़ी देर भिगो कर रखे।
0: मुझे तो, मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूँ, मुझे तो।
3: अच्छा अच्छा, चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। सिक्स्थ वाला,
0: जहाँ तक हो सके छोटा बर्नर इस्तेमाल करें।
3: अच्छा।
0: और बर्नर की समय समय पर यानी वक्त वक्त पर सफाई करें, खास करके तब जब बर्नर की लौ पीली नारंगी व एक जैसी ना हो।
3: अच्छा।
0: समझी?
3: हाँ।
0: अच्छी लौ की एक पहचान ये है कि इसे नीली चमकदार व एक जैसी होना चाहिए। एक
3: अच्छा,
0: जैसी
3: अच्छा,
0: वो नीली। और फ्रिज से निकाली गई चीजों को गैस पर चढ़ाने के पहले कमरे के ताप पर यानी कि रूम टेम्परेचर पर आ जाने दें।
3: हाँ, हाँ, हाँ,
0: इससे गैस की बचत होगी। और अगर इन सभी नियमों का पालन करोगे तो आपका गैस सिलेंडर दीर्घायु होगा, दीर्घायु।
3: नहीं मजाक नहीं, अरे इनमें से आधी बातें तो हम पहले से ही

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे एलपीजी का सातवां सिलेंडर। इस हास्य नाटिका में भाग लेने वाले कलाकार थे राकेश जमनी, स्वास्तिका चक्रवर्ती, रंजना तिवारी और इरफान सौरभ। लेखक श्रीमती पूनम जायसवाल। ध्वनांकन एवं संपादन अमित कुंदानी और अंकित सक्सेना का। परिकल्पना और सूत्रधार प्रमोद शर्मा। निर्देशन जवाहरलाल शाह। प्रस्तुति रेडियो आजाद हिंद।
1: मेगाहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए पेश है देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है।

सुनिए उनके बारे में जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व निछावर कर दिया। जानिए उनके बारे में जिनकी वजह से हमारा वतन आजाद है। सुनते रहिए 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

अभी आप सुन रहे थे देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम तराने आजादी। अब दीजिए इजाजत, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद 90.8 मेगाहर्ट्ज पर, देश का चैनल देश के लिए।

नमस्कार श्रोताओं, 90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। शाम के 5 बजे हैं। अब हमारी सांध्यकालीन सभा आरंभ होती है। आप सभी श्रोताओं का हम पुनः स्वागत करते हैं। आपके साथ मैं हूँ भगवती सक्सेना। हमारी ये सभा रात्रि 10 बजे तक निरंतर रहेगी। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

0: रेडियो आजाद हिंद से प्रस्तुत है हमारा अगला कार्यक्रम अक्षय निधि।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम अक्षय निधि। अक्षय निधि कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त से वाचन। ऋषि हैं सोमा होति भार्गव, देवता है अग्नि और छंद है त्रिष्टुप।
2: हुए वह सुद्योत्मानम सुवृक्तिम विषामग्निमतिथिम सुप्रयसम मित्र इव यो दिधिषायो भूदेव आदेवे जने जातवेदाः। हे याजको, दिव्य गुण संपन्न सभी उत्पन्न पदार्थों के ज्ञाता तथा मनुष्यों से लेकर देवों तक सूर्य देव के समान सभी के आधार रूप जो अग्निदेव हैं, उन प्रकाशित पापों को नष्ट करने वाले अतिथि के समान पूज्य तथा सबको प्रसन्न करने वाले अग्निदेव को हम आवाहित करते हैं। इमं विधन्तो आपाम सधस्थे द्विताददुर भृगवो विक्ष्वायोः एष विश्वान्यभ्यस्तु भूमा देवानामग्नि रतिर जीराश्व। अग्नि विद्या के ज्ञाताओं ने इन अग्निदेव को विशेष उपायों से अंतरिक्ष में जल के निवास स्थल तथा मनुष्यों के बीच पृथ्वी पर इन दोनों स्थानों में स्थापित किया। समस्त ऐश्वर्यों के स्वामी द्रुतगामी अश्वों वाले ये अग्निदेव सभी सामर्थ्यवान शत्रुओं को पराजित करें। अग्निम देवासो मानुषीषु विक्षुप्रियं धो क्षेष्यन्तो न मित्रं स दीदय दुषतिरुर्म्या आ दक्षायो यो दास्वते दम आ। जिस प्रकार यात्रा में जाने वाला मनुष्य अपने मित्र को घर की रखवाली के लिए नियुक्त करता है, उसी प्रकार प्रिय तथा हितकारी अग्निदेव को देवों ने मानवी प्रजा के मध्य स्थापित किया। अस्य रणवा स्वस्येव पुष्टि संदृष्टिरस्य हियानस्य दक्षोः वीयो भरिभ्रदोषधीषु जिह्वा मत्यो नरथ्यो दोधवीति वारान। जिस प्रकार अपने शरीर की स्वस्थता आनंददायी होती है, उसी प्रकार काष्ठादि को भस्म करके वृद्धि को प्राप्त हुए अग्निदेव की तेजस्विता भी सबके लिए रमणीय होती है। जिस तरह रथ में जुड़ा हुआ घोड़ा अपनी पूंछ के बालों को कंपाता है, उसी प्रकार वृक्ष वनस्पतियों को धारण करने वाले अग्निदेव की ज्वालाएं दिखाई देती हैं। आयन में अभवम वनदह पनंतो शिग्भो नामिमीत वर्णम सचित्रेण चिकिते रंसुभासा जुजुर्वाम यो मुहुरा युवाभूत। अग्निदेव की महानता का गान करने वाले तथा अग्निदेव की कामना करने वाले स्तोताओं को अग्निदेव अपने जैसा ही तेज प्रदान करते हैं तथा हव्य समर्पित किए जाने पर अपने अति मनोहर स्वरूप को प्रदर्शित करते हुए मंद होकर भी बार बार तरुण कांतिमान ज्वालाओं वाले हो जाते हैं। आयोवना तात्रिशाणु न भाति वारण पथारथ्येव स्वानीत कृष्णाध्वा तपु रणवश्चिकेत द्यौरिव स्मयमानो नभोभिः। जैसे प्यासा व्यक्ति पानी पीता है, उसी प्रकार द्रुत गति से वनों को जलाने वाले अग्निदेव रथ को वहन करने वाले घोड़े की भांति शब्द करते हैं। वह कृष्ण धूम्र मार्ग से जाने वाले सभी को ताप देने वाले रमणीय अग्निदेव नक्षत्रों से प्रकाशित आकाश की तरह सुशोभित होते हैं। स यो व्यस्थादभि दक्ष दुर्वीम पशुर्नैति स्वयुरगोपाः अग्निः शोचिष्माम् अत सान्युष्णन् कृष्ण व्यथिरस्वदयन्न भूम। जो अग्निदेव विविध रूपों में विश्वव्यापी हैं, जो विशाल पृथ्वी के पदार्थों को जलाते हैं, वे तेजस्वी अग्निदेव सभी व्यथाकारी कंटकों को, सूखे काष्ठों को तथा वनस्पतियों को अपनी ज्वालाओं से जलाते हुए रक्षक रहित पशु के समान इधर उधर स्वेच्छा से जाते हैं। नूते पूर्वस्यावसो अधीतौ तृतीये विदथे मन्मशंसी अस्मे अग्ने संयद्वीरं बृहंतं क्षुमंतं वाजं स्वपत्यं रईं दाह। हे अग्निदेव, आपने पूर्व समय में भी हमारा संरक्षण किया है, अतः हम तीसरे सवन में भी मनोहारी स्तोत्रों का उच्चारण करके उसका स्मरण करते हैं। हे अग्निदेव, आप हमें श्रेष्ठ धन तथा महान कीर्तिमान वीर संतति प्रदान करें। त्वया यथा गृत समदासो अग्ने गुहा वनवंत उपराम अभिष्युः सुवीरासो अभिमातिशाह समत् सूरिभ्यो गृणते तद्वयोधाः। हे अग्निदेव, जिस तरह गुफा में बैठे हुए अहंकार रहित स्तुति करने वाले ऋषियों को उत्तम संतति प्रदान करके आपने संरक्षण प्रदान किया, उसी तरह हमारे द्वारा ज्ञान पूर्वक की गई स्तुतियों से हमें श्रेष्ठ धन देते हुए संरक्षण प्रदान करें।
0: अक्षय निधि कार्यक्रम में अभी आपने सुना ऋग्वेद के द्वितीय मंडल के चौथे सूक्त से वाचन। प्रस्तुत कर रहे थे डॉक्टर नीलिम्ब त्रिपाठी। रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ। देश का चैनल देश के लिए। हम बोल रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद से, देश का चैनल देश के लिए। लीजिए प्रस्तुत है अगला कार्यक्रम भक्ति संगीत।

0: 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम इस समय आप सुन रहे हैं 90.8 MHz पर। बने रहिए रेडियो आजाद हिंद के साथ, देश का चैनल देश के लिए।

आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

90.8 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वतन का राग।

इस कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को हमारा नमस्कार। आज हम आत्मीय स्मरण कर रहे हैं महान संत आनंदमयी माँ का। हमारे देश में संत परंपरा अत्यंत प्राचीन रही है। भारतीय सनातन संस्कृति में साधु संत, ऋषि मुनि, आचार्य परंपरा का वर्णन हजारों साल पहले से मिलता है। सनातन धर्म में जितने भी अवतार हुए हैं, सभी के इन ऋषि मुनियों के आश्रम जाकर ज्ञान अर्जन करने का वर्णन भी मिलता है। इस तरह हमारे संत जीवन ज्ञान की पाठशाला के महान आचार्य हुए हैं। हमारा इतिहास बताता है कि विदेशी आक्रांताओं के कारण भारतीय संस्कृति पर अनेक बार संकट के बादल छाए। भूभाग की रक्षा तो राजा महाराजाओं के हाथ में थी, लेकिन अपने धर्म और अपनी संस्कृति की रक्षा में भारतीय संत परंपरा ने महत्वपूर्ण योगदान किया है। संत परंपरा हमारी सांस्कृतिक जागरूकता को प्रभावित करने वाली अंतरधारा के रूप में भी सदा सक्रिय रही है। इस तरह भारतीय संत परंपरा ने परोक्ष रूप से हमारी सांस्कृतिक जड़ों को सींचा है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने संतों की चर्चा करते हुए कहा है कि जो सुख और दुख दोनों को समान भाव से देखता है और ग्रहण करता है, जिसे अपने मान अपमान, स्तुति एवं निंदा की चिंता नहीं रहती, और जो सदैव धैर्यपूर्वक निष्काम भाव से काम करता है, वही संत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी श्री रामचरित मानस में संतों के दिव्य स्वरूप का वर्णन किया है। उनके अनुसार जिसके अंतःकरण में स्व की भावना का विसर्जन हो गया, वही संत है। गोस्वामी जी कहते हैं कि संतों के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह रूपी मनोविकार नहीं होते हैं। उनका जीवन जप, तप, व्रत और संयम से संचालित होता है। श्रद्धा, मैत्री, मुदिता, दया, करुणा आदि श्रेष्ठ गुण उनके हृदय में सदैव वास करते हैं। भारतीय जीवन मूल्यों की यही अमृत धाराएं आगे चलकर संत परंपरा बनी और आधुनिक भारत के इतिहास में आनंदमयी माँ इसी संत परंपरा की महान साधिका और संवाहक थीं। आनंदमयी माँ का जन्म 30 अप्रैल सन 1896 को ब्राह्मण बारिया जिले के खियोरा ग्राम में हुआ था, जो अब बांग्लादेश का हिस्सा है। पिता श्री विपिन बिहारी भट्टाचार्य और माता मोक्षदा सुंदरी उन्हें बचपन में निर्मला नाम से पुकारते थे। उनके पिता भगवान विष्णु के उपासक थे। उनका संसार के प्रति तीव्र वैराग्य था। वो रात रात भर भजन गाया करते थे। बाल्यकाल में ही निर्मला को कभी कभी भाव समाधि लग जाती थी। परिवार में उतना लौकिक धन नहीं था, किंतु घर आध्यात्मिक वातावरण से समृद्ध था। बालिका निर्मला ने सुल्तानपुर और खियोरा के गांव में कुछ समय शिक्षा ग्रहण की। हालांकि उनके शिक्षक उनकी योग्यता से प्रसन्न थे, लेकिन स्वयं में लीन और उदासीन व्यवहार के कारण उनकी माँ को लगातार अपनी बेटी के मानसिक विकास की चिंता रहा करती थी। लगभग 13 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह विक्रमपुर के रमणी मोहन चक्रवर्ती से कर दिया गया, लेकिन शादी के बाद 5 वर्ष वो अपने चचेरे भाई के यहाँ रहीं, जहाँ वो दिव्य ध्यान में समय बिताती रहीं।

17 वर्ष की आयु में वो अपने पति के साथ अष्टग्राम में रहने आई। फिर सन 1924 तक वो अपने पति के साथ बाजितपुर में रहीं और फिर सन 1924 में पति के साथ शाहबाग चली आईं। लेकिन ये एक ब्रह्मचारी विवाह ही साबित हुआ। पति ने उनमें महाकाली का रूप अनुभव कर उनका शिष्यत्व स्वीकार किया और भोलानाथ के नाम से प्रसिद्ध हुए। दिव्य आनंद की शाश्वत स्थिति में रहने के कारण सन 1920 से उनके अनुयायियों ने उन्हें आनंदमयी माँ कहकर पुकारना शुरू कर दिया। आनंदमयी माँ एक स्थान पर बहुत दिन नहीं रहती थीं, वो लगातार विचरण करती रहती थीं। वो अधिक पढ़ी लिखी नहीं थीं और न ही उनका कोई आध्यात्मिक गुरु था। वो स्वयं प्रकाशित आत्मज्ञानी थीं। उनके ज्ञान आलोक से प्रेरित और प्रभावित होकर बड़े बड़े पंडित और शिक्षित लोग उनके सत्संग और पथ प्रदर्शन से लाभान्वित होते रहे। माँ ने लड़कियों की शिक्षा पर हमेशा बल दिया। आध्यात्मिक साधना की उच्च अवस्था प्राप्त होने के बावजूद वो अत्यधिक सरल, निश्चल और विनम्र थीं। वो स्वयं को सदा एक छोटी अनपढ़ बच्ची ही कहती रहीं। उन्होंने प्रवचन नहीं दिए, प्रश्नों के उत्तर दिए, समाधान दिया। उन्होंने किसी को औपचारिक दीक्षा नहीं दी और गुरु कहलाने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सभी रास्ते मेरे रास्ते हैं और मेरे पास कोई खास रास्ता नहीं है, लेकिन लोग सदा उनसे कुछ न कुछ ग्रहण करने पहुंचते ही रहे। वो हमेशा कहती थीं कि हमें अपने दैनंदिन जीवन में चित्त शुद्धि के प्रयास करते रहना चाहिए, इससे ब्रह्म तक पहुंचने के रास्ते स्वयं खुल जाएंगे। आनंदमयी माँ को कोई शिव भक्त कहता था तो कोई उन्हें आधुनिक युग की मीरा कहता, जिनका रोम रोम श्री कृष्ण की भक्ति में डूबा हुआ था, तो वहीं कुछ लोगों को उनमें साक्षात महाकाली का वास दिखाई देता था। लोगों का मानना था कि भाव समाधि के द्वारा वो किसी को भी निराकार ब्रह्म का साक्षात्कार करवा सकने में सक्षम थीं। आम सांसारिक लोग मानते थे कि उनका जीवन अनगिनत चमत्कारों से भरा हुआ था, लेकिन संसार जिसे चमत्कार मानता था, आध्यात्मिक जगत में वो चेतना की एक स्वाभाविक अवस्था मानी जाती है। वो चेतना के ऐसे ही उच्च स्तर पर थीं। आनंदमयी माँ श्रीमद् भगवद् गीता में वर्णित साक्षी भाव को प्राप्त करने वाली एक महान संत थीं। अपनी आत्मा और शरीर को अलग अलग देखते हुए वो अपने अनुयायियों को निष्काम कर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती थीं। वो कहती थीं, कौन है जो प्यार करता है और कौन है जो कष्ट भुगतता है? केवल वही अकेले खुद खेल रहा है, उसके अलावा कौन मौजूद है? व्यक्ति कष्ट पाता है क्योंकि वो द्वैत को अनुभव करता है। ये द्वैत है जो शोक और दुख का कारण है। उस एक को खोजो जो सब में और सब जगह व्याप्त है, इससे दुख और दर्द का अंत हो जाएगा। भारत भूमि में वैसे तो ऐसे अनेक संत हुए जिन्होंने ज्ञान, भक्ति और कर्म के माध्यम से ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार किया, लेकिन करुणा को अपनी उपासना पद्धति बनाकर ईश्वरीय सत्ता का साक्षात्कार करने और करवाने वाले संतों में आनंदमयी माँ का स्थान अनूठा है। यूं तो आनंदमयी माँ योग मार्ग की साथिका थीं, पर उनका हृदय भक्तों का था। उन्हें भजन कीर्तन में विशेष रुचि थी और नाम संकीर्तन उनका सर्वाधिक प्रिय विषय था।

सुप्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और दार्शनिक गोपीनाथ कविराज आनंदमयी मां के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। सन 1928 से वो मां के संपर्क में आए और ये सानिध्य जीवन पर्यंत बना रहा। आनंदमयी मां के विचारों और कथन को उनके अनुयायियों तक पहुंचाने में गोपीनाथ जी की भूमिका महत्वपूर्ण थी। सन 1978 तक यानी कुल 24 वर्ष लगातार उन्होंने त्रैमासिक पत्रिका आनंद वार्ता का संपादन किया। आनंदमयी मां भारत के उन महानतम संतों में से एक हैं जिन्हें उनकी साधनाओं के कारण आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत श्रेष्ठ माना गया है। भारत के कई दिव्य संतों ने भी आनंदमयी मां की उन्नत आध्यात्मिक अवस्था की चर्चा की थी। स्वामी शिवानंद सरस्वती ने उन्हें भारतीय मिट्टी द्वारा उत्पादित सबसे उत्तम फूल के रूप में वर्णित किया, तो वहीं परमहंस योगानंद जी ने उनके आध्यात्मिक नाम आनंदमयी का अंग्रेजी में अनुवाद जॉय परमिटेड के रूप में किया। जब परमहंस योगानंद जी ने मां का जिक्र अपनी विश्व प्रसिद्ध पुस्तक एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में किया, तब इस किताब के जरिए पूरी दुनिया में मां का नाम प्रसिद्ध हो गया और विश्व के कोने कोने से लोग उनके दर्शन करने के लिए आने लगे। महात्मा गांधी और आनंदमयी मां के बीच भी घनिष्ठ आध्यात्मिक संबंध थे। आनंदमयी मां गांधी जी को पिता कहकर पुकारती थीं और बापू उन्हें मां कहते थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद भी मां के प्रति अटूट श्रद्धा रखते थे। गांधी जी के निधन के बाद आनंदमयी मां ने बापू की तुलना ईसा मसीह से की थी। आनंदमयी मां कहा करती थीं कि असली यथार्थ विचार और शब्द के परे है। उस ईश्वर के विषय में जो कुछ शब्दों में कहा जा सकता है केवल वही कहा गया है, लेकिन वास्तव में जिसे भाषा में परिभाषित नहीं किया जा सकता है वही वो परमात्मा है। आनंदमयी मां का अंतर कमल की भांति इस संसार से अलिप्त रहता था। सांसारिक विषय उन्हें छू नहीं पाते थे। त्याग और संतोष उनके जीवन व्यवहार का अभिन्न हिस्सा थे। इसी संदर्भ में एक प्रसंग बताया जाता है कि एक बार उनके पास एक मध्यम वर्ग का आदमी आया और उसने कहा, मां आपके लिए ये साड़ी लाया हूं। उस समय मां कमरे में टहल रही थीं। वो वहीं रुक गईं और कहा, साड़ी लाए हो? किंतु मेरे पास तो साड़ी है, अतिरिक्त लेकर मैं क्या करूंगी? उस व्यक्ति ने जवाब दिया, साड़ी तो आपके पास होगी ही मां, आपको भला किस चीज की कमी है? मैं तो बस अपना प्रेम लाया हूं, आप स्वीकार कर लेंगी तो मुझे खुशी होगी। इतना कहते हुए उस व्यक्ति की आंखें भीग गईं, वो ज्यादा बोल नहीं सका। ये देखकर आनंदमयी मां का हृदय प्रेम और करुणा से भर आया। उन्होंने वो सफेद साड़ी ले ली। अंदर के कमरे में जाकर उन्होंने वो साड़ी पहन ली और बाहर आई। उनके हाथ में पहले पहनी हुई साड़ी थी। उसे देते हुए वो कहने लगी, अब ये साड़ी तुम ले लो, जरूरत से ज्यादा साड़ियां इकट्ठा करके मुझे क्या करना है, आवश्यकता पड़ने पर परमात्मा देता है। संत ऐसे ही तो होते हैं। संतों में लेने का नहीं लुटा देने का भाव होता है। देहरादून में 27 अगस्त सन 1982 को आनंदमयी मां अनंत में विलीन हो गईं और 29 अगस्त को हरिद्वार स्थित उनके कनखल आश्रम में उनकी समाधि बनाई गई। उनका जन्म तत्कालीन बंगाल में हुआ, लेकिन उनकी आध्यात्मिक चेतना की आभा केवल भारत ही नहीं बल्कि समस्त संसार तक फैल गई। उत्तर और मध्य भारत में उनके द्वारा और उनके नाम से स्थापित संस्थाओं में आज भी उनकी आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव किया जा सकता है। उनकी स्मृति को कोटिशः प्रणाम।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की।

0: 90.8 मेगाहर्ट्ज़ पर आप हैं रेडियो आजाद हिंद के साथ और सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण, देश का चैनल देश के लिए।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। और अब वक्त है कार्यक्रम इतिहास के पन्नों से का। इतिहास के पन्नों से। इतिहास के पन्नों। श्रोताओं, इस श्रृंखला की तीसरी कड़ी में हमने सुना था 16वीं सदी में गढ़ा का गोंड राज्य अपने चरम पर पहुंच गया। महाप्रतापी राजा संग्राम शाह की पुत्रवधु रानी दुर्गावती ने 1550 ईस्वी से लेकर 1564 ईस्वी यानी अगले 14 वर्ष तक गढ़ा के गोंड राज्य की कमान अपने हाथों में ले ली। उन्होंने कई युद्ध लड़े, गढ़ा की सीमाओं को सुरक्षित किया। वो गढ़ा के लोक इतिहास में एक लोकप्रिय शासिका के रूप में आख्यानों, कहानी, किस्सों में कई शताब्दियां बीत जाने के बाद भी हमारी स्मृतियों में बनी हुई हैं। उसका प्रमुख कारण उनके द्वारा किए गए लोक उपयोगी कार्य हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका रेडियो मित्र संदीप और आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पूजा सक्सेना। पूजा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में फिर से एक बार।
3: नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: श्रोताओं, रानी दुर्गावती ने अनेक तालाबों का निर्माण कराया। हमने आपको पिछली बार बताया कि उनके शासनकाल में लगभग 56 तालाबों का निर्माण हुआ। रानी ही नहीं, उनके मंत्री आधार कायस्थ ने आधार ताल और उनकी दासी यानी चेरी ने चेरी ताल का निर्माण करवाया। जैसा कि पूजा जी ने पिछली बार हमें बताया कि जहां भी पानी का स्रोत होता है, भरपूर पानी होता है, वहीं संस्कृति पनपती है। तालाब बनने से केवल पानी ही नहीं मिलता बल्कि पूरी संस्कृति समृद्ध होती है। गांव बसते हैं, शहर बसते हैं, कृषि बढ़ती है और उद्योग धंधे पनपते हैं, धन संपदा बढ़ती है और कला और शिक्षा का भी विकास होता है। आइए जानते हैं तालाब बनने के साथ साथ उसके आगे की कहानी रानी दुर्गावती जी के अन्य योगदान डॉक्टर पूजा सक्सेना जी से।
3: गढ़ा में रानी के लोक उपयोगी कार्य जारी थे, धन संपदा सुख समृद्धि चारों तरफ फैल रही थी, यहाँ तक कि रानी की ख्याति भी बहुत दूर दूर तक फैल गई थी। रानी दुर्गावती के समकालीन दिल्ली पर मुगल शासक अकबर का राज था। अकबर का नाम तो आपने सुना ही होगा। अकबर के एक दरबारी लेखक हुए हैं अबुल फजल। अबुल फजल अकबर के जीवन और शासन आदि पर रोज लिखा करते थे और उसी डॉक्यूमेंट को हम किताब के रूप में देखते हैं, आईने अकबरी।
2: जी।
3: तो इस आईने अकबरी किताब में भी रानी दुर्गावती का उल्लेख हमको मिलता है। और एक खास बात यह है कि आईने अकबरी में लिखा है कि गढ़ा का गोंड राज्य इतना समृद्ध था कि वहाँ के लोग हाथी और सोने की मोहरों से लगान चुकाया करते थे।
2: मतलब रानी तो रानी, लेकिन उनकी जो प्रजा थी वो भी बहुत समृद्ध थी।
3: जी हाँ।
2: और पूजा जी, एक खास बात जरूर है कि अनेक राज्य जो बहुत समृद्ध थे लेकिन उन्होंने प्रशासन बहुत अच्छा किया, शासन बहुत अच्छा किया, लेकिन धर्म का परचम उन्होंने लहराने में कोई विशेष दिलचस्पी नहीं दिखाई, लेकिन यहाँ बात कुछ अलग थी।
3: जी हाँ, बिल्कुल। तो भारतीय परंपरा में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सबका महत्व है।
2: जी हाँ।
3: तो हम जब अपने जीवन में धर्म कार्य करने ही हैं,
2: जी,
3: है ना, आप यदि अच्छा पैसा कमाते हैं तो जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है कि आप धर्म कार्य पे खर्च करें। तो रानी दुर्गावती ने जहाँ एक और गढ़ा राज्य को इतना समृद्ध कर दिया कि किसान और व्यापारी लगान सोने की मुद्राओं और हाथी से चुकाने लगे, तो दूसरी तरफ रानी ने धर्म कार्य में भी कोई कमी नहीं छोड़ी। खूब मठ मंदिर बनवाए। यह वह समय था जब 16वीं सदी में बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहे थे और इसी का परिणाम था कि बड़े स्तर पर भक्ति आंदोलन भी चल रहे थे पूरे भारत में, और अनेक संत हुए जिन्होंने ईश्वर प्राप्ति के लिए निश्चल भक्ति का मार्ग सुझाया था। तो ऐसे ही एक संत हुए इसी सदी में, बल्लवाचार्य जी महाप्रभु
2: जी।
3: तो श्री बल्लवाचार्य जी ने पुष्टि मार्गीय संप्रदाय की स्थापना की। आपके अनुयायी भगवान श्री कृष्ण के भक्त होते हैं
2: जी।
3: और वे भगवान को बाल गोपाल के रूप में पूजते हैं। उनकी लीलाएं बताते हैं, उसको गाते हैं। तो भगवान को वो एक बालक के रूप में दैनिक चर्या में पूछते हैं, उनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, सुलाते हैं, है ना। ये भक्ति का एक तरीका है। और श्री बल्लभाचार्य जी महाप्रभु के ही एक बड़े प्रसिद्ध शिष्य हुए हैं, सूरदास
2: जी।
3: सूरदास का नाम तो आपने जरूर सुना होगा। तो संत श्री बल्लभाचार्य के उपरांत पुष्टि मार्गीय संप्रदाय के अगले गोस्वामी हुए, उनके पुत्र थे विट्ठल नाथ जी।
2: जी।
3: तो विट्ठल नाथ जी जो थे वो धर्मांतरण रोकने और पुष्टि मार्ग के द्वारा लोगों को अपने धर्म में दृढ़ विश्वास बनाए रखने के लिए प्रेरित करते थे
2: जी।
3: और इसी उद्देश्य से वो अनेक यात्राएं करते थे
2: जी।
3: तो एक बार विट्ठल नाथ जी ब्रज से यात्रा करते करते दक्कन की ओर जा रहे थे
2: जी।
3: तो जैसा हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको दक्कन की तरफ जाना है तो एक रास्ता जबलपुर से होकर गुजरता था जी। तो जब विट्ठल नाथ जी ब्रज से दक्कन की ओर जा रहे थे तो वो जबलपुर में रुके।
2: तो देखिए मतलब ये संयोग बनते जा रहे थे कि उनकी समृद्धता और बढ़ती जाए गढ़ा राज्य की, और इतने बड़े जो संत थे उनकी चरण रज जबलपुर में पड़नी थी तो पड़ी
3: जी। हाँ, जब विट्ठल नाथ जी जबलपुर गढ़ा पधारे
2: जी,
3: तो रानी दुर्गावती उनके आशीर्वचन लेने, उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए उनकी बैठक में आई। और आशीर्वचन पाने के बाद रानी दुर्गावती ने संत विट्ठल नाथ जी को गढ़ा के 108 ग्राम दान दिए।
2: वाह।
3: जिससे कि वो उन गांवों से जो राजस्व प्राप्त होता था उसको वो अपनी यात्राओं और धर्म कार्य के लिए प्रयोग कर पाए। लेकिन विट्ठल नाथ जी दान नहीं लेते थे, इसलिए उन्होंने विनय पूर्वक रानी से ग्राम दान लेने से इनकार कर दिया
2: जी।
3: अब विट्ठल नाथ जी जब आगे बढ़े गढ़ा से और दक्कन की ओर यात्रा करते हुए तेलंगाना पहुंचे, तब वहां पर लिंगायत ब्राह्मणों के साथ बहुत ही बुरा व्यवहार होते हुए उन्होंने देखा। उन्हें धर्मांतरित होने या राज्य से निकाले जाने के लिए बाध्य किया जा रहा था। तब विट्ठल नाथ जी उनका सहारा बने, उन्होंने लिंगायतों के एक बड़े समूह को अपने साथ ले लिया और वह ब्रज की ओर जाने लगे। तो ब्रज की ओर वापसी करते हुए वो एक बार फिर गढ़ा रुके,
2: फिर उनका आगमन यहाँ हुआ।
3: जी हाँ, फिर आगमन हुआ। तब उन्होंने रानी दुर्गावती से इस बारे में चर्चा की कि ये लिंगायत ब्राह्मणों की समस्या है, इनका क्या किया जाए। तब रानी दुर्गावती ने जो वो 108 ग्राम दान देना चाहती थी वो उन ग्रामों में इन लिंगायत ब्राह्मणों को बसा दिया।
2: वाह, तो ऐसे रानी दुर्गावती जी की भी इच्छा की पूर्ति हो गई और उन्होंने दान ना लेने का संकल्प लिया था लेकिन वो लिंगायत ब्राह्मणों की मदद करना चाहते, तो दोनों काज हो गए वहां।
3: दोनों काज हुए
2: जी।
3: तो आज भी जैसे नर्मदा नदी के किनारे एक गांव है गोपालपुर
2: जी,
3: और भी बहुत सारे गांव हैं, यहां पर बहुत सारी मढ़िया और चबूतरे दिखते हैं जिन पर शिवलिंग रखा होता है, शिवलिंग स्थापित होता है। ये सभी लिंगायतों के द्वारा उस समय बनाए हुए हैं जो आज तक हैं, और आज भी बहुत बड़ी संख्या में हमको जबलपुर में लिंगायत ब्राह्मण मिल जाएंगे
2: जी,
3: जो उसी समय में आकर यहाँ बसे थे।
2: आपने पिछले बार जिक्र किया था उनके द्वारा जो बनाए गए जो मठ और मंदिर थे उनकी एक विशिष्ट शैली थी, उस शैली के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे।
3: रानी दुर्गावती के काल में मंदिर निर्माण की एक नई शैली विकसित हुई
2: जी,
3: और इसे पचमठा कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है कि पच मतलब पांच और मठ यानी मठ। मठ यानी जहाँ पर विद्या अध्ययन होता है, शास्त्रार्थ होते हैं, शास्त्र लिखे जाते हैं, बाचे जाते हैं, उसे मठ कहते हैं। तो आप यदि कभी जबलपुर गए हों और भेड़ाघाट गए हों जहाँ नर्मदा बड़े जोर से बहती हैं, तो वहाँ सड़क किनारे एक पचमठा मंदिर दिखाई देता है
2: जी।
3: यह एक शिव मंदिर है। मंदिर एक ऊंची जगती पे यानी एक प्लेटफॉर्म पे बना हुआ है और मंदिर में पांच गर्भगृह हैं। आप सामान्य तौर पे जिन मंदिरों में अंदर जाते हैं तो गर्भगृह एक होता है, यहाँ पर पांच गर्भगृह होते हैं। यानी बीच में एक बड़ा गर्भगृह होता है और उसमें शिवलिंग प्रतिष्ठापित होता है, और इस गर्भगृह के चारों ओर एक मंडप होता है जिसमें स्तंभ लगे होते हैं, तो जिसके अंदर से हम प्रदक्षिणा लेते हैं। और इस मंडप से होते हुए जब हम प्रदक्षिणा लेते हैं तो जब हम जाएंगे तो चारों कोनों पर चार और छोटे छोटे गर्भगृह मिलते हैं। जबलपुर का ये भेड़ाघाट का जो पचमठा है इसके ये जो चारों छोटे गर्भगृह हैं ये अष्टकोणीय हैं, और इनमें भी चारों में शिवलिंग स्थापित है।
2: अच्छा।
3: और जो गर्भगृह की छत है वो गुम्बजाकार है। गर्भगृह की दीवारों को सुंदर ताखों और मेहराबों से सजाया गया है। इस प्रकार इसमें एक बड़ा और चार छोटे यानी कि कुल मिलाकर पांच गर्भगृह होते हैं, इसलिए ये पचमठा कहलाता है, और यहाँ पर शिक्षा अध्ययन हुआ करता होगा इसलिए इसे मठ कहते हैं।
2: और यहाँ पर जैसे विट्ठल दास जी आए तो उनका क्या प्रभाव यहाँ पर नजर आता है?
3: विट्ठल जी का प्रभाव हमको इस तरीके से दिखता है कि एक तो लिंगायत जब उनके साथ में आए
2: जी,
3: तो अनेक शैव मंदिर मठ मढ़िया बनी
2: जी,
3: जो अभी भी हैं।
2: बिल्कुल।
3: इसके साथ ही हमको कृष्ण भक्ति का भी बड़ा जोर यहाँ पर दिखाई देता है और अनेक मंदिर बनते हैं। तो जो पचमठा शैली है उसमें वैष्णव मंदिर भी हमको जबलपुर में बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं। जैसे गोपालपुर में है एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है, गोपालपुर में ही एक और पचमठा मंदिर भी है, वहाँ श्री कृष्ण बाल गोपाल रूप में पूजे जाते हैं, बड़ी मनमोहक प्रतिमा है छोटी सी इसमें। इसी तरीके से एक तिलवारा घाट में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, लमेटा घाट पे राधा कृष्ण मंदिर है, आधारताल जबलपुर में भी एक महालक्ष्मी मंदिर है, ये सब वैष्णव मंदिर है।
2: और ये जो सारे मंदिर है उनकी जो कहानी है वो गोंड शासन काल से जुड़ी हुई है।
3: जी हाँ, ये सभी रानी दुर्गावती के काल में बने हुए हैं
2: जी।
3: इसी तरीके का एक मंदिर गोपालपुर में, जैसा मैंने कहा कि दो मंदिर हैं गोपालपुर में, लक्ष्मी नारायण मंदिर
2: जी।
3: तो जो पहला मंदिर है वो भी नर्मदा नदी के किनारे है गोपालपुर में, और इसमें क्या खास है कि नदी के तट पर पानी के अंदर
2: जी
3: दो कुंड बने हैं जिन्हें एकादशी कुंड कहते हैं।
2: अच्छा।
3: तो यहाँ एकादशी के दिन विशेष स्नान होता है और आसपास के सारे श्रद्धालु स्नान करने दर्शन करने के लिए यहाँ पर आज भी आते हैं
2: जी।
3: ये बड़ी प्राचीन परंपरा है। ये मंदिर भी पचमठा शैली में है। मंदिर में आप जैसे ही प्रवेश करेंगे तो सामने एक मुखमंडप है, मुखमंडप में चार स्तंभ लगे हैं। इसमें भी जब आप अंदर जाएंगे तो एक बड़ा गर्भगृह है और उसके चारों ओर प्रदक्षिणा है, और यहाँ से आप प्रदक्षिणा लेते हुए जाते हैं तो चारों कोनों पर फिर छोटे छोटे चार गर्भगृह हैं
2: जी।
3: इस मंदिर के मुख्य गर्भगृह में लक्ष्मी नारायण की बड़ी ही सुंदर प्रतिमा विराजमान है जिसकी पर्व त्योहारों पर बड़ी धूमधाम से पूजा होती है। इस मंदिर के आसपास और भी बहुत सारी मड़िया हैं, चबूतरे हैं, यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, जैसा मैंने बताया था कि लिंगायतों ने ये स्थापित की थी वो आज भी है।
2: लेकिन गोपालपुर में ही जो दूसरा पचमठा शैली का मंदिर है वो पहले वाले मंदिर से किस प्रकार से अलग है?
3: हाँ, ये जो दूसरा मंदिर है ये थोड़ा सा अंतर है इसमें। वैसे ही पांच गर्भगृह हैं, एक बड़ा और चार छोटे
2: जी।
3: लेकिन इसकी जो छत है वो गुंबजाकार नहीं है बल्कि वो शंकुकार का है।
2: अच्छा।
3: ट्रायंगल जैसा
2: जी।
3: और बड़े गर्भगृह के चारों ओर दो छोटे छोटे गर्भगृह हैं, उनकी छत केवल स्तंभों पर टिकी, यानी जो छोटे गर्भगृह हैं उनमें दीवारें नहीं बनाई हैं, वो सिर्फ स्तंभों पर आधारित है उसकी छत। तो यहाँ पर बहुत सारे और भी शिव मंदिर हैं, जैसे एक मंदिर है तिल भंडेश्वर मंदिर, यहाँ पर हम जाएंगे, ये भी नर्मदा के किनारे है और ये मंदिर एक ऊंचे स्थान पे बना हुआ है
2: जी।
3: इस मंदिर में भी पांच मंदिरों का एक समूह है और एक ये बड़े प्लेटफॉर्म पर बने हुए हैं। मंदिर में जब आप प्रवेश करेंगे तो सबसे पहले एक मंडप आएगा और इसमें बहुत सारे स्तंभ लगे हुए हैं, तीन ओर से इसमें प्रवेश कर सकते हैं
2: जी।
3: मंडप के उपरांत हम देखते हैं कि एक गर्भगृह आता है, गर्भगृह के चारों कोनों पर चार लघु मंदिर हैं क्योंकि ये भी पचमठा मंदिर है, और मुख्य गर्भगृह की जो द्वार शाखा है ना, जो द्वार होता है उस पर एक सुंदरता के लिए कुछ चीजें उकेरते हैं तो उसे द्वार शाखा कहते हैं, तो वो भी बड़ी अलंकृत है, बड़े सुंदर सुंदर उसके ऊपर डिजाइन बने हुए हैं। और जब हम गर्भगृह में प्रवेश करते हैं तो वहां पर एक शिवलिंग है, तो शिवलिंग का जब अभिषेक होता है, उनका श्रृंगार होता है तो मुखलिंग की तरह होता है, उन्हें सजाया भी जाता है। और गर्भगृह की जो छत है वो गुंबजाकार है और मुख्य गुंबज के चारों ओर एक और चीज ऐड होती है इसमें, जैसे हम पचमठा मंदिर जब हम देखते हैं तो उसमें एक विकास क्रम दिखता है कि जब पहली बार बना तो ऐसा बना, फिर अगली बार उसमें डेकोरेटिव फीचर्स पड़ते चले जाते हैं
2: जी, जी।
3: ये विकास क्रम को जानने का एक तरीका भी है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो गुंबज है, जो मेन गुंबज है, उसके चारों ओर फिर छोटे छोटे गुंबज भी चार बन गए हैं
2: जी।
3: तो आगे आगे जैसे हम और जो आगे आने वाले राजा हैं जब उनका स्थापत्य कला देखेंगे तो फिर इसमें भी और भी इम्प्रूवमेंट होता चला जाएगा। तो इस तरीके के कई सारे मंदिर हमको आसपास दिखाई दे रहे हैं। नर्मदा के किनारे ही गोंड काल का एक हनुमान मंदिर भी है, ये तिलवारा घाट पर है। इस मंदिर में भी जब हम, ये एक मढ़िया की तरह दिखाई देता है, इसमें एक गर्भगृह है और गर्भगृह के ऊपर एक गुंबजाकार छत है और छोटे छोटे आले बने हुए हैं। अगर बाहर से प्रवेश कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि जब प्रवेश करते हैं तो बाहर दो हनुमान की प्रतिमाएं हैं।
2: अच्छा।
3: हाँ, और अंदर जो है वो शिवलिंग स्थापित है, तो ये कहलाता हनुमान मंदिर है। इस तरीके के बहुत सारे मंदिर गोंड काल के हमको दिखाई देते हैं। एक और मंदिर है यहीं पर ही तिलवारा घाट में, वो शिव मंदिर है। उसकी भी जो जगती है वो काफी ऊंची है और उस पर भी इसी तरीके का एक मंदिर बना है जिसमें एक गर्भगृह है, उसकी गुंबजाकार छत है और उसमें भी कई सारी जैसे ब्रह्मा, विष्णु और सूर्य की प्रतिमाएं, सूर्य की प्रतिमाएं बड़ी कॉमन है गोंड काल में।
2: अच्छा।
3: हाँ, ब्रह्मा की प्रतिमाएं भी मिलती हैं, हालांकि दूसरे मंदिरों में लगभग समाप्त सी हो गई ब्रह्मा की प्रतिमाएं बननी, लेकिन यहाँ गोंड काल में खूब सारी ब्रह्मा, लक्ष्मी और सूर्य की प्रतिमाएं खूब सारी मिलती हैं। तो इस तरीके के अनेक मंदिर यहाँ पर हमको दिखाई देते हैं।
2: तो पूजा जी, जैसे कि अनेक मंदिरों मठों का निर्माण तो कराया ही रानी दुर्गावती ने, लेकिन जो पहले से ही उनके शासनकाल के पहले से ही जो प्राचीन मंदिर थे, कहते हैं कि उनमें से भी बहुत सारे मंदिरों मठों का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया है।
3: ऐसे बहुत सारे हमको उदाहरण मिलते हैं जिसमें कि रानी दुर्गावती के काल में यानी गोंड काल में जीर्णोद्धार हुआ जो प्राचीन मंदिर थे। जैसे कि बिलहरी यानी कि कटनी में एक तापसी मठ है जो बहुत प्राचीन है, उसका भी जीर्णोद्धार रानी दुर्गावती ने करवाया था। इसके अलावा भेड़ाघाट जबलपुर पर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर, है ना,
2: बिल्कुल मुख्य आकर्षण भी है,
3: बहुत आकर्षण। और हम सब जानते हैं कि जो गोंड राजा हुए संग्राम शाह, उन्होंने भी बाजना मठ बनवाया था। तो ये जो 64 योगिनी मंदिर है, ये बना तो कलचुरी काल में था, 10वीं-11वीं सदी में, लेकिन 16वीं सदी तक आते आते इस मंदिर में काफी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया था। तो रानी दुर्गावती के काल में इस वृत्ताकार मंदिर जो है, इस वृत्ताकार मंदिर के मध्य में एक उमा महेश्वर मंदिर है
2: जी।
3: तो इसका मंडप किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो गया था, तो रानी दुर्गावती ने इस मंडप का जीर्णोद्धार कराया था। अगर हम देखेंगे तो बाकी का मंदिर तो कलचुरी काल का है, लेकिन मंडप के ऊपर एक डेकोरेटिव पीस है जिसको तिवाड़ी कहते हैं।
2: अच्छा।
3: तो वो तिवाड़ी जो है वो रानी दुर्गावती के काल में ही मंदिरों में बनना आरंभ हुई,
2: यानी इस मंदिर में कलचुरी काल की भी झलक हमें देखने को मिलती है और जीर्णोद्धार के कारण गोंड शासन काल की भी झलक देखने को मिलती
3: बिल्कुल
2: है। दो अलग अलग सभ्यता संस्कृतियों का मिलन है,
3: कलचुरी और गोंड, दोनों संस्कृतियों का संगम कहिए
2: जी।
3: तो हमने पहले भी एक एपिसोड में बात की थी ना, तो ये जो तिवाड़ी की मैंने बात की
2: जी,
3: तो ये एक सुंदरता के लिए बनाई जाती है, मतलब समझिए एक छोटी सी अलमारी होती है जिसका छोटा सा एक दरवाजा होता है।
2: अच्छा।
3: तो अगर आप ब्रज के, वृंदावन के या ये जो हवेली मंदिर होते हैं ना कृष्ण के, इनमें जाएंगे ना, तो ये तिवाड़ी जो गर्भगृह होता है जहाँ कृष्ण की मूर्ति स्थापित होती है, उसके ऊपर एक तिवाड़ी होती है जिसमें ग्रंथ रखते हैं।
2: अच्छा।
3: प्राचीन तिवाड़ यानी किवाड़ भी होता है।
2: अच्छा।
3: हाँ,
2: एक ऐसी अलमारी जिसमें कुछ किवाड़ जैसा लगा हो।
3: हाँ, लगा होता है, उसमें प्राचीन ग्रंथ रहते हैं। तो एक ऐसी भी मान्यता है कि ये जो तिवारी सरनेम आया है ना
2: जी,
3: ये इसी तिवाड़ी से आया है।
2: वाह, क्या इंटरेस्टिंग बात है पूजा जी।
3: जो इन ग्रंथों को पढ़ा करते थे उसमें से निकाल कर
2: जी
3: कृष्ण की जो सेवा भक्ति करते थे, वहीं से फिर वो तिवारी कहलाने लगे।
2: क्या बात है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात पूजा जी। ये जो आपने बात बताई कि तिवाड़ी जो एक अलमारी जैसी चीज थी जिसके ऊपर किवाड़ लगा होता था, वो किवाड़ी से फिर कहीं तिवाड़ी हुआ और आप कह रहे हैं कि वहां से वो तिवारी सरनेम तक बात आ पहुंची, तो न जाने हमारे आने वाले एपिसोड्स में हमारे श्रोताओं को आप और कौन कौन से राज से रूबरू कराने वाली है, कौन कौन से राज से आप पर्दा उठाने वाली। हमारे साथ हैं पुरातत्वविद डॉक्टर पूजा सक्सेना, इनसे बातचीत हम कर रहे हैं कार्यक्रम है इतिहास के पन्नों से। ये कार्यक्रम आगे भी जारी रहेगा, गोंड शासन काल की बात जारी रहेगी, रानी दुर्गावती की बात जारी रहेगी कि उन्होंने किस तरह से अपने शासनकाल में, पूजा जी बता रही हैं कि मंदिरों का, मठों का काम कराया, राज्य में प्रगति कराई, किस तरीके से उन्होंने नदियों का काम किया, नहरों का काम किया, जल स्रोतों के लिए काम किया, और भी उनके किए गए अभूतपूर्व कार्यों की बात करेंगे, उनके साहस की, उनकी वीरता की बात करेंगे। लेकिन आज के लिए बस इतना ही, अपने रेडियो मित्र संदीप शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार, सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। इतिहास के पन्नों से।

0: आपने अपने रेडियो सेट पर ट्यून किया है 90.8 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज फिर एक बार हाजिर हुए हम आपके बीच हमारा कार्यक्रम टेक गुरु लेकर, और टेक गुरु में आज बात करेंगे एआई पर। हमेशा की तरह हम कोई ना कोई नया सब्जेक्ट, नया विषय आपके बीच में लेकर आते हैं, और आज हमारा प्रयास है आप तक ये पहुंचाने का कि एआई क्या है, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन ये है क्या, किसके लिए फायदेमंद है, क्या नुकसान है, सुन तो सबने रख रखा है, अब इतना वृहद विषय है ये, इस पर प्रयास करेंगे कितना हम आप तक पहुंचा पाएं। इस विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ डॉक्टर अनुग्रह नगाइच। आप मैनिट यानी MANIT मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर है। अनुग्रह जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर, मुझे स्टूडियो में आके आपके साथ इस विषय पे अपने विचार प्रकट करने देने का मौका देने के लिए।
0: अनुग्रह जी, AI एक ऐसा विषय है जिस पर हम आपसे चाहेंगे रोशनी डालें, लेकिन उससे पहले चाहेंगे कुछ आपके बारे में।
1: जैसे आज से लगभग 20-30 साल पहले कंप्यूटर युग की शुरुआत हुई थी अपने देश में, आज पूरी दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के गुणगान गा रही है। मेरे ख्याल से कोई भी एक ऐसा क्षेत्र या विषय अछूता नहीं है जहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभावों की चर्चा ना हो रही हो। साथ ही साथ वृहद स्तर पर राष्ट्रों के बीच, देशों के बीच भी AI वॉर ऐसी संबंधी चर्चा आ रही है। तो AI के बारे में मेरा जो रुझान था, मैं मूल रूप से वास्तुकला एवं नगर नियोजन, ये मेरा ग्रेजुएशन का विषय रहा है, और मैंने 9 से 13 के बीच जब ग्रेजुएशन कर रहा था तब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में प्रथम दृष्टया मेरे को पता चला अपने संस्थान के कंप्यूटर साइंस के लोगों के द्वारा। तो उस समय मेरा परसेप्शन ये बना कि मशीनों के शायद संवाद, जो ऑटोनोमस मशीन्स बनाते हैं, रोबोट बनाते हैं जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है हॉलीवुड की, कि मशीनों के बीच के संवाद को शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग बोलते होंगे, इससे हमारा कोई उत्ता सरोकार नहीं रहने वाला है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस के उन्हीं का विषय होगा। लेकिन धीरे धीरे इसकी पड़ताल करने पे मुझे जानकारी हुई कि ये एक ऐसा विषय है जिसकी उपयोगिता मेरे आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, अर्बन प्लानिंग में भी है। तब मैंने धीरे धीरे इस पर शोध करना चालू किया। तो मैंने जैसे बताया ग्रेजुएशन आर्किटेक्चर अर्बन प्लानिंग से करके मैं IIT बॉम्बे गया, वहाँ पे मैंने जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड नेचुरल रिसोर्स इंजीनियरिंग, भू संचार प्रौद्योगिकी, इस पे अपना परास्नातक यानी पोस्ट ग्रेजुएशन किया। वहाँ पे मेरा जो काम था वो यही था कि किस प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका मशीन लर्निंग नाम का एक सब डोमेन है, उसकी मदद से हम लोग जो अपने सेटेलाइट इमेजरी रहती है उसकी विवेचना करने का, उसके विश्लेषण करने में योगदान ले सकते हैं। अगर मैं कहूँ तो यही वो समय था जब मैंने अपनी आंखों से AI का अपने विषय में इस्तेमाल देखा, और उस इस्तेमाल को, चूंकि मैं बाहरी था, कंप्यूटर साइंस से बाहर से आ रहा था, और मैंने देखा कि जब मेरे विषय में AI इतना ज्यादा प्रभावित कर रहा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, जैसे जब मैं यहाँ मैनिट में पढ़ता था तो किसी शहर की शहरी विकास योजना बनती है, शहर का एक नक्शा बनता है, तो 5-6 लोग 2-3 दिन बैठ के एक एक बिल्डिंग को फुटप्रिंट बनाते जाते हैं। मतलब शहर की सेटेलाइट इमेजरी इसरो से आएगी, एक एक सड़क को डिजिटाइज करेंगे, एक एक बिल्डिंग फुटप्रिंट को डिजिटाइज करेंगे, एक एक फीचर, नदी, नाले, पेड़, 5-6 लोगों की टीम 1-2 दिन लेती थी किसी भी बड़े शहर के लिए। AI की मदद से ये जो मैनुअल काम था डिजिटाइजेशन का, वो इसरो स्वयं ही करके देता था। मतलब वो अपने आप इमेज में, इसको कंप्यूटर विजन तकनीक बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के अंदर, अपने आप ही फीचर डेलिनेट हो गया। आप सोचिए 4-5 लोगों के 2-3 दिन की मेहनत एक क्षण में सॉल्व हो गई। उसके बाद से मेरे को ये चीज समझ में आई कि भाई इस तरीके से ये सिर्फ 2 मशीनों के बीच में संवाद का जरिया नहीं है, ये हम लोग जो कंप्यूटिंग डिवाइस को जैसा प्रयोग में लेते आए हैं आज तक, उसको पूरी तरह से बदलने वाला है। और फिर मेरे को समझ में आया कि ये मेरे विषय पे नहीं, लगभग हर विषय में जितने भी मैनुअल काम है उन सबको हटा के एक नए तरीके से काम करने की दृष्टि देगा। तो मेरे बैकग्राउंड से मैंने AI के साथ सामंजस्य बनाते हुए फिर इसी विषय को आगे ले जाने का सोचा, और फिर मेरी PhD जो संपन्न हुई वो पूरा मशीन लर्निंग बेस्ड वेटलैंड मॉनिटरिंग पे थी। और अभी मैं इसी विषय के बारे में और कैसे अलग अलग क्षेत्रों को प्रभावित करता है उस पे भी लोगों में जागरूकता फैलाने का या उनको इसके प्रति सेंसिटाइज करने का प्रयास करता हूँ।
0: तो AI क्या कोई सॉफ्टवेयर है जो लोग इसका इस्तेमाल कर लें और फिर अपने काम में ले लें?
1: सर, ये आपका बिल्कुल बहुत सही पकड़ा है आपने। कंप्यूटर रेवोल्यूशन में हम लोग के सामने, नजरों के सामने एक कंप्यूटिंग डिवाइस था, डेस्कटॉप कंप्यूटर था। आप देखे होंगे जब आप छोटे थे तो कंप्यूटर्स का जो यूज था वो बहुत लिमिटेड था, ऑफिसों में, पावर प्लांट्स में रहता था। आज इस स्टूडियो से लेके रेलवे स्टेशन के काउंटर तक, या अस्पताल के फ्रंट डेस्क तक, या किसी होटल के रिसेप्शन में लॉबी तक आप कंप्यूटर को हर जगह पाएंगे। कंप्यूटर एक प्रोडक्ट के कारण होने के कारण हम इमेजिन कर सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि हाँ कंप्यूटर के कितने उपयोग हो सकते हैं। AI वस्तुतः सॉफ्टवेयर ही है। सॉफ्टवेयर कहने का तात्पर्य यह है कि वो टेंजेबल प्रोडक्ट नहीं है जैसे कंप्यूटर था, जैसे टीवी था। वो एक प्रोडक्ट था, लेकिन जैसे इंटरनेट है दो कंप्यूटर्स के बीच में, चले इंटरनेट में मैं कहता हूँ कि कुछ हार्डवेयर रहता है वायर्स या वायरलेस, लेकिन एआई जो रहेगा वो कंप्यूटर के बैक एंड पे कंप्यूटर के प्रयोग को 10 गुना या 100 गुना या 1000 गुना और प्रभावी बनाएगा। उदाहरण मैंने आपको बताया कि 4-5 लोग जो मिलके एक शहर के खांचे को डिजिटाइज करते थे, वो एआई कुछ क्षणों में कुछ सेकेंडों में कर लेता है। या आपके पास मान लीजिए सेंसस डेटा है एक शहर का, लगभग 20 लाख लोगों के अलग अलग उनके सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया, उसकी आप जानकारी है, उससे अगर आपको एनालाइज करना है किसी विशेष पहलू पे, तो आपको पहले उसमें कुछ प्रक्रियाएं लगती थी, कुछ समय लगता था, कुछ ऊर्जा लगती थी, अब वो आप चुटकियों में कर सकते हैं। तो मूल रूप से ये बैकएंड में काम करने वाला एक टेंजिबल माध्यम मीडियम फॉर्म में ना होने के कारण इसको सॉफ्टवेयर तो सही नहीं होगा, लेकिन एक नॉन टेंजिबल रेवोल्यूशन है जो कंप्यूटर्स के बैकएंड पे हो रहा है, जो हमारे कार्य को बहुत अच्छे से कर सकता है। चैट जीपीटी आपने बोला, अब चैट जीपीटी आने से पहले लेखकों के कॉपीराइटर्स की बहुत अच्छी दुकान चलती थी, लेकिन एक ऐसा एप्लीकेशन जो हर मोबाइल में जाके आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट दे दे, आपको कॉपीराइट दे दे, तो ये बैकएंड में ही संचालित हो रहा है, वही एआई है।
0: एक बात जो अभी भी आपने कही कि 5 या 6 लोगों का फुटप्रिंट लगता था, 5-6 लोग उस पर 2-3 दिन 6 दिन काम करते थे, तो अब वो 5-6 लोग नहीं लग रहे, एक हाँ। बात दूसरी चीज उतना समय भी नहीं लग रहा,
1: बिल्कुल।
0: तो क्या माने एआई आने से लोगों के काम छिन गए?
1: देखिए, कोई भी नई तकनीक जब आती है तो अपने साथ कुछ तो कार्य क्षेत्र में चेंज लाती है। कंप्यूटर्स के आने के पहले मुझे याद है जब मैं छोटा था तो टाइप राइटिंग इंस्टीट्यूट रहते थे, शॉर्ट हैंड टाइपिंग होती थी, DTP डेस्कटॉप पब्लिशिंग के कोर्सेज होते थे और इसमें कई लोग जाते थे। कंप्यूटर्स आने के बाद और कंप्यूटिंग रिवॉल्यूशन के बाद, जब कंप्यूटर्स का फॉर्म फैक्टर, जब स्मार्टफोन आ गए या अलग अलग सॉफ्टवेयर्स आते गए, इंटरनेट पे बहुत सारी सुविधाएं मिलती गई, तो अब ये टाइपराइटर भी ऑब्सोलीट हो गया। DTP का जो एक व्यवसाय चलता था अपने भोपाल के जवाहर चौक में, आपको याद होगा कितने सारे DTP की जगह थी, या साइबर कैफे चलते थे। तो कोई भी नई टेक्नोलॉजी अपने साथ डिसरप्शन लाती है। हाँ, आपकी बात बिल्कुल सच है कि जो मैनुअल रिपीटेटिव काम है, जैसे नक्शे में फीचर्स को आइडेंटिफाई करना या रिसर्च करना, लाइब्रेरी में जाके अपने काम की चीज ढूंढ के लाना, तो जो मैनुअल रिपीटेटिव टास्क है वो काफी हद तक ऑटोमेट होने से मैन पावर काफी फ्री हो जाएगी। लेकिन सिर्फ इसका एक पहलू को देख के ये बोलना कि इतने सारे लोग अगर नहीं कर पाएंगे तो वो करेंगे क्या, ये थोड़ा बेमानी होगा। क्योंकि एक तरफ तो लोग फ्री हो रहे हैं रिपीटेटिव टास्क, तो चैट जीपीटी उनको ये सुविधा भी देता है कि वो चाहें तो कंटेंट क्रिएटर बन सकते हैं। कंटेंट क्रिएटर बनने में सबसे बड़ी बाधा आती है टेक्नोलॉजी के, कैमरे की, आज सबके पास स्मार्टफोन है, विषय की और विषय के प्रस्तुतिकरण की। आज चैट जीपीटी में आप अपने एक स्क्रिप्ट डालिए या उससे बोल दीजिए कि भाई इस विषय के बारे में कोई जानकारी दे। हाँ, ये जरूर है कि वो जानकारी सही है कि नहीं है वो हमको देखना है, लेकिन अगर जानकारी आ गई तो उसे किस प्रकार से शॉर्ट फॉर्म वीडियो में 30 सेकंड 60 सेकंड में क्लब डाउन करना है, ये हर कोई कर सकता है अपने मोबाइल से। तो लोगों के पास जीविकोपार्जन के, स्किल डेवलपमेंट के नए आयाम भी खुलेंगे। तो स्किल रिफॉर्म करना, स्किल डेवलपमेंट करने की तो आवश्यकता रहेगी, लेकिन इस विषय में बहुत ज्यादा सोचना कि बेरोजगारी बढ़ाएगा, मेरे ख्याल से जॉब का नेचर बदल जाएगा और बदलते समय में लोगों को भी उस स्किल को रीडेवलप करना पड़ेगा, ये एआई एक आयाम लाने वाला है। मैं यहाँ पे जो प्रशासनिक अकेडमी है वहाँ पे भी इसी विषय पे ट्रेनिंग लेने जाता हूँ, तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि बदले समय में एआई के युग में सफलता पाने के लिए, चाहे वो निजी क्षेत्र में हो, प्रोफेशनल में हो, सबसे जरूरी रहेगा 3 चीज़ों करना, लर्न, अनलर्न और रीलर्न, यानी सीखना, फिर उसे भुलाना और पुनः सीखना। क्योंकि टेक्नोलॉजी जितनी तेजी से परिवर्तन लाएगी उसमें मुझे भी एज अ शिक्षक, और अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको एक डिटेल उदाहरण दूंगा, IIT और के मेरे कुछ साथी शिक्षक है और हम लोग किस विषय में विवेचना करते हैं कि AI हमको रिप्लेस ना कर दे, हमें भी अपने फील्ड में रिलेवेंट बनने के लिए स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, अनलर्न करना पड़ेगा और रीलर्न करना पड़ेगा।
0: मैन पावर की भी आपने बात कही थी, तो इसे मैन पावर फ्री करना बेरोजगारी ही बढ़ाना तो है या नहीं?
1: देखिए, जो 5 दिन हम लोग नक्शा बनाने में लगाते थे वो 5 दिन बचा के हम उसको नक्शों की अच्छे से विवेचना करने में लगा सकते हैं, एडवांस स्टडी कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर मैं किसी शहर के सड़कों को डिजिटाइज करने में 2 दिन लगाता था, अब मेरे को सड़कें बन रही हैं। और इनफैक्ट मेरे को ऐसा सौभाग्य मिला था अमृत के मास्टर प्लान प्रोजेक्ट में, मणिपुर के इम्फाल शहर के मास्टर प्लान प्रिपरेशन में, वहाँ पे हमें जो इसरो से शीट्स आई, सर्वे ऑफ इंडिया ने भेजी, वो ऑलरेडी डिजिटाइज थी। हमको वो नक्शा ले जाके ग्राउंड ट्रूथिंग करनी थी, मतलब वो नक्शे ले जाके साइट में चेक करना था कि कौन से फीचर सही है कौन से गलत है। तो जो प्रक्रिया 6 महीने लेती थी वो अब मेरे ख्याल से 25 या 30 दिन में पूरी हो गई। हम लोग नक्शे लेके जाते थे, पेंसिल से मार्क करते थे और वही भेज के इसरो में अपडेट कर लेते थे। इस बचे हुए समय को हमने उस नगर का, इम्फाल की, अच्छे नगरी नियोजन, शहरी नियोजन कैसे किया जाए, कैसे हरियाली के बारे में क्वांटिफाइड स्टडी की जाए, उसमें लगाया। तो जहां समय बचता है वहां पे उसे दूसरे तरीके से उपयोग करने की सुविधा बढ़ जाती है। कई लोग जो AI विषय विशेषज्ञ है वो कहते हैं कि वर्क डेज लिमिटेड हो जाएंगे, मतलब जो 6 दिन या 7 दिन या 5 दिन काम होता है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी तो ये वर्क आवर्स कम हो जाएंगे, तो इस चीज को हम चैनलाइज कर सकते हैं दूसरे उसमें। हाँ, ऐसे लोग जो मैं कह सकता हूँ शैक्षणिक स्तर पे नीचे है, जो इतने स्किल डेवलपमेंट नहीं है, उनके लिए भी चीजों या तकनीक के प्रति उनकी पहुंच जो है वो और सुविधा युक्त हो जाएगी, तो अगर वो चाहे तो इसकी मदद से नए स्किल्स को सीख के अपने आप को मार्केट रिलेवेंट बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा ना, टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन हर युग में हुआ है, ये टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शन चूंकि AI इतनी तेजी से चेंज हो रही है तो बहुत आसानी से लोग प्रिडिक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हाँ देखा जाए तो लोगों के पास ये संभावना रहेगी कि अपनी स्किल को अनलर्न करके कैसे वो रीलर्न करके मार्केट रिलेवेंट बन सकते हैं।
0: अनुग्रह जी, एक बात और कि अभी AI को आए हुए तकरीबन 2-2.5 साल हुए हैं अगर माने, तो अभी सबसे ज्यादा उपयोग इसका कहाँ हो रहा है?
1: देखिए, मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शोध विषय है ये 1960 से चल रहा था, 2-4 साल पहले इसलिए हुआ है क्योंकि अब हमारे पास टेक्नोलॉजी उस लेवल पे पहुंच गई थी कि हम AI के एडवांटेजेस को रियल लाइफ में देख पाए। जैसे मैंने बताया कि मैं 2014 से 16 के बीच में जब पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था तब मैंने AI के कुछ परिणाम देखे थे। 2022 के एंड में जब ChatGPT लॉन्च हुआ, वो पहला ऐसा स्टेज था कि एक सामान्य आदमी भी एक तरह से यूज कर सकता था AI को अपने दैनिक डेली डे टू डे टास्क के लिए। तो आज की डेट में मेरे ख्याल से पिछले 2-2.5 साल में ChatGPT हो गया है, Gemini हो गया है, Airtel के यूजर है तो Perplexity मिल जाता है फ्री में, इतने ज्यादा लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं, टेक्स्ट बेस्ड लर्निंग मॉडल्स हैं, तो ऑलमोस्ट हर विषय में ही इनकी उपयोगिता हो रही है। मैं आपको एक उदाहरण और देना चाहूंगा, उससे आप समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा कहाँ यूज हो रहा है। इसकी बजाय अगर प्रश्न ये हो कि कहाँ यूज नहीं हो रहा है, वो है जैसे मैं अपने IIT कानपुर के कंप्यूटर साइंस के बहुत वरिष्ठ सीनियर प्रोफेसर है उनके साथ बैठा था, IIT हैदराबाद की कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और रुड़की के प्रोफेसर के साथ बैठा था, और भी मेरे साथी लोग थे, हम लोग एक वर्कशॉप में गए थे, वहां पे चर्चा हो रही थी, तो वहां पे कंप्यूटर साइंस कानपुर वाले कंप्यूटर साइंस के सीनियर प्रोफेसर ने बोला कि भाई ये AI हम लोग को भी रिप्लेस कर देगा। तो मेरे को थोड़ा आश्चर्य हुआ, मैंने बोला यार IIT के कंप्यूटर साइंस के जिन्होंने मशीन लर्निंग पे पिछले 20-30 सालों से शोध किया हो, वो प्रोफेसर ऐसा बोला। मैंने पूछा प्रकाश डाली, तो बोला कि IIT में उनका एक स्टूडेंट है उनके विषय का कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का, वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है, असाइनमेंट प्रॉब्लम प्रोजेक्ट बहुत बढ़िया करता है, एग्जाम में अच्छे नंबर लाता है, मतलब ही इज वेरी शार्प, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं करता
0: जी।
1: तो जब उनसे पूछा गया, चूंकि उसमें मेंटरशिप होता है IIT में, डिप्रेशन में नहीं चले जाए, सुसाइड नहीं हो, तो संवाद अच्छा रहता है टीचर और स्टूडेंट का, तो उसको बुला के पूछा भाई आप पढ़ाई में अच्छे हो लेकिन क्लास नहीं आ रहे हो, कुछ सब कुछ कुशल मंगल है, क्या समस्या है? तो बच्चे ने बोला सर जो मैं कॉन्सेप्ट्स क्लास में पढ़ाए जाते हैं, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ, वो मैं AI की मदद से इंटरैक्टिव तरीके से, 1 घंटे का मान लीजिए क्लास है तो 15 मिनट में वो टॉपिक समझ जाता हूँ। और ऐसे टूल्स हैं, मैं भी अपने टीचिंग पेडागोजी में पढ़ाने के लिए कई ऐसे टूल्स यूज करता हूँ कॉन्सेप्ट्स को समझाने के लिए, कैसे इसको सरल भाषा में समझाया जा सके। तो बोले सर 1 घंटे की क्लास का मटेरियल मैं 15 मिनट में कंज्यूम कर लेता हूँ और वो मेरे रिजल्ट में प्रोजेक्ट में दिख रहा है, बचे हुए 45 मिनट में मैं इंट्राडे ट्रेडिंग या ऐसा कोई नया स्किल सीखता हूँ जो मेरे जीविकोपार्जन में या प्लेसमेंट में मेरे काम आए, तो मेरे लिए क्लास आने का इंसेंटिव क्या है? अब ये प्रश्न देखिए, कॉलेज IITs में अगर एक उद्देश्य देखा जाए तो ठीक है, आप लोगों को पैकेज अच्छा मिले, इंस्टीट्यूट्स शुड गिव गुड प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट्स, तो बच्चा कमाने लायक स्किल सीख रहा है, और जो कॉन्सेप्ट उसको क्लास में पढ़ाए जा रहे हैं शिक्षकों के द्वारा, वो बोल रहा है कि वो 15 मिनट में सीख रहा है। तो प्रोफेसर ने यही कहा कि भाई AI तो हमको भी रिप्लेस कर देगा। अब इस बदलते दौर में हम ऐसा क्या करें कि हम लार्ज लैंग्वेज मॉडल से बेहतर बच्चों को एंगेज करके रख पाए, ये चैलेंज है। ये मैंने आपको उदाहरण इसलिए बताया कि टीचिंग एक ऐसा विषय है जहाँ पे अपन कोशिश करते हैं कि 1-on-1 बात करके बच्चों के सर्वांगीण विकास में योगदान दिया जाए, वहाँ पे भी AI घुस चुका है। और ये एक फील्ड का है, जैसे मैंने आपको बताया सोशल मीडिया में आजकल कंटेंट क्रिएटर इन्फ्लुएंसर्स की भरमार आ गई है, आपके आजू बाजू भी कई लोग ऐसे होंगे जो जिनके बारे में आपने कभी सोचा नहीं था कि ये लेखनी में उतने उत्कृष्ट हो सकते हैं, वो सब इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, कैमरे में ऑटोमेटेड फिल्टर्स हैं। आप किसी व्यक्ति को निजी रूप से जानते हैं लेकिन आप उसकी तस्वीरें देखेंगे तो आपको लगेगा यार इसने प्रोफेशनल फोटोशूट करवाया हो, उसके पास AI इनेबल्ड कैमरा या फिल्टर्स है। तो प्रश्न अगर ऐसा हो कि कौन से ऐसे विषय हैं जहाँ पे AI पेनिट्रेट नहीं करेगा,
0: वो DP में बड़ा भारी एक परिवर्तन दिख ही रहा है।
1: हाँ,
0: मतलब वो ऐसा कह सकते हैं, चूंकि अपन ने बात ही शुरू करी थी, विषय भी अपना AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मतलब कुल मिला के आर्टिफिशियल उसमें सब कुछ है, बहुत कुछ है, वास्तविक कितना है ये एक अलग विषय है।
1: हाँ।
0: उस आर्टिफिशियल को कितना आप और कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। एक बात आपने कही थी अभी अभी, 15 मिनट में कोई भी स्टूडेंट वो अपने विषय को उससे बेहतर समझ लेता है, तो ये अंतर कैसा है? क्या मतलब वाकई जैसे कोई 10वीं का 12वीं का स्टूडेंट या कहीं का पढ़ने वाला इंजीनियरिंग का मेडिकल स्टूडेंट, ऐसा क्या है कि वो उसको उसमें 15 मिनट में उस चीज़ को समझ लेता है बनस्पत टीचर के समझने से?
1: देखिए आप भी कभी कोशिश करके देखिएगा कोई ऐसा तकनीकी विषय जिसके बारे में आपको जानना है, जैसे AI बाल लीजिए, आप चैट GPT खोल के उसमें लिखेगा इमेजिन यू आर अ टीचर
0: जी,
1: एक्सप्लेन AI टू मी लाइक आई एम अ क्लास 10th स्टूडेंट
0: जी,
1: क्लास 5th स्टूडेंट करके देखिएगा, उसका आउटपुट अलग रहेगा। आई एम अ स्टूडेंट परस्यूइंग लेट्स से BA इन पॉलिटिकल साइंस, तो आप पाएंगे कि वो जो लार्ज लैंग्वेज मॉडल है कोई भी चैट GPT हो या एंथ्रोपिक, वो हर बार आपके उस स्तर के हिसाब से आपको आंसर दे रहा है। इन सब लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का सर जो ट्रेनिंग डेटा सेट है वो बहुत विशाल है। मतलब ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की काम करने की प्रक्रिया ऐसी रहती है कि दे डोंट अंडरस्टैंड, वो ये नहीं समझते कि वो क्या बोल रहे हैं। वो ऐसा इसलिए बोल पा रहे हैं क्योंकि उनको बहुत बड़े ट्रेनिंग डेटा सेट पर ट्रेन किया गया। इसको मैं अगर एक शब्दों में समझाना चाहूँ तो एक पूरी लाइब्रेरी में जितनी किताबें होती हैं उन किताबों की 10 गुना किताबों से उनको ट्रेन किया गया। मतलब उस लार्ज लैंग्वेज मॉडल ने उन सारी किताबों को एक तरह से पढ़ा हुआ है और उस पूरे पढ़े हुए टेक्स्ट की मदद से वो अगला शब्द या अगला सेंटेंस प्रेडिक्ट करते हुए अपनी बात कहता है। तो उसका जो कॉर्पस ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज्यादा विशाल है। मैं फिर दोहराऊंगा कि वो समझता नहीं है उन टेक्स्ट, उन लाइनों का, उन शब्दों का अर्थ नहीं समझता, लेकिन उसने चीजों के पैटर्न को समझा है, ग्रामर के पैटर्न को समझा है, सब्जेक्ट के पैटर्न को समझा है और उसी तर्ज पे वो अगले शब्द, अगले वाक्य, अगले पैराग्राफ रिक्रिएट कर रहा है। तो उसका कॉर्पस ऑफ नॉलेज बहुत ज्यादा है। एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में जितनी किताबें नहीं पढ़ पाएगा। आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल ऑलरेडी उससे ज्यादा किताबें पढ़ चुके हैं। तो उस ब्रॉड कॉर्पस ऑफ नॉलेज से वो कैसे कंटेक्चुअलाइज करके अपने सवाल को जवाब दे पा रहा है वो उसे बहुत इफेक्टिव बनाता है टीचिंग के लिए। दूसरा होता है जैसे अपन टीचर स्टूडेंट रेशियो की बात करते हैं, आमतौर पे देखा जाए तो जितने कम स्टूडेंट होंगे पर टीचर उतना बढ़िया टीचिंग पेडागॉजी होगी। अब समस्या यही आती थी कि भाई ऐसा तो कोई परिस्थिति बनती नहीं है कि एक टीचर एक स्टूडेंट के ऊपर हो, एटलीस्ट 10 या 15 का तो बैच हो गई और जितने ज्यादा बच्चे होंगे टीचर के लिए एक बच्चे पे ध्यान देना उतना मुश्किल होगा। यहाँ पे आपके पास एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल है जो हर बच्चे की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, उसके रुचि के विषयों के हिसाब से, उसके बैकग्राउंड के हिसाब से इंडिविजुअली उसको कंटेंट प्रोड्यूस कर सकता है
0: जी।
1: तो ये AI का एडवांटेज है। दैट बीइंग सेड, इतना सब करने के अलावा AI के बहुत भयंकर दुष्परिणाम भी है। यहाँ पे एक दुष्परिणाम जो मैं बताना चाहूंगा ताकि बैलेंस हो जाए कहानी, वो ये है कि चूंकि AI समझता नहीं है शब्दों को, वाक्यों को, वो स्टैटिस्टिकल पैटर्न पे अगला वर्ड, अगला लाइन, अगला पैराग्राफ प्रेडिक्ट कर रहा है, तो AI कई बार हेलुसिनेट भी कर लेता है या गलत जानकारी भी दे सकता है। तो ये चीज भी चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो AI बोल रहा है वो सच बोल रहा है कि नहीं, क्योंकि कहते हैं कि ट्रेनिंग डेटा सेट में जो है वो अगर सही है तो AI सही प्रेडिक्ट करेगा, अगर उसमें ट्रेनिंग डेटा सेट में बायस है। जैसे आज से 2-3 साल पहले बड़ा अच्छा एक केस हुआ था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहीं पे बताया कि ChatGPT से अगर आप बोले इमेज जनरेट करने को कि एक व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा है, लेफ्ट हैंड से, तो वो क्रिएट नहीं कर सकता। लोगों ने बड़ा इसको हल्के पे लिया कि यार बताइए प्रधानमंत्री जी कैसी बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। वो सही था, ChatGPT से अगर आप प्रॉम्प्ट में लिखेंगे कि भैया एक ऐसे फोटो जनरेट करो जिसमें व्यक्ति उल्टे हाथ से लिख रहा, वो लेफ्ट हैंड से लिखने वाले व्यक्ति की फोटो बना ही नहीं सकता था। ये मैंने क्लास में बच्चों को करके दिखाया था, शायद अब वो बता सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उस जिन इमेजेस पे वो ट्रेन हुआ होगा या जिन कॉन्टेक्स्ट पे वो ट्रेन हुआ होगा उसमें उसके पास कोई लेफ्ट हैंड से ड्रॉ करते हुए व्यक्ति की इमेज उसने देखी या समझी नहीं होगी, तो उसके ट्रेनिंग डेटा सेट में चूंकि सब राइट हैंड से लिख रहे थे इसलिए वो भी राइट हैंड से क्रिएट कर रहा था। तो एक तो ट्रेनिंग डेटा सेट की उपलब्धता, उसके बायसनेस, और दूसरा वो जो आउटपुट जनरेट कर रहा है वो सही है कि नहीं, ये देखना आवश्यक है। अन्यथा जो एडवांटेज अपन डिस्कस कर रहे हैं वो पूरी तरह उल्टा जा सकते हैं।
0: डॉक्टर अनुग्रह नगाइच हमारे साथ मौजूद थे आज स्टूडियो में, उन्होंने इतना तफसील से इस विषय को बताया हमें। कार्यक्रम टेक गुरु में आज AI पर जो हमने बातचीत की उसमें इस भाग में हमने जाना कि आखिर AI है क्या, AI कहां कहां अपना असर डालने वाला है, और ऐसे कई सारे प्रश्न हैं। डॉक्टर अनुग्रह नगाइच का बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो में आने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: ये चर्चा जारी रहेगी आगे भी। तो ये था कार्यक्रम टेक गुरु जिसमें आज हमने बात की AI पर। ये पूरा कार्यक्रम आपके बीच में जो पहुंचाया इसके मार्गदर्शक थे संतोष कुमार वर्मा जी, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी का, और समन्वय सहयोग रहा हमारे साथ सतीश पाथम का, और मैं हूं आपका ध्वनि मित्र रत्नेश सोनी। तो फिलहाल इस कार्यक्रम से हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आपका अपना 90.8 MHz रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल, देश के लिए।

0: नमस्कार श्रोताओं, 90.8 पर आप सुन रहे हैं रेडियो आजाद हिंद। प्रस्तुत है कार्यक्रम भारत विभूति।
1: नमस्कार श्रोताओं, रेडियो आजाद हिंद के कार्यक्रम भारत विभूति में आपका स्वागत है। भारत की महान परंपरा केवल राजाओं, योद्धाओं और संतों की परंपरा नहीं है, ये उन शिक्षकों, विचारकों और ज्ञान पुरुषों की भी परंपरा है जिन्होंने राष्ट्र की आत्मा को गढ़ा है। आज हम ऐसे ही एक महापुरुष की जीवन यात्रा पर चलेंगे जिन्होंने आधुनिक भारत की शिक्षा व्यवस्था को नई दिशा दी, गणित के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का परिचय दिया और भारतीय युवाओं में आत्मविश्वास जगाने का भी काम किया। आज की हमारी विभूति है सर आशुतोष मुखर्जी।
2: जब भारत अंग्रेजी शासन के अधीन था तब बहुत से भारतीयों को यह विश्वास दिलाने का प्रयास किया जाता था कि ज्ञान, विज्ञान और शोध केवल पश्चिम की देन है। लेकिन उसी समय भारत की धरती पर एक ऐसा व्यक्तित्व खड़ा हुआ जिसने अपनी प्रतिभा और परिश्रम से यह सिद्ध कर दिया कि भारतीय बुद्धिमत्ता किसी से कम नहीं है। वह व्यक्ति था आशुतोष मुखर्जी, एक गणितज्ञ, एक न्यायविद, एक शिक्षाविद और सबसे बढ़कर एक राष्ट्र निर्माता।
1: 29 जून 1864 कलकत्ता का भवानीपुर क्षेत्र एक प्रतिष्ठित परिवार में एक बालक का जन्म हुआ। पिता थे डॉक्टर गंगा प्रसाद मुखर्जी, वो अपने समय के जाने माने चिकित्सकों में गिने जाते थे। माता जगत तारिणी देवी संस्कार, धर्म और भारतीय जीवन मूल्यों की प्रतीक थीं। घर में विद्या, संस्कृति और अनुशासन का वातावरण था और यहीं से प्रारंभ हुई उस बालक की यात्रा जो आगे चलकर भारतीय शिक्षा जगत का एक युग पुरुष बनने वाला था।
2: बचपन से ही आशुतोष असाधारण प्रतिभा के धनी थे। कहा जाता है कि वे किसी भी विषय को केवल पढ़ते नहीं थे, उसे समझते थे। और केवल समझते ही नहीं थे, उसके भीतर छिपे तर्क को खोजने का प्रयास करते थे। शायद यही कारण था कि गणित उन्हें विशेष रूप से आकर्षित करता था। संख्याएं उनके लिए केवल गणना का साधन नहीं थीं, वे उनके लिए चिंतन का माध्यम थीं।
1: उनकी प्रारंभिक शिक्षा चक्रबेड़िया स्थित साउथ सबर्बन स्कूल में हुई। विद्यालय के दिनों में ही उनकी प्रतिभा सबका ध्यान आकर्षित करने लगी थी। शिक्षक समझ चुके थे कि यह बालक साधारण नहीं है, उनके भीतर कुछ तो विशेष है, कुछ ऐसा जो उसे आने वाले समय में अति विशिष्ट बनाएगा।
2: सन 1879, आयु मात्र 15 वर्ष, कलकत्ता विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा और परिणाम आया। आशुतोष मुखर्जी ने पूरे विश्वविद्यालय में दूसरा स्थान प्राप्त किया। उस समय यह उपलब्धि असाधारण मानी जाती थी। यह सफलता केवल एक विद्यार्थी की नहीं थी, यह भारतीय प्रतिभा की बड़ी पहली घोषणा थी।
1: और इसके बाद उन्होंने कलकत्ता के प्रतिष्ठित प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रवेश लिया। यह वही संस्थान था जहां उस समय भारत के कई प्रतिभाशाली युवा शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। यहीं उनकी मुलाकात दो महान व्यक्तित्वों से हुई। एक थे वैज्ञानिक प्रफुल्ल चंद्र राय और दूसरे थे नरेंद्र नाथ दत्त। वही नरेंद्र नाथ दत्त जिन्हें दुनिया बाद में स्वामी विवेकानंद के नाम से जानने लगी।
2: जरा कल्पना कीजिए उस वातावरण की, एक ओर विज्ञान का उजाला, दूसरी ओर आध्यात्मिक चिंतन, एक ओर आधुनिकता और दूसरी ओर भारतीय संस्कृति की गहराई। इन सब के बीच अध्ययन कर रहे थे आशुतोष मुखर्जी। यह वातावरण उनके व्यक्तित्व को और व्यापक बनाता चला गया।
1: सन 1883 में उन्होंने स्नातक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उन्हें प्रतिष्ठित प्रेमचंद रायचंद छात्रवृत्ति प्रदान की गई। यह उस समय की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित शैक्षणिक उपलब्धियों में से एक मानी जाती थी। लेकिन आशुतोष मुखर्जी के लिए ये केवल एक पड़ाव मात्र था, उनकी यात्रा अभी बहुत आगे तक जाने वाली थी।
2: गणित में उनकी रुचि लगातार बढ़ती जा रही थी। उन्होंने गणित में स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त की और इसके बाद भौतिक विज्ञान में भी स्नातकोत्तर किया। वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के इतिहास में पहले ऐसे विद्यार्थी बने जिन्होंने दो अलग अलग विषयों में उच्च शिक्षा प्राप्त की। आज भी यह उपलब्धि अत्यंत प्रेरणादायक मानी जाती है।
1: लेकिन एक और खास बात थी, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के साथ साथ वो लगातार शोध कार्यों में भी लगे हुए थे। जब अधिकांश विद्यार्थी केवल परीक्षाओं की तैयारी करते, तब आशुतोष मुखर्जी नए गणितीय प्रश्नों के समाधान खोज रहे थे। वो विश्व के प्रसिद्ध गणितज्ञों द्वारा प्रकाशित शोध पत्रों को पढ़ा करते, उनके प्रश्नों पर विचार करते और अपने समाधान भी तैयार करते।
2: सन 1880 के दशक का भारत, जहां शोध के अवसर सीमित थे, वैज्ञानिक संसाधन कम थे, फिर भी एक युवा भारतीय गणितज्ञ विश्व के प्रतिष्ठित गणितीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रहा था, और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था।
1: 1881 में उन्होंने यूक्लिड के प्रसिद्ध ज्यामितीय संरचना से जुड़े एक महत्वपूर्ण प्रमेय का नया प्रमाण प्रस्तुत किया। ये शोध इंग्लैंड की प्रसिद्ध गणितीय पत्रिका मैसेंजर ऑफ मैथमेटिक में प्रकाशित हुआ। उस समय किसी भी भारतीय विद्वान के लिए यह अत्यंत गौरव की बात थी।
2: इसके बाद उन्होंने सलमोन के प्रमेय पर महत्वपूर्ण कार्य किया, एलिप्टिक फंक्शंस पर शोध किया, डिफरेंशियल समीकरणों पर लेख लिखे, ज्यामिति और कलन के क्षेत्र में अनेक महत्वपूर्ण योगदान दिए। उनके शोध पत्र इंग्लैंड और भारत की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगे और धीरे धीरे उनका नाम अंतर्राष्ट्रीय गणितीय समुदाय में पहचाना जाने लगा।
1: श्रोताओं, कहा जाता है कि गणित उनके लिए केवल एक विषय नहीं था, वो उनके सोचने का एक तरीका था। वो हर समस्या को तर्क और विश्लेषण की दृष्टि से देखते थे, और शायद यही वजह थी कि बाद में जब वो शिक्षा और प्रशासन के क्षेत्र में आए, तब भी उनकी निर्णय क्षमता अत्यंत साफ और व्यवस्थित रही।
2: 1888 तक आते आते वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो चुने गए। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। यह सम्मान किसी साधारण व्यक्ति को नहीं मिलता था। यह उस प्रतिभा की सार्वजनिक स्वीकृति थी जिसे पूरा शैक्षणिक जगत पहचान चुका था।
1: लेकिन यहाँ एक और प्रश्न उठता है कि अगर आशुतोष मुखर्जी इतने बड़े गणितज्ञ थे, तो उन्होंने अपना पूरा जीवन केवल गणित को क्यों नहीं समर्पित किया? वो विश्व के महानतम गणितज्ञों में स्थान प्राप्त कर सकते थे। उनके पास वो प्रतिभा थी, उनके पास वो क्षमता भी थी, फिर उन्होंने दूसरा मार्ग क्यों चुना?
2: क्योंकि उनके भीतर केवल एक गणितज्ञ नहीं था, उनके भीतर एक राष्ट्रभक्त भी था, और वे समझ चुके थे कि भारत को केवल एक महान वैज्ञानिक की आवश्यकता नहीं है, भारत को ऐसी शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता है जो हजारों वैज्ञानिक तैयार कर सके। भारत को ऐसे विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है जो विश्व स्तर का ज्ञान उत्पन्न कर सकें, और शायद यही विचार उनके जीवन की दिशा बदलने में सहायक सिद्ध हुआ। देश में नई चेतना जन्म ले रही थी। लोग शिक्षा को केवल नौकरी का माध्यम नहीं, बल्कि सामाजिक परिवर्तन और राष्ट्रीय जागरण का साधन मानने लगे थे। ऐसे समय में आशुतोष मुखर्जी ने अपनी प्रतिभा को केवल व्यक्तिगत सफलता तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने तय किया कि अब उनका ज्ञान समाज के काम आएगा।
1: हालांकि गणित के क्षेत्र में उनकी यात्रा लगातार आगे बढ़ रही थी। वो शोध कर रहे थे, नए प्रमेयों पर काम भी कर रहे थे, ज्यामिति और कलन के जटिल प्रश्नों का वो समाधान खोज रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ वो भारतीय शिक्षा व्यवस्था की कमजोरियों को भी समझ रहे थे।
2: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय केवल परीक्षाएं आयोजित करने वाली संस्थाएं थीं। ज्ञान की रचना कम होती थी, शोध की परंपरा लगभग न के बराबर थी, प्रयोगशालाएं सीमित थीं, और भारतीय विद्यार्थियों के सामने अवसर भी बहुत कम थे। आशुतोष मुखर्जी इस स्थिति से कतई संतुष्ट नहीं थे।
1: श्रोताओं, आप जानते हैं कि वो मानते थे कि यदि किसी राष्ट्र को वास्तव में शक्तिशाली बनाना है, तो उसे ज्ञान के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनना होगा। उसे ऐसे विश्वविद्यालय चाहिए होंगे जो केवल पढ़ाएं नहीं, बल्कि नया ज्ञान भी उत्पन्न करें, जो केवल डिग्रियां ना दें, बल्कि एक नया विचार भी दें।
2: यही सोच उन्हें विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर ले गई। सन 1888 में वे कलकत्ता विश्वविद्यालय के फेलो बने। उस समय उनकी आयु केवल 24 वर्ष थी। इतनी कम उम्र में यह जिम्मेदारी मिलना उनकी प्रतिभा और प्रतिष्ठा का प्रमाण था।
1: फेलो बनने के बाद उन्होंने विश्वविद्यालय की कार्यप्रणाली को बहुत करीब से जाना। उन्होंने महसूस किया कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, कमी है तो केवल उचित मार्गदर्शन और अवसरों की, और ये कमी दूर की जा सकती है।
2: और इसी बीच उनका गणितीय कार्य भी जारी रहा। उन्होंने एलिप्टिक फंक्शंस, डिफरेंशियल समीकरणों और ज्यामिति पर अनेक शोध पत्र लिखे। उनके शोध पत्र केवल भारत में ही नहीं बल्कि इंग्लैंड की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हो रहे थे।
1: शोध पत्रों की सूची देखें तो पता चलता है कि उन्होंने यूक्लिड के प्रमेयों से लेकर मोंज के समीकरणों तक अनेक विषयों पर कार्य किया। उन्होंने गणित को केवल सिद्धांत तक सीमित नहीं रखा, उन्होंने ये भी दिखाया कि गणित का उपयोग वास्तविक जीवन की जटिल समस्याओं को समझने में कैसे किया जा सकता है।
2: उनकी एक और विशेषता थी, वे केवल नए शोध नहीं करते थे, वे गणित को सरल बनाने का प्रयास भी करते थे। कहा जाता है कि वे जटिल ज्यामितीय सिद्धांतों को बीजगणितीय रूप में समझाने का प्रयास करते थे ताकि विद्यार्थी उन्हें बेहतर ढंग से समझ सकें।
1: सन 1887 से सन 1890 के बीच उन्होंने भारतीय विज्ञान संवर्धन संस्था में गणित के अनेक व्याख्यान दिए। इन व्याख्यानों में विद्यार्थी, शिक्षक और शोधार्थी बड़ी संख्या में हिस्सा लेते थे। उनकी भाषा विद्वत्तापूर्ण होते हुए भी सरल होती, वो कठिन से कठिन विषय को रोचक बना दिया करते।
2: श्रोताओ, ये वही समय था जब उनके भीतर शिक्षक का स्वरूप और अधिक स्पष्ट होने लगा था, क्योंकि वे समझ चुके थे कि ज्ञान का वास्तविक मूल्य तभी है जब वह दूसरों तक पहुंचे, जब वह समाज को लाभ पहुंचाए।
1: आशुतोष मुखर्जी का यह विश्वास था कि भारत को पश्चिम से सीखना चाहिए, लेकिन अपनी पहचान खोकर नहीं। उन्होंने हमेशा भारतीय और पाश्चात्य ज्ञान परंपराओं के संतुलन की बात की। उनका मत था कि विज्ञान सार्वभौमिक है, लेकिन शिक्षा की आत्मा अपने समाज और संस्कृति से जुड़ी होनी चाहिए।
2: और उनके विचारों का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ने लगा। शिक्षा जगत में उनका सम्मान बढ़ रहा था। गणितज्ञ उन्हें अपने बीच का विद्वान मानते थे, शिक्षक उन्हें प्रेरणा मानते थे और विद्यार्थी उन्हें मार्गदर्शक के रूप में देखने लगे थे।
1: लेकिन आशुतोष मुखर्जी केवल एक विषय तक सीमित रहने वाले व्यक्ति नहीं थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई भी पूरी की और जल्द ही न्यायिक क्षेत्र में भी अपनी पहचान बना ली।
2: यह उनके व्यक्तित्व की एक अद्भुत विशेषता थी। एक ओर गणितज्ञ, दूसरी ओर वैज्ञानिक चिंतक, तीसरी ओर शिक्षाविद और अब एक विधिवेत्ता। ऐसा बहुआयामी व्यक्तित्व इतिहास में विरला ही देखने को मिलता है।
1: बिल्कुल सही कहा आपने। उनका अध्ययन इतना व्यापक था कि लोग उन्हें चलता फिरता विश्वविद्यालय कहा करते थे। किसी भी विषय पर उनसे बातचीत कर लीजिए, इतिहास, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, कानून या गणित, हर विषय पर उनकी पकड़ अद्भुत थी।
2: इसी बीच उन्होंने एक और महत्वपूर्ण कार्य किया। उन्होंने महसूस किया कि भारत में गणित के लिए सशक्त मंच होना चाहिए, और ऐसा मंच जहां गणितज्ञ अपने विचार साझा कर सकें, जहां शोध को प्रोत्साहन मिले, जहां भारतीय प्रतिभाएं विकसित हो सकें।
1: और इसी विचार के साथ आगे चलकर कलकत्ता मैथमेटिकल सोसाइटी की स्थापना हुई। ये संस्था भारत में गणितीय अनुसंधान की महत्वपूर्ण आधारशिला बनी। आशुतोष मुखर्जी इसके संस्थापकों में अग्रणी थे और लंबे समय तक इसके नेतृत्व से जुड़े रहे।
2: आज जब हम भारत में गणितीय अनुसंधान की समृद्ध परंपरा देखते हैं तो उसके प्रारंभिक स्तंभों में आशुतोष मुखर्जी का नाम अवश्य दिखाई देता है। उन्होंने न केवल स्वयं शोध किया बल्कि शोध की संस्कृति भी विकसित की।
1: धीरे धीरे उनकी दृष्टि और व्यापक होती चली गई। अब वो केवल गणित या किसी एक विषय के विकास की बात नहीं कर रहे थे, वो पूरे शिक्षा तंत्र के परिवर्तन की बात कर रहे थे।
2: और यहीं से आरंभ होता है उनके जीवन का वह अध्याय जिसने उन्हें भारतीय शिक्षा जगत का महानायक बना दिया। एक ऐसा अध्याय जिसमें वे विश्वविद्यालयों का स्वरूप बदलते हैं, नई संस्थानों की स्थापना करते हैं, देश भर की प्रतिभाओं को आगे लाते हैं और भारतीय उच्च शिक्षा को नई दिशा देते हैं। और अब उस समय की बात करते हैं जब भारत राजनीतिक रूप से गुलाम था लेकिन मानसिक रूप से जाग रहा था। देश में नई चेतना का उदय हो रहा था। युवा वर्ग शिक्षा को स्वतंत्रता और आत्मसम्मान का मार्ग मानने लगा था, और ऐसे समय में शिक्षा संस्थानों की भूमिका पहले से भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी।
1: साल था 1906। कलकत्ता विश्वविद्यालय में उपकुलपति के रूप में एक ऐसा नाम सामने आया जो आने वाले वर्षों में भारतीय शिक्षा का पर्याय बन गया, आशुतोष मुखर्जी।
2: उपकुलपति का पद संभालते ही उन्होंने एक बात स्पष्ट कर दी, विश्वविद्यालय केवल परीक्षा लेने वाली संस्था नहीं रहेगा, यह ज्ञान निर्माण का केंद्र बनेगा। यहाँ केवल पाठ्यक्रम नहीं पढ़ाए जाएंगे, यहाँ शोध होगा, नवाचार होगा, नए विचार जन्म लेंगे।
1: उस समय अधिकांश भारतीय विश्वविद्यालय अंग्रेजी प्रशासन की जरूरतों के अनुसार काम कर रहे थे। उनका उद्देश्य ऐसे कर्मचारी तैयार करना था जो शासन व्यवस्था को चलाने में सहायता कर सकें। लेकिन आशुतोष मुखर्जी का सपना इससे कहीं अधिक बड़ा था। वो ऐसे विश्वविद्यालय चाहते थे जो राष्ट्र की बौद्धिक शक्ति बने।
2: उन्होंने सबसे पहले उच्च शिक्षा में शोध की संस्कृति को प्रोत्साहित किया। उनका मानना था कि केवल किताबें पढ़ लेने से कोई समाज महान नहीं बन सकता। महान समाज वह होता है जो नया ज्ञान उत्पन्न करता है, जो नए प्रश्न पूछता है और उनके उत्तर खोजता है।
1: और यही कारण था कि उन्होंने विश्वविद्यालय में शोध कार्यक्रमों और उच्च अध्ययन को विशेष महत्व दिया। उन्होंने योग्य विद्यार्थियों को प्रोत्साहन दिया, शोध वृत्तियां शुरू की और नए विभागों की स्थापना का भी मार्ग प्रशस्त किया।
2: उनकी दूरदृष्टि का एक महत्वपूर्ण उदाहरण था विज्ञान शिक्षा को दिया गया महत्व। उस समय विज्ञान पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या बहुत कम थी, संसाधन भी सीमित थे, लेकिन आशुतोष मुखर्जी समझ चुके थे कि आने वाला युग विज्ञान का युग होगा।
1: और इसीलिए उन्होंने वैज्ञानिक शिक्षा के विस्तार के लिए भी अथक प्रयास किए। उनका सपना था कि भारत के विद्यार्थी विदेश जाए बिना भी उच्च स्तर का वैज्ञानिक अध्ययन कर सकें, और साथ ही ये भी कि भारत की धरती पर ही विश्व स्तरीय प्रयोगशालाएं भी स्थापित हों।
2: उनके प्रयासों का परिणाम था कलकत्ता विश्वविद्यालय का विज्ञान महाविद्यालय। यह केवल एक भवन नहीं था, यह भारतीय विज्ञान के भविष्य की नींव था।
1: कहा जाता है कि संसाधनों की कमी के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। वो लगातार लोगों से सहयोग मांगते रहे, दानदाताओं को प्रेरित करते रहे और अंततः उनका सपना साकार हुआ।
2: यहीं से आगे चलकर अनेक वैज्ञानिक तैयार हुए जिन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया। वास्तव में यदि हम आधुनिक भारतीय विज्ञान के इतिहास को देखें तो उसकी जड़ों में कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की दूरदृष्टि दिखाई देती है।
1: लेकिन विज्ञान ही उनकी प्राथमिकता नहीं था, उनकी दृष्टि अत्यंत व्यापक थी। वो भारतीय भाषाओं और भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी उतना ही महत्व देते थे।
2: उस समय अंग्रेजी शिक्षा को ही श्रेष्ठ माना जाता था, भारतीय भाषाओं को उच्च शिक्षा के योग्य नहीं समझा जाता था। लेकिन आशुतोष मुखर्जी इस सोच से सहमत नहीं थे।
1: बिल्कुल, क्योंकि वो मानते थे कि कोई भी राष्ट्र अपनी भाषा और संस्कृति से कटकर महान नहीं बन सकता। इसीलिए उन्होंने विश्वविद्यालय में भारतीय भाषाओं और भारतीय अध्ययन को प्रोत्साहन दिया।
2: संस्कृत, पाली, बांग्ला, भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, इन सभी विषयों को उन्होंने सम्मानजनक स्थान दिलाने का प्रयास किया।
1: उनका विश्वास था कि आधुनिक विज्ञान और भारतीय संस्कृति साथ साथ चल सकते हैं। एक और प्रयोगशालाएं हो सकती हैं, तो दूसरी ओर साहित्य और दर्शन भी। एक ओर आधुनिक शोध हो सकता है तो दूसरी ओर परंपरा का संरक्षण भी।
2: यही संतुलित दृष्टि उन्हें अपने समय के अन्य शिक्षाविदों से अलग बनाती है। वे अतीत में अटके हुए व्यक्ति नहीं थे, लेकिन वे अपनी जड़ों को छोड़कर आगे बढ़ने में भी विश्वास नहीं करते थे।
1: आशुतोष मुखर्जी की एक और विशेषता थी, प्रतिभा को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। वो व्यक्ति नहीं देखते थे, वो क्षमता देखते थे।
2: कई युवा विद्यार्थियों और शोधकर्ताओं को उन्होंने अवसर दिए, उनकी सहायता की, उन्हें आगे बढ़ने का मंच दिया, क्योंकि वे जानते थे कि एक प्रतिभा को अवसर देना राष्ट्र के भविष्य में निवेश करना है।
1: और उनके व्यक्तित्व का प्रभाव इतना व्यापक था कि विद्यार्थी उन्हें केवल प्रशासक नहीं बल्कि मार्गदर्शक मानते थे। वो उनके पास केवल शैक्षणिक समस्याएं लेकर ही नहीं आते थे, बल्कि उनसे वो अपने जीवन से जुड़े प्रश्न भी पूछते थे।
2: आशुतोष मुखर्जी का उत्तर केवल एक ही दिशा में होता था, परिश्रम, अनुशासन और आत्मविश्वास। वे कहते थे कि यदि व्यक्ति में ये तीन गुण हैं तो सफलता देर से मिलेगी लेकिन अवश्य मिलेगी।
1: धीरे धीरे उनका नाम पूरे भारत में सम्मान के साथ लिया जाने लगा। उनकी प्रशासनिक क्षमता, उनकी विद्वता और उनकी निर्भीकता और उनकी राष्ट्र निष्ठा, इन सब ने मिलकर उन्हें एक असाधारण व्यक्तित्व बना दिया।
2: इसी दौरान लोगों ने उन्हें एक नया नाम देना शुरू किया, बंगाल का बाघ। यह केवल एक प्रशंसा नहीं थी, यह उनके साहस और स्वाभिमान का सम्मान था।
1: कारण था कि वो किसी भी तरह के दबाव के सामने झुकते नहीं थे। यदि उन्हें लगता कि कोई निर्णय शिक्षा या विद्यार्थियों के हित में नहीं है तो वो खुलकर उसका विरोध करते, चाहे सामने कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना खड़ी हो।
2: उनके लिए केवल पद महत्वपूर्ण नहीं था, सिद्धांत महत्वपूर्ण थे। प्रतिष्ठा महत्वपूर्ण नहीं थी, सत्य महत्वपूर्ण था। और यही कारण था कि वे लाखों विद्यार्थियों की प्रेरणा बन गए।
1: श्रोताओं, जब आज हम भारत के शिक्षा व्यवस्था की चर्चा करते हैं तब हमें याद रखना चाहिए कि जिन संस्थाओं और परंपराओं पर हमें गर्व है उनकी नींव रखने वालों में आशुतोष मुखर्जी का स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण है।
2: लेकिन उनके जीवन की कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। अभी हमें जानना है एक न्यायाधीश के रूप में उनका योगदान, एक पिता के रूप में उनकी भूमिका और वह विरासत जो उन्होंने आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ी। वे केवल एक शिक्षाविद तक सीमित नहीं थे, वे न्याय के क्षेत्र में भी उतने ही सम्मानित थे जितने शिक्षा के क्षेत्र में।
1: कानून की शिक्षा पूर्ण करने के बाद उन्होंने न्यायिक क्षेत्र में प्रवेश किया। उनके तार्किक क्षमता, गहन अध्ययन और निष्पक्ष दृष्टि ने शीघ्र ही उन्हें विशिष्ट पहचान दिलाई।
2: गणित ने उन्हें तर्क दिया था, विज्ञान ने उन्हें विश्लेषण की क्षमता दी थी और कानून ने उन्हें न्याय का दृष्टिकोण दिया। इन तीनों का अद्भुत समन्वय उनके निर्णयों में भी दिखाई देता था।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उन्होंने कई महत्वपूर्ण मामलों की सुनवाई की। उनकी पहचान एक ऐसे न्यायाधीश की थी जो तथ्यों को गहराई से समझता था और किसी भी तरह के दबाव से प्रभावित नहीं होता था।
2: उनके लिए न्याय केवल कानून की भाषा नहीं था, यह नैतिक उत्तरदायित्व भी था। वे मानते थे कि न्यायालय केवल विवादों का समाधान करने का स्थान नहीं बल्कि समाज के विश्वास का केंद्र है।
1: यही कारण था कि न्यायपालिका में भी उनका सम्मान अत्यंत ऊंचा था। लेकिन जितना बड़ा उनका पद था उतनी ही बड़ी उनकी विनम्रता भी थी।
2: उनके जीवन का एक और महत्वपूर्ण पक्ष था उनका पारिवारिक जीवन। वे एक अनुशासित पिता थे लेकिन उससे भी अधिक एक प्रेरक मार्गदर्शक।
1: उनके पुत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी आगे चलकर स्वतंत्र भारत के प्रमुख राष्ट्रनायकों में गिने गए, लेकिन किसी भी महान व्यक्तित्व के पीछे कुछ संस्कार भी होते हैं, कुछ मूल्य होते हैं, कुछ आदर्श होते हैं और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के व्यक्तित्व में इन आदर्शों की छाप साफ दिखाई देती है।
2: आशुतोष मुखर्जी ने अपने बच्चों को केवल शिक्षा नहीं दी, उन्होंने आत्मसम्मान दिया, उन्होंने सत्य के प्रति निष्ठा दी, उन्होंने राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना दी।
1: वो मानते थे कि किसी व्यक्ति की वास्तविक पहचान उसके चरित्र से होती है। डिग्रियां और पद महत्वपूर्ण हो सकते हैं लेकिन चरित्र से बड़ा कोई सम्मान नहीं होता।
2: उनका जीवन इस विचार का जीवंत उदाहरण था। उन्होंने कभी सुविधा का मार्ग नहीं चुना, उन्होंने हमेशा सही मार्ग चुनने का प्रयास किया चाहे वह कठिन ही क्यों न हो।
1: और आज जब हम उनके जीवन को देखते हैं तो पाते हैं कि उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि कोई एक संस्था नहीं थी, कोई एक पद नहीं था, कोई एक सम्मान नहीं था। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी एक ऐसी बौद्धिक परंपरा का निर्माण जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रभावित किया।
2: उन्होंने भारतीय युवाओं को यह विश्वास दिलाया कि वे भी विश्व स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने भारतीय शिक्षा को यह आत्मविश्वास दिया कि वह केवल अनुकरण करने वाली व्यवस्था नहीं बल्कि ज्ञान निर्माण करने वाली व्यवस्था भी बन सकती है।
1: श्रोताओं, उनका विश्वास था कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार नहीं है, शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का निर्माण है, शिक्षा का उद्देश्य समाज को बेहतर बनाना है और शिक्षा का उद्देश्य राष्ट्र को मजबूत करना है।
2: आज भारत के विश्वविद्यालयों में जो शोध हो रहे हैं, आज भारतीय वैज्ञानिक जो उपलब्धियां प्राप्त कर रहे हैं, आज भारतीय विद्यार्थी विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में जो पहचान बना रहे हैं, उन सब की पृष्ठभूमि में कहीं न कहीं आशुतोष मुखर्जी जैसे दूरदर्शी शिक्षाविदों का योगदान मौजूद है।
1: उनकी दृष्टि समय से बहुत आगे थी। वह ऐसे भारत की कल्पना कर रहे थे जो ज्ञान में आत्मनिर्भर हो, जो अपनी संस्कृति पर गर्व करे, जो विज्ञान में अग्रणी हो और जो दुनिया का केवल अनुसरण ना करे बल्कि उसे दिशा भी दे।
2: पच्चीस मई 1924, ये वह दिन था जब यह महान व्यक्तित्व भौतिक रूप से हमारे बीच से विदा हो गया। लेकिन कुछ लोग अपने जीवन काल से बड़े हो जाते हैं, वे शरीर से नहीं अपने विचारों से जीवित रहते हैं। आशुतोष मुखर्जी ऐसे ही व्यक्तित्व का नाम है।
1: उनकी स्मृति आज भी भारतीय शिक्षा जगत में जीवित है, उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, उनका जीवन आज भी प्रेरणा देता है।
2: जब भी कोई विद्यार्थी कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता है, जब भी कोई शिक्षक शिक्षा को केवल नौकरी नहीं मिशन मानता है, जब भी कोई विश्वविद्यालय नए ज्ञान के निर्माण का संकल्प लेता है, तब कहीं ना कहीं आशुतोष मुखर्जी की विरासत हमारे सामने उपस्थित होती है।
1: श्रोताओं, भारत विभूति के आज के इस विशेष अंक में हमने जाना एक ऐसे महापुरुष को जिसने गणित को साधना बनाया, शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का माध्यम बनाया और अपने जीवन को ज्ञान के प्रकाश के लिए पूरी तरह समर्पित कर दिया।
2: सर आशुतोष मुखर्जी को विनम्र श्रद्धांजलि, उनके विचारों को नमन, उनके योगदान को प्रणाम।
1: तो श्रोताओं, इसी के साथ अब हम इस यात्रा को यहीं विराम देते हैं। अगले सप्ताह भारत विभूति में हम फिर मिलेंगे भारत के एक और प्रेरणादायी व्यक्तित्व के साथ।
2: तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम भारत विभूति। आज के इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की सर आशुतोष मुखर्जी के बारे में। मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा का था, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश पाथम, आलेख मनीषा चतुर्वेदी का था और मैं था आपके साथ विजयकांत नायक
1: और मैं थी आपकी रेडियो मित्र स्वाति।
2: ये है रेडियो आजाद हिंद 90.8, देश का चैनल देश के लिए।
0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।

रेडियो रिपोर्ट में हम आपको लिए चल रहे हैं रविंद्र भवन सभागार में, जहां रविवार को महफिल सजी पुराने नगमों की, जिसमें गायकों ने एक से बढ़कर एक गीत लोगों के सामने पेश किए।

आइए चलते हैं कुछ पलों के लिए रविंद्र भवन सभागार में।

0: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
1: नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं 90.8 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए। आज का हमारा कार्यक्रम है काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा। ये वो आकाश है जहां शब्द केवल बोले नहीं जाते, वे साधे जाते हैं। जहां स्वर केवल गूंजते नहीं, वे चेतना को स्पर्श करते हैं।
2: श्रोताओं, आज का युग तेज है, हम तकनीकी रूप से पहले से कहीं अधिक उन्नत हो चुके हैं। एक स्पर्श में संसार हमारी हथेली पर आ जाता है। इसके अपने लाभ हैं, अपनी सुविधाएं हैं, पर कहीं ना कहीं इसकी एक अनकही कीमत भी है। आप सोच रहे होंगे कि कितनी सुंदर रश्मि रथी का काव्य पाठ चल रहा था, अचानक से मैं ये सब क्या कहने लग गई। दरअसल मित्रों, एक समय था जब घरों में पुस्तकें खुलती थीं, कहानियां सांझ की दीप शिखा के साथ जीवित हो उठती थीं, दादी नानी के स्वर में इतिहास सांस लेता था। उन कथाओं में केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार जन्म लेते थे। संस्कृति के प्रति सम्मान और साहित्य के प्रति अनुराग पनपता था।
1: आज वो परंपरा धीरे धीरे क्षीण होती दिखाई देती है। इसका प्रभाव बच्चों से लेकर बड़ों तक हमारी मानसिकता, हमारी संवेदना, हमारे धैर्य सब पर पड़ रहा है। अच्छा साहित्य केवल शब्दों का विन्यास नहीं होता, वो जीवन जीने की दृष्टि देता है, विचारों को दिशा देता है और चरित्र को गढ़ता है।
2: इसी उद्देश्य से तो हमने अपने श्रोताओं के लिए ये विशेष कार्यक्रम काव्य गुंजन आरंभ किया है, ताकि हम अपने देश के महान साहित्यकारों और कवियों की रचनाओं से पुनः जुड़ें, उनके संघर्ष, उनके आदर्श और उनके चिंतन को आत्मसात कर सकें। जब हम ऐसी कृतियों को सुनते हैं ना, तो केवल कथा नहीं सुनते, हम अपने भीतर सोई हुई चेतना को जगाते हैं। तो आइए श्रोताओं, उसी चेतना के साथ बढ़ते हैं चतुर्थ सर्ग के अंतिम अंशों की ओर।
1: और आज चतुर्थ सर्ग के अंतिम भागों की ओर बढ़ते हुए हम केवल काव्य पाठ नहीं करेंगे, हम उस धड़कन को सुनेंगे जो इतिहास के सीने में गूंजती है। देवता और मानव आमने सामने हैं, पर ये टकराव शस्त्रों का नहीं, संकल्पों का है। दिनकर जी ने विभिन्न लेखों और साक्षात्कारों में यह स्पष्ट कहा था कि उनका कर्ण के प्रति विशेष आकर्षण था। दिनकर जी कर्ण को केवल पौराणिक पात्र नहीं मानते थे, बल्कि उसे सामाजिक अन्याय और उपेक्षा के विरुद्ध संघर्ष का प्रतीक मानते थे। दिनकर जी स्वयं कर्ण के चरित्र से अत्यंत प्रभावित थे। वे उसे केवल महाभारत का योद्धा नहीं, बल्कि उस मनुष्य का प्रतीक मानते थे जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने पौरुष और आत्मसम्मान के बल पर खड़ा रहता है। तो आइए, अपने मन को शांत कीजिए, अपने हृदय को विस्तृत कीजिए, क्योंकि आगे जो घटित होगा वो त्याग का वो स्वर है जिसे समय भी मौन होकर सुनता है। आइए वापस चलते हैं उसी गंगा के तट पर, जहां देवराज इंद्र खड़े हाथ फैलाए कर्ण के समक्ष, और कर्ण मानो स्वयं में तीनों लोक का सर्वस्व लुटाने को तैयार हैं। आइए सुनते हैं चतुर्थ सर्ग का भाग 6 का काव्य पाठ और चर्चा।
3: भुज को छोड़ ना मुझे सहारा किसी और संबल का, बड़ा भरोसा था लेकिन इस कवच और कुंडल का, पर उनसे भी आज दूर संबंध किए लेता हूं। देवराज लीजिए, खुशी से महादान देता हूं, ये लीजिए कर्ण का जीवन और जीत कुरुपति की, कनक रचित निःश्रेणी अनुपम निज सुत की उन्नति की, हेतु पांडवों के भय का, परिणाम महाभारत का, अंतिम मूल्य किसी दानी जीवन की दारुण व्रत का, जीवन देकर जय खरीदना जग में यही चलन है। विजय दान करता ना प्राण को रख कोई जन है, मगर प्राण रख कर प्रण अपना आज पालता हूं मैं। पूर्ण आहुति के लिए विजय का हवन डालता हूं मैं। देवराज, जीवन में आगे और कीर्ति क्या लूंगा? इससे बढ़कर दान अनुपम भला किसे क्या दूंगा? अब जाकर कहिए, पुत्र मैं प्रथा नहीं आया हूं, अर्जुन तेरे लिए कर्ण से विजय मांग लाया हूं। एक विनय है, और आप लौटें जब अमर भुवन को, दे दें ये सूचना सत्य के हित में चतुरानन को। उद्वेलित जिसके निमित्त पृथ्वी तल का जन जन है, कुरुक्षेत्र में अभी शुरू भी हुआ नहीं वो रण है। दो वीरों ने किंतु लिया कर आपस में निपटारा, हुआ जय राधे और अर्जुन इस रण में हारा।
2: यह कह उठा कृपाण कर्ण ने त्वचा छील क्षण भर में, कवच और कुंडल उतार धर दिया इंद्र के कर में।
1: चकित भीत चहचहा उठे कुंजों में विहग बिचारे, दिशा सन्न रह गई देख यह दृश्य भीत के मारे। सह न सके आघात सूर्य छिप गए सरक कर घन में, साधु साधु की गिरा मंद्र गूंजी गंभीर गगन में। अपना कृत्य विचार कर्ण का कर्तव्य देख निराला, देवराज का मुखमंडल पड़ गया ग्लानि से काला। क्लिन्न कवच को लिए किसी चिंता में मगे हुए से, जो कि त्यों रह गए इंद्र जड़ता में ठगे हुए से। पाप हाथ से निकल मनुज के सिर पर जब छाता है, तब सत्य ही प्रदाह प्राण का सहा नहीं जाता है। अहंकार वश इंद्र सरल नरको छलने आए थे, नहीं त्याग के महा तेज सम्मुख जलने आए थे। किंतु विशिक जो लगा कर्ण की बलि का आन हृदय में, बहुत काल तक इंद्र मौन रह गए मग्न विस्मय में। झुका शीश आखिर वे बोले,
4: अब क्या बात कहूं मैं, करके ऐसा पाप मूक भी कैसे किंतु रहूं मैं। पुत्र सत्य तूने पहचाना, मैं ही सुरपति हूं, पर सुरत्व को भूल निवेदित करता तुझे प्रणति हूं। देख लिया जो कुछ देखा था कभी न अब तक भू पर, आज तुला कर भी नीचे है मही स्वर्ग है ऊपर। क्या कह करूं प्रबोध, जीभ कांपती प्राण हिलते हैं, मांगू क्षमा दान ऐसे तो शब्द नहीं मिलते हैं। दे पावन पद धूलि कर्ण, दूसरी न मेरी गति है, पहले भी थी भ्रमित अभी भी फंसी भवर में मति है। नहीं जानता था कि छद्म इतना संहारक होगा, दान कवच कुंडल का ऐसा हृदय विदारक होगा। मेरे मन का पाप मुझी पर बनकर धूम घिरेगा, वज्र भेद कर तुझे तुरंत मुझ पर ही आन गिरेगा। तेरे महातेज के आगे मलिन हुआ जाता हूं कर्ण, सत्य ही आज स्वयं को बड़ा क्षुद्र पाता हूं। आह खली थी कभी नहीं मुझको यूं लघुता मेरी, दानी कहीं दिव्य है मुझसे आज छांह भी तेरी। तृण सा विवश डूबता उगता बहता उतराता हूं, शील सिंधु की गहराई का पता नहीं पाता हूं। घूम रही मन ही मन लेकिन मिलता नहीं किनारा, हुई परीक्षा पूर्ण सत्य ही नर जीता सुर हारा। नर जीता सुर हारा।
2: जब कर्ण ने कृपाण उठाई, वह केवल देह भेदन का क्षण नहीं था, वह तपस्वी आत्मा की अग्नि परीक्षा थी। जैसे आदित्य अपने ही अंश का तेज उतारकर जगत को समर्पित कर दे, वैसे ही उसने कवच कुंडल शरीर से विलग कर दिए और पीड़ा समाधि से स्थिर स्वर्ण का आवरण उतरा, किंतु आत्म तेज सहस्र गुना दीप्त हो उठा। उस मार्मिक दृश्य में प्रतीत होता है मानो कवि ने केवल वर्णन नहीं किया, स्वयं कर्ण को ही जी लिया हो। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की काव्य तपस्या की चरम परिणति है।
1: उस क्षण देवराज की स्थिति भी विचित्र हो उठी, जैसे मेघ अपने ही गर्जन से चौंक जाए, जैसे वज्रधारी के हाथ से वज्र ही भारी पड़ जाए, वैसे ही इंद्र कर्ण के त्याग के सम्मुख स्तब्ध रह गए। उनका मुखमंडल मानो ग्रहण ग्रस्त चंद्र सा मलिन पड़ गया। देवलोक का अधिपति वहां एक संकोच ग्रस्त मनुष्य सा खड़ा था, जो छल लेकर आए थे वही त्याग की ज्वाला में दग्ध हो उठे। ऐसा लगा जैसे स्वर्ग की ऊंचाई अचानक झुक गई हो और धरती का एक वीर आकाश से भी अधिक विराट हो गया हो।
2: श्रोताओं, आज के समय में जब लोग सफलता के लिए समझौते करने को तैयार हो जाते हैं ना, तो कर्ण का चरित्र हमें यहाँ ये सिखाता है कि चरित्र की ऊंचाई पद या शक्ति से बड़ी होती है। उसके पास जीवन बचाने का अवसर था, किंतु उसने अपने सिद्धांतों को नहीं छोड़ा। और इंद्र का झुकना हमें ये बताता है कि कभी कभी अधिकार और पद भी नैतिकता के सामने छोटे पड़ जाते हैं। सच्ची विजय वही है जहाँ मनुष्य अपने मूल्यों पर अडिग रहे, चाहे परिणाम उसके विरुद्ध ही क्यों ना हो। इसलिए इस प्रसंग की शिक्षा सरल है, शक्ति जन्म से नहीं चरित्र से बनती है, और सम्मान किसी से मांगा नहीं जाता, अपने आचरण से अर्जित किया जाता है।
1: मित्रों, सचमुच यह क्षण केवल एक दान का प्रसंग नहीं, मनुष्यता के गौरव का महोत्सव है। ऐसा प्रतीत होता है मानो स्वयं प्रकृति भी इस दृश्य को निहार कर विस्मित रह गई हो। दिशाओं में जो ध्वनि गूंज रही है उसे प्रशंसा कहें, वंदना कहें या विजय घोष, क्योंकि आज एक मनुष्य अपने त्याग से देवताओं के समकक्ष नहीं उनसे भी ऊंचा दिखाई देता है। कर्ण ने कवच और कुंडल देकर केवल अपना शरीर नहीं हल्का किया, उसने दान की परिभाषा को ही विस्तृत कर दिया। किंतु ये कथा यहीं समाप्त नहीं होती, रश्मिरथी की यात्रा अभी आगे बढ़नी है और कर्ण का संघर्ष भी अभी अधूरा है। उसका युद्ध कुरुक्षेत्र में नहीं उस दिन आरंभ हो गया था जब उसे अपने ही भाग्य से जूझना पड़ा था। अब अगले अंक में हम प्रवेश करेंगे चतुर्थ सर्ग के अंतिम पड़ाव में, जहां सुनेंगे भाग 7 का काव्य पाठ।
4: हां हां पड़ पुत्र प्रेम में आया था छल ही करने को, जान बूझ कर कवच और कुंडल तुझसे हरने को। वो छल हुआ प्रसिद्ध किसे, क्या मुख अब दिखलाऊंगा। आया था बन विप्र, चोर बनकर वापस जाऊंगा। वंदनीय तू कर्ण, देख कर तेज तिग्म अति तेरा। कांप उठा था आते ही देवत्व पूर्ण मन मेरा। किंतु अभी तो तुझे देख मन और डरा जाता है, हृदय सिमटता हुआ आप ही आप मरा जाता है। दिख रहा तू मुझे ज्योति के उज्जवल शैल अचल सा, कोटि कोटि जन्मों के संचित महापुण्य के फल सा। त्रिभुवन में जिन अमित योगियों का प्रकाश जगता है, उनके पूंजी भूत रूप सा तू मुझको लगता है। खड़े दिखते जगन्नियता पीछे तुझे गगन में, बड़े प्रेम से लिए तुझे ज्योतिर्मय आलिंगन में। दान धर्म अगणित व्रत साधन योग यज्ञ तप तेरे, सब प्रकाश बन खड़े हुए हैं तुझे चतुर्दिखेरे। मही मग्न हो तुझे अंक में लेकर इठलाती है, मस्तक सूंग स्वस्व अपना यह कहकर जतलाती है, इसने मेरे अमित मलिन पुत्रों का दुख मेटा है। सूर्य पुत्र ये नहीं, कर्ण मुझ दुखिया का बेटा है। तू दानी, मैं कुटिल प्रवंचक, तू पवित्र, मैं पापी। तू देकर भी सुखी और मैं लेकर भी परितापी। तू पहुंचा है जहां कर्ण देवत्व न जा सकता है, इस महान पद को कोई मानव ही पा सकता है। देख न सकता अधिक और मैं कर्ण रूप यह तेरा, काट रहा है मुझे जाग कर पाप भयानक मेरा। तेरे इस पावन स्वरूप में जितना ही पगता हूं, उतना ही मैं और अधिक बर्बर समान लगता हूं। अतः कर्ण, कर कृपा, यहां से मुझे तुरंत जाने दो। अपने इस दूरदर्श तेज से त्राण मुझे पाने दो। मगर विदा देने के पहले एक कृपा यह कर दो, मुझ निष्ठुर से भी कोई ले मांग सोच कर वर लो।
2: तब कर्ण ने कहा,
5: धन्य हुआ मैं आज सभी कुछ देकर। देवराज, अब क्या होगा वरदान नया कुछ लेकर? बस आशीष दीजिए, धर्म में मेरा भाव अचल हो, वही छत्र हो, वही मुकुट हो, वही कवच कुंडल हो।
2: तब देवराज बोले,
4: कर्ण, यदि धर्म तुझे छोड़ेगा, निज रक्षा के लिए नया संबंध कहां जोड़ेगा? और धर्म को तू छोड़ेगा भला पुत्र किस भय से? अभी अभी रखा जब इतना ऊपर उसे विजय से। धर्म नहीं, मैंने तुझसे जो वस्तु हरण कर ली है, छल से कर आघात तुझे जो निस्सहायता दी है, उसे दूर या कम करने की है मुझको अभिलाषा। पर स्वेच्छा से नहीं पूजने देगा तू यह आशा। तू मांगे कुछ नहीं, किंतु मुझको अवश्य देना है। मन का कठिन बोझ थोड़ा सा हल्का कर लेना है। ले ले अमोघ यह अस्त्र, काल को भी यह खा सकता है, इसका कोई वार किसी पर विफल न जा सकता है। एक बार ही मगर काम तू इससे ले पाएगा, फिर यह तुरंत लौट कर मेरे पास चला जाएगा। अतः वत्स, मत इसे चलाना कभी वृथा चंचल हो। लेना काम तभी जब तुझको और न कोई बल हो।
1: दानवीर जय हो, महिमा का गान सभी जन गाएं, देव और नर दोनों ही तेरा चरित्र अपनाएं। दे अमोघ शरदान सिधारे देवराज अंबर को, व्रत का अंतिम मूल्य चुकाकर गया कर्ण निज घर को, गया कर्ण निज घर को।
2: श्रोताओं, यह प्रसंग केवल इंद्र और कर्ण का संवाद नहीं है, यह मनुष्य और देवत्व के बीच खड़ी उस अदृश्य रेखा का प्रसंग है जहां आकर सारे मानदंड बदल जाते हैं। देवराज इंद्र स्वयं अपराध बोध से भरे खड़े हैं और कर्ण सब कुछ देकर भी निर्भर, निर्विकार और उज्जवल दिखाई देता है। यही तो इस प्रसंग का चमत्कार है। दान देने वाला छोटा नहीं हुआ, लेने वाला बड़ा नहीं हुआ, उल्टे दान ने कर्ण को ऐसी ऊंचाई पर पहुंचा दिया जहां पहुंचकर इंद्र स्वयं अपनी ओर देखने में संकोच अनुभव करते हैं। लोक में कहा जाता है कि सोना जितना तपता है उतना ही निखरता है। कर्ण का जीवन भी कुछ ऐसा ही है। अपमान की अग्नि, उपेक्षा की धूप और संघर्ष की आंधियों ने उसे जलाया अवश्य, परंतु अंततः वही अग्नि उसके व्यक्तित्व को कुंदन बना गई।
1: मित्रों, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर यहाँ एक अत्यंत गूढ़ बात कह रहे हैं। वे ये नहीं दिखा रहे कि कर्ण ने कवच कुंडल दान कर दिए, वे ये दिखा रहे हैं कि मनुष्य का वास्तविक वैभव उसके पास क्या है इसमें नहीं, बल्कि वो क्या छोड़ सकता है इसमें निहित है। संग्रह सहज है, त्याग कठिन, मुट्ठी बांधना सरल है, हाथ खोलना कठिन। और जब कोई मनुष्य अपने प्राणों की सुरक्षा तक दान कर दे, तब वो केवल दानी नहीं रह जाता, वो एक विचार बन जाता है। कर्ण का तेज इसी त्याग से जन्मा है। इसीलिए इंद्र कहते हैं, जहां तुम पहुंच गए हो वहां देवत्व भी नहीं पहुंच सकता। कितना विलक्षण कथन है। दिनकर जी मानो कह रहे हो कि मनुष्य जब अपने स्वार्थ पर विजय पा लेता है, तब वो देवताओं से भी ऊंचा उठ सकता है।
2: और यहाँ इस प्रसंग की एक और बात अत्यंत स्पष्ट करती है। जब इंद्र वर मांगने को कहते हैं, तब कर्ण धन, राज्य, विजय या आयु नहीं मांगता। वह केवल ये प्रार्थना करता है कि धर्म में उसका भाव अचल रहे। कितना विशाल चिंतन है ये। सामान्य मनुष्य संकट के समय सुरक्षा चाहता है, कर्ण धर्म चाहता है। वह कवच नहीं मांगता, वह आस्था मांगता है। वह रक्षा नहीं मांगता, वह निष्ठा मांगता है। मानो कह रहा हो कि यदि धर्म साथ है तो कवच की आवश्यकता नहीं, और यदि धर्म साथ नहीं है तो कवच भी व्यर्थ है। यही भारतीय चिंतन की आत्मा है, जहां बाहरी शक्ति से अधिक महत्व भीतरी स्थिरता को दिया गया है।
1: आज के समय में जब मनुष्य का मूल्य प्रायः उसकी संपत्ति, प्रतिष्ठा और प्रभाव से आंका जाने लगा है, तब कर्ण का ये प्रसंग हमें भीतर झांकने को विवश करता है। हम क्या बचा रहे हैं और किसके लिए बचा रहे हैं? जीवन भर हम जोड़ते रहते हैं धन, वस्तुएं, संबंध, पहचान, परंतु में मनुष्य को बड़ा उसका संग्रह नहीं बनाता, उसका समर्पण बनाता है। नदी इसलिए पूजनीय नहीं कि वो जल रोक कर रखती है, वो इसलिए पूजनीय है क्योंकि वो निरंतर बहती रहती है। कर्ण भी उसी नदी की तरह है, देता जाता है, देता जाता है, और जितना देता है उतना ही विराट होता जाता है। और शायद यही कारण है कि दिनकर जी ने कर्ण को अपना नायक बनाया। महाभारत में विजेता और भी हैं, राज सिंहासन पाने वाले और भी हैं, पर कर्ण जैसा चरित्र दुर्लभ है। वो हमें ये सिखाता है कि मनुष्य की गरिमा उसकी परिस्थितियों से नहीं, उसके निर्णयों से बनती है। जन्म उसके हाथ में नहीं था, अपमान उसके हाथ में नहीं था, समाज का व्यवहार उसके हाथ में नहीं था, पर उसका आचरण उसके हाथ में था, और उसने वही चुना जिस उसका व्यक्तित्व अमर हो गया। यही रश्मिरथी का मर्म है और यही दिनकर जी का संदेश है।
2: श्रोताओं, इस प्रसंग का सबसे मार्मिक पक्ष शायद यही है कि यहाँ दान समाप्त नहीं होता, बल्कि एक नई यात्रा आरंभ करता है। कवच कुंडल शरीर से अलग हुए हैं, किंतु कर्ण का तेज और भी प्रज्वलित हो उठा है। देवराज अमोघ शक्ति देकर लौट गए, किंतु संवाद के बाद हमारे मन में जो प्रश्न, जो भाव, जो प्रेरणा शेष रह जाती है, वही इस काव्य की सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि महान साहित्य वही होता है जो कथा समाप्त होने के बाद भी भीतर कुछ बोलता रहे। और उसी भावपूर्ण क्षण के साथ चतुर्थ सर्ग का ये अध्याय अपनी पूर्णता की ओर बढ़ता है। दान की यह ज्योति, धर्म की यह दृढ़ता और चरित्र की ये ऊंचाई आने वाले प्रसंगों में भी हमारा मार्ग आलोकित करती रहेगी। सच ही तो कहा गया है, समय साम्राज्यों को भुला देता है किंतु त्याग की कथाओं को नहीं। कर्ण का कवच न रहा, कुंडल न रहे, परंतु उसकी कीर्ति का कवच आज भी अक्षत है। यही उसकी विजय है, यही उसकी अमरता है। श्रोताओं, कभी कभी सिर्फ मौन रहने का ही मन होता है। ऐसे काव्यांश को सुनकर लगता है कि उसी चिंतन में रहें। सुनने वाले भी जैसे सब कुछ हार जाते हैं। हृदय में मानो इतिहास के वो पन्ने अंकित हो जाते हैं। उन्हीं पन्नों पर मनोरथ दौड़ता रहता है, जैसे दौड़ रहा है रश्मि रथी का रथ। और देखिए कैसी अद्भुत दृष्टि रही कवि की, जिसने इस क्षण को केवल युद्ध कथा नहीं रहने दिया, बल्कि मानव गरिमा का घोष बना दिया। हाँ, यह शब्दों का नहीं, आत्मा का चित्रण है। जिस तरह कर्ण का तेज सबके सामने आता है, लगता है कवि ने उसे देखा ही नहीं, जिया है। यही तो रामधारी सिंह दिनकर की महिमा है।
1: मित्रों, आज हमने उस अद्भुत प्रसंग को सुना जहां देव राजेंद्र स्वयं याचक बनकर कर्ण के द्वार पर आए और उनसे जन्मजात कवच कुंडल का दान मांगा। कर्ण सब कुछ जानते थे, वे ये भी जानते थे कि ये दान उनके जीवन की सबसे बड़ी सुरक्षा छीन लेगा। फिर भी उन्होंने अपने वचन, अपने धर्म और अपनी दानशीलता को जीवन से अधिक महत्व दिया। यही वो क्षण है जहां कर्ण केवल महाभारत के महान योद्धा नहीं रहते बल्कि त्याग, स्वाभिमान और आदर्श के शिखर पुरुष बन जाते। तो मित्रों, आज की सीख सरल है, सम्मान पद से नहीं आचरण से मिलता है और विजय परिणाम में नहीं निर्णय में छिपी होती है। अब आगे का सर्ग और भी कठोर प्रश्न लेकर आएगा। रण समीप है और आदर्श की अग्नि परीक्षा अभिशेष है। तो अब हमें दीजिए अनुमति, अगले अंक में फिर आपसे होगी भेंट, जहां आरंभ होगा रश्मि रथी का अत्यंत मार्मिक और हृदय स्पर्शी पंचम सर्ग। वहां एक मां का पश्चाताप है, एक पुत्र का स्वाभिमान है और नियति के सबसे करुण अध्यायों में से एक हमारा इंतजार कर रहा है। जाते जाते हम आपको बताना चाहेंगे, इस कार्यक्रम में मार्गदर्शन किया था संतोष कुमार वर्मा ने, परिकल्पना अदिति गौड़ की, ध्वनि संपादन अमित गुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम का, मूल रचना राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर, रेडियो प्रस्तुति एवं लेखन दीपक नेमा और इसे आप तक पहुंचाया मैंने यानी आपके रेडियो मित्र संदीप शर्मा ने,
2: मैंने यानी आपकी रेडियो सखी भगवती सक्सेना ने,
4: मैं प्रवीण महुआले
6: और मैं आपका रेडियो मित्र दीपक नेमा।
1: तो दीजिए अनुमति, मिलेंगे अगली बार। नमस्कार। काव्य गुंजन, महाकाव्यों का गुच्छा।
7: नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं 90.8 रेडियो आजाद हिंद। मैं आपका दोस्त दीपक नेमा
8: और मैं हूं आपके साथ स्वाति।
7: कार्यक्रम हमारे वैज्ञानिक में आज हम बात करेंगे भारत के गौरव और विश्व विज्ञान के महान स्तंभ प्रोफेसर हरगोविंद खुराना जी के बारे में। विज्ञान के इतिहास में कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने मानवता की समझ को मूलभूत रूप से बदल दिया है। प्रोफेसर हरगोविंद खुराना उन्हीं महान वैज्ञानिकों में से एक हैं जिन्होंने जीवन के सबसे गहरे रहस्यों को सुलझाने में अभूतपूर्व योगदान दिया। अनुवांशिक कोड की व्याख्या करने और प्रयोगशाला में पहली बार कृत्रिम जीन का निर्माण करने वाले इस महान वैज्ञानिक की जीवन यात्रा एक छोटे से पंजाबी गांव से शुरू होकर विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान नोबेल पुरस्कार तक पहुंची। उनका जीवन कठिन परिश्रम, समर्पण, दृढ़ संकल्प और वैज्ञानिक जिज्ञासा का एक अनुपम उदाहरण है।
8: श्रोताओं, हरगोविंद खुराना का जन्म 9 जनवरी 1922 को रायपुर नामक एक अत्यंत ही छोटे से गांव में हुआ था। ये गांव मुल्तान जिले में स्थित था जो अब पाकिस्तान के पंजाब प्रांत का हिस्सा है। उनके जन्म के समय ये ब्रिटिश भारत का हिस्सा हुआ करता था और अविभाजित भारत की पंजाब की धरती पर बसा एक साधारण ग्रामीण क्षेत्र था। हरगोविंद खुराना के पिता का नाम श्री गणपत राय खुराना और माता का नाम श्रीमती कृष्ण देवी था। उनके पिता गांव के पटवारी यानी राजस्व अधिकारी थे जो एक सरकारी पद था लेकिन आर्थिक दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं था। उस समय पटवारी का काम भूमि रिकॉर्ड रखना, राजस्व संग्रह में सहायता करना और गांव के प्रशासनिक कार्यों में सहायता करना होता था।
7: परिवार में हरगोविंद सबसे छोटी संतान थे। उनके 4 बड़े भाई बहन थे जिनमें से 1 बहन और 3 भाई थे। परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी लेकिन गणपत राय खुराना शिक्षा के महत्व को गहराई से समझते थे। उस समय के ग्रामीण भारत में विशेषकर एक साधारण पटवारी के परिवार में शिक्षा को इतनी प्राथमिकता देना असामान्य था। लेकिन गणपत राय जी दूरदर्शी थे और उन्होंने अपने सभी बच्चों को शिक्षित करने का संकल्प लिया।
8: रायपुर गांव अत्यंत छोटा था, इतना छोटा कि वहां केवल 100 परिवार ही रहा करते थे। गांव में कोई उचित स्कूल भी नहीं था। शिक्षा की सुविधा केवल एक शिक्षक के रूप में थी जो गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठकर बच्चों को पढ़ाते थे। ये प्रारंभिक शिक्षा की अत्यंत सीमित व्यवस्था थी, लेकिन यहीं से हरगोविंद खुराना की शिक्षा यात्रा आरंभ हुई। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि उनके परिवार में केवल उनके पिता ही साक्षर थे, उनकी माता और अन्य परिवार जन पढ़े लिखे नहीं थे। उस समय के ग्रामीण भारत की ये सामान्य बात हुआ करती थी। इस परिस्थिति में उनके पिता का शिक्षा के प्रति समर्पण और भी प्रशंसनीय हो जाता है।
7: हर गोविंद खुराना की प्रारंभिक शिक्षा गांव में ही उस एकमात्र शिक्षक से शुरू हुई, लेकिन उनके पिता जानते थे कि बेहतर शिक्षा के लिए उन्हें बड़े शहर भेजना होगा। इसलिए उन्होंने अपने बच्चों को मुल्तान भेजने का निर्णय लिया, जो उस समय पंजाब का एक महत्वपूर्ण शहर था। मुल्तान में हरगोविंद खुराना ने डीएवी दयानंद एंग्लो वैदिक हाई स्कूल में प्रवेश लिया। डीएवी स्कूल आर्य समाज द्वारा स्थापित शैक्षणिक संस्थान थे, जो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए जाने जाते थे। यहाँ उन्हें पहली बार औपचारिक और व्यवस्थित शिक्षा मिली। मुल्तान में रहकर पढ़ाई करना एक गरीब परिवार के लिए आर्थिक बोझ था।
8: युवा हरगोविंद को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आवास, भोजन और अन्य खर्चों को पूरा करना चुनौतीपूर्ण था, लेकिन उनकी प्रतिभा और लगन ने जल्द ही शिक्षकों का ध्यान आकर्षित कर लिया। वो विशेष रूप से विज्ञान और गणित में उत्कृष्ट थे। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद 1943 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय लाहौर में प्रवेश लिया। लाहौर उस वक्त पंजाब की सांस्कृतिक और शैक्षिक राजधानी हुआ करता था। पंजाब विश्वविद्यालय उत्तरी भारत के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में से एक था। यहाँ उन्होंने रसायन विज्ञान में स्नातक की पढ़ाई की और 1943 में अपनी डिग्री हासिल की।
7: बीएससी में उनका प्रदर्शन इतना उत्कृष्ट था कि उन्हें स्नातकोत्तर एमएससी की पढ़ाई के लिए छात्रवृत्ति मिल गई। 1945 में उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में एमएससी की उपाधि प्राप्त की। उनके एमएससी के परिणाम भी अत्यंत उत्कृष्ट थे। ये समय भारतीय इतिहास में अत्यंत उथल पुथल का दौर था। द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और भारत में स्वतंत्रता आंदोलन अपने चरम पर था। इन सभी परिस्थितियों के बीच एक गरीब परिवार से आए युवक का अपनी शिक्षा पर ध्यान केंद्रित रखना उनके दृढ़ संकल्प का प्रमाण था।
8: एमएससी पूरी करने के बाद हरगोविंद खुराना के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें भारत सरकार की ओर से विदेश में उच्च शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति मिली। ये उस समय एक बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि बहुत कम भारतीय विद्यार्थियों को यह अवसर मिलता था। 1945 में वो उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए। उन्हें लिवरपूल विश्वविद्यालय में दाखिला मिला, जो उस समय रसायन विज्ञान में शोध के लिए प्रसिद्ध था। वहां उन्होंने प्रोफेसर रोजर जे एस बियर के निर्देशन में पीएचडी का शोध कार्य शुरू किया।
7: प्रोफेसर बियर जैविक रसायन विज्ञान के विशेषज्ञ थे और विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के क्षेत्र में काम कर रहे थे। ये वो क्षेत्र था जो आगे चलकर खुराना के करियर का केंद्र बनने वाला था। प्रोफेसर बियर के मार्गदर्शन में खुराना ने न्यूक्लियोटाइड्स के रसायन विज्ञान पर शोध किया। लिवरपूल में उनके वर्ष अत्यंत परिश्रम और सीखने के वर्ष थे। युद्ध के बाद इंग्लैंड में जीवन कठिन था, संसाधन सीमित थे। एक विदेशी विद्यार्थी के रूप में खुराना को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एकाग्रता अपने शोध पर बनी रही।
8: 1948 में उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी पीएचडी पूरी की। उनका शोध प्रबंध न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण और गुणों पर था। ये काम भविष्य में डीएनए और आरएनए के अध्ययन में महत्वपूर्ण साबित होने वाला था। पीएचडी पूरी करने के तुरंत बाद खुराना ने पोस्ट डॉक्टरल शोध के लिए स्विट्जरलैंड जाने का निर्णय लिया। वे ज्यूरिख के स्विस फेडरल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गए, जो विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थानों में से एक है।
7: वहां उन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग के साथ काम किया। प्रिलॉग स्वयं एक महान रसायनज्ञ थे। उन्हें बाद में 1975 में नोबेल पुरस्कार मिला और कार्बनिक रसायन विज्ञान में उनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण था। खुराना ने 1948-49 में ज्यूरिख में प्रिलॉग के साथ काम करते हुए कार्बनिक संश्लेषण की उन्नत तकनीकों को सीखा। स्विट्जरलैंड में रहते हुए उनकी मुलाकात एस्तेर एलिजाबेथ सिबलर से हुई, जो स्विस मूल की थीं। ये मुलाकात उनके व्यक्तिगत जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाली थी।
8: 1949 में खुराना वापस इंग्लैंड लौटे और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में शामिल हो गए। यहाँ उन्हें प्रोफेसर अलेक्जेंडर रॉबर्ट स्टॉट के साथ काम करने का मौका मिला। ये खुराना के करियर में एक निर्णायक मोड़ था। प्रोफेसर टॉड उस समय न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में अग्रणी शोधकर्ता थे। उन्होंने 1957 में न्यूक्लियोटाइड्स और न्यूक्लियोटाइड को एंजाइम पर काम करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार हासिल किया।
7: कैम्ब्रिज में टॉड की प्रयोगशाला में काम करते हुए खुराना ने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान में गहरी विशेषज्ञता विकसित की। उन्होंने फॉस्फोएस्टर बंधन बनाने की नई विधियों पर काम किया, जो डीएनए और आरएनए के संश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। कैम्ब्रिज में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र प्रकाशित किए और अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक समुदाय में अपनी पहचान बनाई। यहीं उन्होंने वे तकनीकें और दृष्टिकोण विकसित किए जो बाद में उनके नोबेल पुरस्कार विजेता बनने में काम आने वाले थे।
8: 1952 में खुराना को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना पड़ा। उन्हें ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय वैंकूवर कनाडा में एक स्वतंत्र शोधकर्ता के रूप में नौकरी का प्रस्ताव मिला। ये उनके लिए एक स्वतंत्र शोध प्रयोगशाला स्थापित करने और अपने विचारों को मूर्त रूप देने का भी अवसर था। 1952 में ही उन्होंने एस्तेर एलिजाबेथ सिबलर से विवाह कर लिया। ये विवाह उनके जीवन में स्थिरता और खुशियां लेकर आया। एस्तेर न केवल एक सहयोगी जीवन साथी थी, बल्कि उन्होंने हमेशा खुराना के शोध कार्य को समझा और उसमें सहयोग भी दिया।
7: विवाह के बाद दोनों कनाडा चले गए। वैंकूवर में खुराना ने अपनी प्रयोगशाला स्थापित की। यहाँ उन्हें सीमित संसाधन थे। यहाँ उनके पास सीमित संसाधन थे और उन्हें अपनी प्रयोगशाला को शुरू से खड़ा करना था, लेकिन ये चुनौती उनके लिए अवसर भी थी। कनाडा में उन्होंने न्यूक्लिक एसिड के रसायन विज्ञान पर अपना काम जारी रखा। उन्होंने विशेष रूप से न्यूक्लियोटाइड्स के संश्लेषण की नई और अधिक कुशल विधियां विकसित की। उनका काम धीरे धीरे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित करने लगा।
8: वैंकूवर में रहते हुए उनके 3 बच्चे हुए, एक बेटी जूलिया एलिजाबेथ और 2 बेटे डेव रॉय और एमिली एन। परिवार और शोध के बीच संतुलन बनाना कठिन था, लेकिन एस्तेर के सहयोग से ये संभव हुआ। 1952 से 1960 तक ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय में उनके वर्ष अत्यंत महत्वपूर्ण रहे। यहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण शोध पत्र भी प्रकाशित किए। उन्होंने न्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम्स पर काम किया और डीएनए और आरएनए के घटकों के संश्लेषण में महत्वपूर्ण प्रगति की।
7: इस दौरान वैज्ञानिक समुदाय में डीएनए की संरचना को लेकर बड़ी उत्तेजना थी। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की थी। ये खोज आणविक जीव विज्ञान में क्रांतिकारी थी। खुराना का काम इस खोज के साथ पूरी तरह से प्रासंगिक था, क्योंकि वे डीएनए के रासायनिक घटकों पर काम कर रहे थे। 1960 में खुराना के करियर में फिर एक नया महत्वपूर्ण मोड़ आया। उन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन मेडिसन अमेरिका में प्रोफेसर और इंस्टीट्यूट फॉर एंजाइम रिसर्च के को डायरेक्टर के पद का प्रस्ताव मिला। ये एक प्रतिष्ठित पद था और बेहतर संसाधनों और सुविधाओं का अवसर था।
8: खुराना और उनका परिवार मेडिसिन विस्कॉन्सिन चले गए। यहाँ उन्हें एक उत्कृष्ट शोध वातावरण और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों और सहयोगियों की टीम मिली। विस्कॉन्सिन में उन्होंने अपना सबसे महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक काम किया। 1960 के दशक की शुरुआत में वैज्ञानिक समुदाय एक महत्वपूर्ण प्रश्न से जूझ रहा था। डीएनए में संग्रहित अनुवांशिक सूचना किस तरह प्रोटीन के निर्माण में अनुवादित होती है, ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय प्रश्न था।
7: खुराना ने इस समस्या को रासायनिक दृष्टिकोण से देखा। उन्होंने सोचा कि यदि वे कृत्रिम रूप से ज्ञात अनुक्रम के न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखला बना सकें, तो वे परीक्षण कर सकते हैं कि कौन सा न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम किस अमीनो एसिड को कोड करता है। यह विचार सरल लग सकता है, लेकिन इसे व्यवहार में लाना अत्यंत कठिन था। उस समय न्यूक्लियोटाइड्स को एक विशेष क्रम में जोड़ना तकनीकी रूप से बहुत चुनौतीपूर्ण था। खुराना और उनकी टीम ने वर्षों तक बहुत कठिन परिश्रम किया।
8: उन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे न्यूक्लियोटाइड्स अनुक्रम बनाए, फिर धीरे धीरे अधिक जटिल अनुक्रम बनाए। उन्होंने ये दिखाया कि तीन न्यूक्लियोटाइड्स का एक समूह, जिसे कोडॉन कहा जाता है, एक विशेष अमीनो एसिड को निर्धारित करता है। उदाहरण के लिए UUU अनुक्रम फेनिल एलानाइन अमीनो एसिड को कोड करता है।
7: खुराना की विधि ने वैज्ञानिकों को पूर्ण अनुवांशिक कोड को समझने में मदद की। उन्होंने ये स्पष्ट किया कि 64 संभावित कोडॉन 20 अमीनो एसिड को कैसे कोड करते हैं। कुछ अमीनो एसिड एक से अधिक कोडॉन द्वारा कोड किए जाते हैं, और कुछ कोडॉन प्रोटीन संश्लेषण को शुरू करने या रोकने के संकेत देते हैं। इस काम के लिए खुराना को 1968 में रॉबर्ट डब्ल्यू हॉली और मार्शल डब्ल्यू निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिकों के लिए गौरव का क्षण था।
8: 1968 का नोबेल पुरस्कार खुराना के जीवन का सबसे बड़ा सम्मान था। स्टॉकहोम में आयोजित भव्य समारोह में उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उनके काम को अनुवांशिक कोड की व्याख्या और प्रोटीन संश्लेषण में इसकी भूमिका के लिए मान्यता दी। नोबेल पुरस्कार ने खुराना को अंतरराष्ट्रीय ख्याति दिलाई। भारत में उनकी सफलता का व्यापक रूप से जश्न मनाया गया। एक छोटे से पंजाबी गांव से आया व्यक्ति विश्व के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान को प्राप्त कर रहा था। ये एक प्रेरणादायक कहानी थी।
7: भारत सरकार ने उन्हें 1968 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया, जो भारत का दूसरा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। विभिन्न भारतीय संस्थानों और विश्वविद्यालयों ने उन्हें मानक उपाधियां प्रदान की। नोबेल पुरस्कार के बाद भी खुराना अपने काम में लगे रहे। कई वैज्ञानिक नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद आराम कर लेते हैं या प्रशासनिक भूमिकाओं में चले जाते हैं, लेकिन खुराना नहीं। उनके लिए विज्ञान एक जुनून था, ना कि केवल एक करियर। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद खुराना ने एक और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया, एक पूर्ण कार्यात्मक जीन को पूरी तरह से कृत्रिम रूप से संश्लेषित करना। ये 1960 और 1970 के दशक में विज्ञान कथा जैसा लगता था।
8: 1970 के दशक की शुरुआत में खुराना और उनकी टीम ने एक महत्वाकांक्षी परियोजना शुरू की। उन्होंने तय किया कि वो एक विशेष टीआरएनए के लिए जीन को कृत्रिम रूप से बनाएंगे। ये अत्यंत जटिल कार्य था, जिसमें लगभग 77 न्यूक्लियोटाइड्स को सही क्रम में जोड़ना था। ये काम अत्यंत श्रमसाध्य था। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड को अलग से संश्लेषित करना, फिर उसे सही क्रम में जोड़ना और ये सुनिश्चित करना कि कोई त्रुटि ना हो, ये सब अविश्वसनीय रूप से कठिन था। उस समय के तकनीकी साधन आज की तुलना में बहुत सीमित थे।
7: खुराना की टीम ने वर्षों तक इस परियोजना पर काम किया। अंततः 1970 में उन्होंने सफलतापूर्वक एक कार्यात्मक टीआरएनए जीन को पूरी तरह से प्रयोगशाला में संश्लेषित किया। ये आणविक जीव विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर था। यह पहली बार था जब मनुष्य ने एक पूर्ण जीन को रासायनिक रूप से बनाया था। इस उपलब्धि के महत्व को कम करके नहीं आंका जा सकता। इसने यह प्रदर्शित किया कि जीवन के आणविक आधार को न केवल समझा जा सकता है, बल्कि प्रयोगशाला में पुनर्निर्मित भी किया जा सकता है। इसने आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और जेनेटिक इंजीनियरिंग के दरवाजे खोल दिए।
8: इस काम के लिए खुराना को 1972 में अमेरिकी सरकार द्वारा नेशनल मेडल ऑफ साइंस से सम्मानित किया गया, जो अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान है। और फिर शुरू हुआ MIT में एक नया अध्याय। 1970 में खुराना ने एक और महत्वपूर्ण करियर निर्णय लिया। उन्होंने विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय छोड़ दिया और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में शामिल हो गए। MIT विश्व के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक और तकनीकी संस्थानों में से एक है।
7: MIT में उन्हें अल्फ्रेड पी स्लोन प्रोफेसर ऑफ बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का पद दिया गया। यहाँ उन्हें उत्कृष्ट सुविधाएं और प्रतिभाशाली सहयोगियों का समूह मिला। MIT में उन्होंने अपने शोध को नई दिशाओं में विस्तारित किया। MIT में रहते हुए खुराना ने झिल्ली प्रोटीनों, विशेष रूप से रोडोप्सिन पर काम करना शुरू किया। रोडोप्सिन वो प्रोटीन है जो हमारी आंखों में प्रकाश को पहचानने में मदद करती है। ये काम उनके पहले के काम से काफी अलग था, लेकिन ये दर्शाता है कि खुराना हमेशा नई चुनौतियों की तलाश में रहते थे।
8: उन्होंने रोडोप्सिन जीन का संश्लेषण किया जो उनकी पहली कृत्रिम जीन से कहीं अधिक जटिल था। ये जीन लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड्स लंबा था। इस काम ने झिल्ली प्रोटीनों की संरचना और कार्य को समझने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। MIT में उनके वर्ष अत्यंत उत्पादक रहे। उन्होंने कई डॉक्टरल और पोस्ट डॉक्टरल विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई बाद में स्वयं प्रतिष्ठित वैज्ञानिक बने। हरगोविंद खुराना का व्यक्तित्व उनके वैज्ञानिक कार्य की तरह ही असाधारण था। वो एक अत्यंत अनुशासित, समर्पित और विनम्र व्यक्ति थे। उनके सहयोगियों और विद्यार्थियों ने उनके बारे में जो संस्मरण लिखे हैं, वो एक जटिल लेकिन प्रेरणादायक व्यक्तित्व को दर्शाते हैं।
7: खुराना अपनी प्रयोगशाला में अत्यंत कठोर थे। उन्हें पूर्णता की उम्मीद थी अपने आप से और अपने विद्यार्थियों से। वे प्रायोगिक डेटा में थोड़ी सी भी अशुद्धता को स्वीकार नहीं करते थे। कई बार वे अपने विद्यार्थियों से प्रयोगों को बार बार दोहराने के लिए कहते थे, जब तक कि परिणाम पूरी तरह से सुसंगत ना हो जाए। लेकिन जो मानक वे दूसरों से अपेक्षा करते थे, वही मानक वे स्वयं भी बनाए रखते थे। वे अक्सर अपने विद्यार्थियों से भी अधिक समय प्रयोगशाला में बिताते थे। सुबह जल्दी आना और देर रात तक रुकना उनकी आदत थी। सप्ताहांत पर भी वे प्रयोगशाला में काम करते हुए दिखाई देते थे।
8: उनके एक पूर्व विद्यार्थी ने लिखा है, प्रोफेसर खुराना जैसा काम करना कठिन था, लेकिन ये सबसे अधिक शिक्षाप्रद अनुभव भी था। उन्होंने हमें न केवल विज्ञान सिखाया, बल्कि वैज्ञानिक अखंडता और समर्पण का अर्थ भी सिखाया। खुराना बेहद विनम्र थे। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद भी वह कभी अहंकारी नहीं हुए। वे अपने काम को एक बड़े वैज्ञानिक प्रयास का हिस्सा मानते थे, न कि व्यक्तिगत उपलब्धि। वो हमेशा अपने सहयोगियों और विद्यार्थियों और पूर्ववर्ती वैज्ञानिकों के योगदान को स्वीकार करते थे।
7: व्यक्तिगत जीवन में वे निजी व्यक्ति थे। वे सार्वजनिक प्रचार और मीडिया का ध्यान पसंद नहीं करते थे। साक्षात्कार देना या सार्वजनिक भाषण देना उन्हें असहज करता था। वे अपना अधिकांश समय परिवार और प्रयोगशाला के बीच बांटते थे। उनकी बोलने की शैली संक्षिप्त और सटीक थी। वे बिना किसी अनावश्यक विस्तार से अपनी बात कहते थे। ये गुण उनके वैज्ञानिक लेखन में भी दिखाई देता था, स्पष्ट, सटीक और तथ्य आधारित।
8: हरगोविंद खुराना के व्यक्तिगत जीवन में उनकी पत्नी एस्तेर की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। 1952 में हुआ उनका विवाह एक सच्चे साझेदारी का उदाहरण था। एस्तेर न केवल एक पत्नी थी, बल्कि खुराना की सबसे करीबी मित्र, सलाहकार और सहयोगी भी थी। एस्तेर खुराना के शोध को गहराई से समझती। हालांकि वे स्वयं वैज्ञानिक नहीं थी, लेकिन उन्होंने हमेशा खुराना के काम में गहरी रुचि दिखाई। कई बार खुराना घर पर एस्तेर के साथ अपने शोध की चुनौतियों पर चर्चा करते। एस्तेर की समझ और प्रोत्साहन खुराना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण था।
7: उनके तीन बच्चे जूलिया एलिजाबेथ, देव राय और एमिली एन एक बहु सांस्कृतिक परिवेश में बड़े हुए। घर में भारतीय संस्कृति और मूल्यों को बनाए रखा गया, जबकि बच्चे अमेरिकी शिक्षा प्रणाली में पढ़े। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी भारतीय जड़ों को याद रखें। खुराना एक समर्पित पिता थे। अपने व्यस्त कार्यक्रमों के चलते वे अपने परिवार के साथ थोड़ा ही समय बिता पाते थे, फिर भी वे अपने बच्चों की शिक्षा में गहरी रुचि रखते थे और उन्हें कठिन परिश्रम और ईमानदारी का महत्व सिखाते थे।
8: परिवार में हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएं बोली जाती थी। खुराना चाहते थे कि उनके बच्चे अपनी मातृभाषा से जुड़े रहें। घर में भारतीय भोजन बनाया जाता और भारतीय त्योहार भी मनाए जाते। अमेरिकी नागरिकता लेने के बावजूद खुराना ने अपने भारतीय मूल को कभी नहीं भुलाया। वे हमेशा अपने आप को भारतीय अमेरिकी के रूप में पहचानते थे। भारत के प्रति उनका लगाव जीवन भर बना रहा। वे नियमित रूप से भारत आते रहे। यहाँ वे विभिन्न वैज्ञानिक संस्थानों का दौरा भी करते, व्याख्यान देते और भारतीय वैज्ञानिकों से मिलते। उन्होंने कई भारतीय संस्थानों को सलाह और मार्गदर्शन भी प्रदान किया।
7: खुराना भारतीय विज्ञान की प्रगति में गहरी रुचि रखते थे। वे चाहते थे कि भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी में विश्व नेता बने। उन्होंने कई बार भारत सरकार को वैज्ञानिक शिक्षा और शोध में अधिक निवेश करने की सलाह दी। उन्होंने कई प्रतिभाशाली भारतीय विद्यार्थियों को अपनी प्रयोगशाला में प्रशिक्षण प्रदान किया। वे भारतीय विद्यार्थियों को विशेष प्रोत्साहन देते थे और उनके करियर में मार्गदर्शन प्रदान करते थे।
8: अपने साक्षात्कारों में वे अक्सर भारतीय मूल का उल्लेख किया करते। उन्होंने कहा कि उनकी प्रारंभिक शिक्षा और संस्कार भारत में ही मिले, जिन्होंने उनके व्यक्तित्व को आकार दिया। वे अपने पिता के प्रति विशेष रूप से कृतज्ञ थे, जिन्होंने सीमित संसाधनों के बावजूद उनकी शिक्षा को प्राथमिकता दी। खुराना केवल अपने शोध तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने वैज्ञानिक समुदाय में कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं भी निभाई। वे कई प्रतिष्ठित वैज्ञानिक पत्रिकाओं के संपादकीय बोर्ड में भी रहे। उन्होंने अनगिनत शोध पत्रों की समीक्षा की और युवा वैज्ञानिकों को मार्गदर्शन प्रदान किया
7: और विभिन्न वैज्ञानिक अकेडमियों के सदस्य थे, जिनमें नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस USA, रॉयल सोसाइटी UK और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी शामिल है। ये सदस्यताएं वैज्ञानिक समुदाय में उनकी प्रतिष्ठा को दर्शाती हैं। उन्होंने कई अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलनों में भाग लिया और व्याख्यान दिए। हालांकि वे सार्वजनिक भाषण से बचना पसंद करते थे, लेकिन जब वे बोलते थे तो सभी वैज्ञानिक ध्यान से सुनते थे। खुराना ने अपने जीवन काल में कई डॉक्टरल विद्यार्थियों और पोस्ट डॉक्टरल शोधकर्ताओं को प्रशिक्षित किया। उनमें से कई आज दुनिया भर में प्रतिष्ठित वैज्ञानिक हैं।
8: जी हाँ श्रोता, उनका प्रशिक्षण कठोर था, लेकिन उनके विद्यार्थियों को उत्कृष्टता देने के लिए तैयार किया करता था। हरगोविंद खुराना को उनके जीवन काल में अनगिनत पुरस्कार और सम्मान मिले। नोबेल पुरस्कार फिजियोलॉजी या मेडिसिन में रॉबर्ट W. हॉली और मार्शल W. हॉली निरेनबर्ग के साथ संयुक्त रूप से, लुइसा ग्रॉस हॉर्विट्स पुरस्कार कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा जीव विज्ञान या जैव रसायन में उत्कृष्ट योगदान के लिए, पद्म विभूषण भारत सरकार द्वारा विज्ञान और इंजीनियरिंग में योगदान के लिए, नेशनल मेडल ऑफ साइंस अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किया गया अमेरिका का सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान था। विलॉर्ड गिब्स पुरस्कार अमेरिकन केमिकल सोसाइटी द्वारा उन्हें प्रदान किया गया।
7: दोस्तों, गार्डनर फाउंडेशन इंटरनेशनल अवार्ड 1980 कनाडा के गार्डनर फाउंडेशन द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों से मानद उपाधियां, जिनमें शामिल है शिकागो विश्वविद्यालय, कोलंबिया विश्वविद्यालय, अल्बर्ट आइंस्टीन मेडिकल कॉलेज, पंजाब विश्वविद्यालय, भारत। खुराना का वैज्ञानिक योगदान आधुनिक जैव विज्ञान की नींव में शामिल है। उनके काम के बिना आज भी आणविक जीव विज्ञान, जेनेटिक इंजीनियरिंग और जैव प्रौद्योगिकी की कल्पना नहीं की जा सकती।
8: अनुवांशिक कोड की व्याख्या। उनके काम ने यह स्पष्ट किया कि DNA में संग्रहित सूचना किस तरह प्रोटीन में अनुवादित होती है। ये जीवन विज्ञान का केंद्रीय सिद्धांत है। इसी तरह कृत्रिम जीन संश्लेषण, उनके द्वारा विकसित तकनीकों ने आधुनिक जेनेटिक इंजीनियरिंग का मार्ग भी प्रशस्त किया। आज जो भी जेनेटिक संशोधन होता है वो खुराना के मूलभूत काम पर ही आधारित है।
7: उनकी विधियों ने DNA अनुक्रमण तकनीकों के विकास में योगदान दिया, जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जैसे महत्वाकांक्षी प्रयासों को संभव बनाया। उनके काम में जीन थेरेपी, अनुवांशिक निदान और व्यक्तिगत चिकित्सा के विकास में योगदान दिया। आज का बहु अरब डॉलर का जैव प्रौद्योगिकी उद्योग खुराना और उनके समकालीनों के मूलभूत शोध पर आधारित है।
8: 2001 में खुराना के जीवन में एक त्रासदी घटी। उनकी प्यारी पत्नी एस्तेर का निधन हो गया। ये खुराना के लिए विनाशकारी झटका था। एस्तेर केवल उनकी पत्नी नहीं थी, वे उनकी सबसे करीबी मित्र थी, विश्वासपात्र और जीवन साथी थी। लगभग 50 वर्ष उन्होंने साथ बिताए थे। एस्तेर की मृत्यु के बाद खुराना गहरे अवसाद में चले गए। जो व्यक्ति हमेशा अनुशासित और केंद्रित रहा, वो टूट गया। उन्होंने धीरे धीरे सार्वजनिक जीवन से भी दूरी बनाना शुरू कर दी।
7: उनके सहयोगियों और मित्रों ने उन्हें सहारा देने की कोशिश की, लेकिन एस्तेर की अनुपस्थिति एक ऐसा रिक्त स्थान छोड़ गई जिसे कोई नहीं भर सकता था। खुराना अपने बच्चों के करीब रहे, लेकिन उनका एकाकीपन गहरा था। उन्होंने अपनी प्रयोगशाला में काम करना जारी रखा, लेकिन पहले जैसी तीव्रता नहीं रही। विज्ञान, जो हमेशा उनका जुनून रहा था, अब उनके दर्द से ध्यान भटकाने का एक तरीका बन गया था।
8: 2000 के दशक में खुराना की उम्र और स्वास्थ्य दोनों ने उन्हें धीमा कर दिया। वे 80 के दशक में थे और विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं से जूझ रहे थे, लेकिन उन्होंने MIT में अपना पद बनाए रखा और जब तक संभव था अपनी प्रयोगशाला में जाते रहे। उनके अंतिम वर्षों में वे अधिक चिंतनशील हो गए। उन्होंने अपने जीवन की यात्रा को याद किया, रायपुर के छोटे से गांव से लेकर MIT की प्रयोगशाला तक। ये एक असाधारण यात्रा थी।
7: वे अपने बच्चों और पोते पोतियों के साथ समय बिताना पसंद करते थे। परिवार उनके लिए सांत्वना का स्रोत बन गया था। वे अपने पोते पोतियों को अपने गांव और अपने बचपन की कहानियां सुनाते थे। स्वास्थ्य समस्याओं के बावजूद भी उन्होंने अपनी मानसिक तीक्ष्णता बनाए रखी। वे वैज्ञानिक साहित्य पढ़ते रहे और विज्ञान में नए विकास में रुचि रखते रहे।
8: 9 नवंबर 2011 को 89 वर्ष की आयु में प्रोफेसर हरगोविंद खुराना का मैसाचुसेट्स के कॉनकॉर्ड में निधन हो गया। उनकी मृत्यु शांतिपूर्ण थी अपने परिवार के बीच। उनके निधन पर विश्वभर के वैज्ञानिक समुदाय ने शोक व्यक्त किया। MIT विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय और कई अन्य संस्थानों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके निधन के खबर से भारत भर में शोक की लहर दौड़ गई और देश ने एक साथ अपने इस महान व्यक्तित्व को नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की।
7: MIT के अध्यक्ष ने कहा, प्रोफेसर खुराना एक महान वैज्ञानिक थे जिन्होंने जीवन के सबसे मौलिक प्रश्नों को समझने में मदद की। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत के महान सपूत के रूप में याद किया और कहा, उनका जीवन युवा भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत है। MIT ने उनके सम्मान में एक स्मारक व्याख्यान श्रृंखला स्थापित की। विस्कॉन्सिन विश्वविद्यालय ने उनके नाम पर एक छात्रवृत्ति कार्यक्रम शुरू किया। पंजाब विश्वविद्यालय, जहां उन्होंने अपनी प्रारंभिक उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, वहां उनके सम्मान में एक स्मारक बनाया गया।
8: भारत सरकार ने 2018 में उनके जन्म शताब्दी वर्ष में उन्हें याद करते हुए विशेष कार्यक्रम आयोजित किया।

0: खुराना की, जो भारत के गौरव और विश्व ज्ञान के एक महान स्तंभ हैं। इसी के साथ आज के इस कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं।
1: इस कार्यक्रम का मार्गदर्शन संतोष कुमार वर्मा, परिकल्पना अदिति गौड़, ध्वनि संपादन अमित कुंदानी, समन्वय सहयोग सतीश बाथम और लेखक अखिलेश कुमार वर्मा, और मैं था आपका दोस्त दीपक नेमा,
0: और मैं हूँ स्वाति।
1: नमस्कार, नमस्कार।

0: आजादी के यादगार तरानों पर केंद्रित राष्ट्र वंदना के विविध स्वर जन गर्जे, अंग्रेजी राज के दमन लूट और आतंक के प्रतिरोध में भारतीय जन का उद्घोष जन गर्जे। स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति जन गर्जे।
1: आदमी वो नहीं जिसे हालात बदल दे, आदमी तो वो है जो हालात को बदल दे। ऐसे ही महान वीर सपूतों की कहानी सुनते रहिए रेडियो आजाद हिंद पर 90.8 मेगाहर्ट्ज़। रेडियो आजाद हिंद, देश का चैनल देश के लिए।
2: स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग प्रस्तुत करते हैं स्वामी विवेकानंद के आदर्शों और उनके विचारों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद।

0: भारत के पश्चिमी समुद्र के तटवर्ती गोवा क्षेत्र का परिभ्रमण करने के बाद स्वामी जी क्रमशः मैसूर राज्य के अंतर्गत बेंगलोर आए। वहां कुछ दिन उन्होंने म्युनिसिपैलिटी यानी नगरपालिका के मेडिकल ऑफिसर श्री पी पल्पू के घर में निवास किया था। ये केरल के एल्वा नामक समाज के थे, जिसके कारण पहले स्वामी जी का वहां के भद्र समाज में समादर नहीं हुआ। किंतु जिस प्रकार आग अधिक देर तक राख से ढकी नहीं रहती, ईंधन मिलते ही पूरी शक्ति के साथ धधक उठती है, उसी प्रकार स्वामी जी की प्रतिभा भी कहीं भी दीर्घ काल तक लोगों की दृष्टि से ओझल नहीं रह पाती थी। जन साधारण से वार्तालाप और जान पहचान होते ही वो प्रतिभा स्वमहिमा में प्रकट हो जाती। अतएव भारत में अन्यत्र जैसा देखा गया था, बंगलौर में भी वैसा ही हुआ। शीघ्र ही उनकी ख्याति फैलकर राज्य के दीवान श्री के शेषाद्री अय्यर के कानों में पड़ी।
1: यथा समय स्वामी जी से साक्षात्कार होने के कुछ ही मिनटों में अय्यर महोदय के हृदय में एक अपरिचित अज्ञात सन्यासी के उज्जवल भविष्य का चित्र दिखने लगा और उन्होंने सोचा कि इस सन्यासी में ऐसा चित्ताकर्षक व्यक्तित्व तथा दिव्य शक्ति है जो भारत के इतिहास में निश्चित रूप से अपनी छाप छोड़ जाएगी।
0: अय्यर महोदय ने उन्हें आदर पूर्वक अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और स्वामी जी ने उस घर में 3-4 सप्ताह व्यतीत किए। यहीं पर मैसूर राज्य के अनेक गणमान्य व्यक्तियों एवं राज दरबार के अनेक उच्च पदस्थ अधिकारियों से उनका परिचय हुआ। वे जहां कहीं जाते, वहीं धर्मनिरपेक्ष भाव से हिंदू गैर हिंदू सबके घर पर साग्रह अभिनंदित होते। उनकी धर्मानुभूति और धर्म की सरल व्याख्या सुनकर अय्यर महोदय ने एक दिन आश्चर्यपूर्वक कहा था,
2: हम में से कई लोगों ने धर्म के संबंध में बहुत कुछ पढ़ा है, किंतु उससे हमारा क्या लाभ हुआ है। हम लोगों के समक्ष ये जो एक युवक उपस्थित है, उनकी अंतर्दृष्टि मेरे परिचित सभी

0: भारतीयों की अपेक्षा अधिक है। ये बड़े आश्चर्य की बात है, वे निश्चय ही धर्म की प्रत्यक्ष अनुभूति प्राप्त कर संसार में अवतरित हुए हैं, नहीं तो इस प्रकार की कम उम्र में ही कहां से उनमें इतनी ज्ञान राशि और अंतर्दृष्टि आई।
1: मैसूर के महाराजा संभवतः इन युवक आचार्य को पाकर आनंदित और उपकृत होंगे, ये सोचकर सर शेषाद्री अय्यर ने उन्हें मैसूर ले जाकर महाराजा से परिचय करा देना चाहा। तरुण सन्यासी के गेरुआ वस्त्र पहने रहने पर भी उनकी आकृति और चलने की भंगिमा में एक ऐसी सरलता और प्रतिभा की ज्योति विराज रही थी कि महाराजा श्री चामराजेंद्र वाडियार के सभागार में उनके प्रवेश करते ही महाराजा का मन खुशी से भर उठा। फिर स्वामी जी के विचारों की नवीनता, व्यक्तित्व का अपूर्व आकर्षण, पांडित्य की गहराई एवं धर्म विषयक सूक्ष्म अंतर्दृष्टि ने महाराजा के हृदय को जीत लिया। तब से स्वामी जी राजकीय अतिथि हो गए। इसके पश्चात महाराजा से उनकी अक्सर भेंट होती और लंबी चर्चाएं होती। महाराजा अनेक महत्वपूर्ण विषयों पर उनके विचार पूछा करते।
2: एक दिन महाराजा चामराजेंद्र वडियार ने अपने सभासदों की उपस्थिति में ही स्वामी जी से पूछा,
3: स्वामी जी, मेरे दरबारियों के बारे में आपका क्या मत है?
4: मेरे ख्याल से महाराज आपका हृदय तो बहुत सरल और साफ है, परंतु खेद की बात है कि आप हमेशा अपने दरबारियों से घिरे रहते हैं। दरबारी प्रायः सर्वत्र ही चापलूस हुआ करते हैं।
3: नहीं नहीं, कम से कम मेरा दीवान तो ऐसा आदमी नहीं है, वह बुद्धिमान और ईमानदार है।
4: परंतु दीवान का तो यही काम है ना कि राजा का धन लूटकर अंग्रेज सरकार के प्रतिनिधि यानी एजेंट को देना।
1: राजा ने तुरंत विषय बदल दिया और कुछ देर बाद स्वामी जी को दूसरे कमरे में ले जाकर बोले,
3: देखिए स्वामी जी, अत्यधिक साफ बातें हमेशा अच्छी नहीं होती। आपने मेरे दरबारियों के सामने जैसी बातें कही, आगे भी वैसी बातें बोलने पर मुझे डर है कि कोई आपको जहर ना दे बैठे।
4: आप क्या कह रहे हैं महाराज? क्या आप सोचते हैं कि एक सच्चा सन्यासी केवल प्राणों के डर से सत्य बोलने में हिचकेगा? मान लीजिए आप ही के पुत्र आपके बारे में मेरा मत जानना चाहें, तो क्या आप सोचते हैं कि मैं आपके काल्पनिक गुणों का वर्णन करूंगा? क्या मुझे झूठ का सहारा लेना पड़ेगा? नहीं, कभी नहीं।
2: किंतु कितने प्रेम और श्रद्धा के साथ स्वामी जी मैसूर के राजा के परोक्ष उनके संबंध में बोला करते थे। स्वामी जी का स्वभाव ही ऐसा था कि किसी का दोष देखने पर उसके सामने ही उसके लिए भर्त्सना किया करते थे, किंतु उसकी पीठ पर उसकी भूरी भूरी प्रशंसा किया करते। उसके दोष की बात उस समय उनके मन में आती ही नहीं थी।
1: मैसूर राज्य की राजसभा में एक दिन ऑस्ट्रिया देशवासी एक प्रसिद्ध संगीत विशारद से उनकी भेंट हुई। उनके सामने स्वामी जी ने जिस प्रकार की जानकारी दी, उससे उनके पाश्चात्य संगीत ज्ञान का परिचय पाकर सब दंग रह गए। एक दिन राजमहल के विद्युत इंजीनियर से स्वामी जी की भेंट हुई। चर्चा के क्रम में बिजली के विषय में बात आई। तब देखा गया कि स्वामी जी इस विषय में भी पारंगत थे। मैसूर में ही एक दिन स्वामी जी के उदार सार्वभौमिक धर्म भाव और अनुभूति की गहनता को लक्ष्य कर श्री अब्दुल रहमान नामक राजदरबार के एक सभासद आए। कुरान की कुछ बातें स्वामी जी के समक्ष प्रस्तुत कर इनके संबंध में उनका विचार जानने और अपना संदेह दूर करने की बात उन्होंने कही। स्वामी जी पहले से ही कुरान से घनिष्ठ रूप से परिचित थे, अतएव उक्त सज्जन की समस्या का उन्होंने ऐसा सुंदर समाधान कर दिया कि वे अपने को कृतार्थ समझने लगे। एक बार राजसभा में विद्वान पंडितों की सभा आयोजित हुई। विषय था वेदांत। पंडितों के बोल लेने के बाद सभी ने स्वामी जी से कुछ कहने को कहा।
2: स्वामी जी खड़े होकर सुललित संस्कृत में पहले सूत्र और बाद में विस्तार से अपना वक्तव्य देने लगे। पुस्तकों का सहारा उन्होंने नहीं लिया। उनकी सहायक थी उनकी वाग्मिता, ज्ञान बाहुलता, सरलता और स्वानुभूति।
1: उन्होंने वेदांत को मात्र पंडितों के विचार जगत रूप में न ग्रहण कर मानव जीवन में उसकी उपयोगिता दिखाई। विभिन्न धर्मों के बीच वेदांत मत के सहारे किस प्रकार शांति और संभाव स्थापित हो सकते हैं, इसे बताना भी वे नहीं भूले। सभा में उपस्थित सब लोग उनके विचारों की मौलिकता और दृष्टि का विस्तार देख कर चकित हुए और भूरी भूरी प्रशंसा की। स्वामी जी से परम प्रसन्न होकर दीवान बहादुर ने एक दिन उनसे कोई एक उपहार ग्रहण करने का अनुरोध किया और एक सचिव यानी सेक्रेटरी को बुलाकर कह दिया कि वे स्वामी जी को लेकर राज्य की सर्वोत्कृष्ट दुकान में जाएं और स्वामी जी जो चाहें वही खरीद दें। दीवान बहादुर के सम्मान की रक्षा करने के लिए स्वामी जी उस सेक्रेटरी के साथ चले। सेक्रेटरी ने अपने पास एक चेकबुक रख लिया ताकि वस्तुओं की कीमत के अनुसार जितने पैसे हों आसानी से दिए जा सकें। शिशु सुलभ स्वभाव वाले स्वामी जी आनंद पूर्वक इधर उधर देखने निकल पड़े। अनेक अच्छी अच्छी वस्तुओं की प्रशंसा भी की किंतु कुछ भी लिया नहीं। अंत में थक कर विदा होते समय उन्होंने सेक्रेटरी से कहा,
4: मित्र यदि मेरी पसंद के लायक कोई सामान ले जाने से ही दीवान जी प्रसन्न हो तो एक काम कीजिए, यहां का एक सबसे बढ़िया सिगार मुझे खरीद कर ला दीजिए।
1: सेक्रेटरी जी अवाक हो गए किंतु उन्होंने आज्ञा का पालन किया और स्वामी जी ने निर्विकार चित्त से बाहर आकर प्रायः 12 आने मूल्य का वो एक सिगार जलाकर मुंह से लगाया और उसका कश खींचते खींचते गाड़ी में चढ़कर राजमहल में आए। मानो ऐसी अमूल्य संपत्ति अन्य किसी के भाग्य में नहीं होती। सब सुनकर दीवान जी पहले तो हंस उठे किंतु बाद में इन निष्प्रह साधु का वैराग्य देखकर चकित हो गए।
2: एक दिन महाराजा ने स्वामी जी को अपने कमरे में बुलवाया, दीवान जी भी साथ गए।
3: प्रणाम स्वामी जी, आसन ग्रहण कीजिए, आपकी तबीयत तो ठीक है ना?
4: सब आनंद मंगल है, कहिए मुझे क्यों बुलाया?
3: स्वामी जी आपकी विद्वता पर मेरा सारा राज्य मोहित है, आप मेरे मेहमान बने हैं, इससे मेरा मान बड़ा है। कहिए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मेरे लायक कोई सेवा?
1: स्वामी जी प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्तर न देकर ज्वलंत शब्दों में अपने जीवन के उद्देश्य की बात बोलने लगे। उन्होंने भारत की तत्कालीन अवस्था के प्रति ध्यान खींचकर कहा, यद्यपि भारत की विशिष्टता दर्शन और आध्यात्म ही है तथापि समय के अनुरूप उसे पाश्चात्य विज्ञान का ज्ञान अर्जन एवं सामूहिक समाज सुधार की दिशा में शीघ्र तत्पर होना होगा। भारत को आज अपनी विशेष संपदा आध्यात्म को विश्व मानव के कल्याण के लिए वितरित कर देना होगा और उपयुक्त सुयोग पाने पर वे स्वयं अमेरिका जाकर वेदांत का प्रचार करेंगे।
3: स्वामी जी ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपके विदेश यात्रा की सारी व्यवस्था कर दूंगा, कहिए कितने रुपयों की जरूरत पड़ेगी?
4: आपको धन्यवाद महाराज कि आपने मेरे व्रत में सहायक बनना स्वीकार किया, पर अभी नहीं, पहले मैं रामेश्वर दर्शन करना चाहता हूँ, फिर आपको जरूर बताऊंगा।
1: स्वामी जी के मन में था कि अगर वे विदेश जाकर वेदांत का पाठ पढ़ाएंगे तो समग्र भारत के प्रतिनिधि बनकर जाएंगे, किसी एक शक्ति की सहायता से नहीं।
2: जितने अधिक दिनों तक स्वामी जी मैसूर में रहते रहे महाराजा उतना ही अधिक उनके प्रति अनुरक्त होने लगे। तदंतर जिस दिन स्वामी जी ने विदा मांगी उस दिन महाराज ने दुखी होकर उनसे और भी कुछ दिनों तक रहने का अनुरोध किया। उन्होंने आगे कहा,
3: स्वामी जी आपके व्यक्तित्व के स्मृति चिन्ह के रूप में मेरे पास कुछ रहना आवश्यक है, अतः आपकी अनुमति मिलने पर फोनोग्राम में आपके कुछ भाषणों को रिकॉर्ड करके रख लेना चाहता हूँ।
2: स्वामी जी से सहमत हुए और उस दिन स्वामी जी के कंठ स्वर का जो रिकॉर्ड तैयार हुआ था वह पूर्णतः अस्पष्ट हो जाने पर भी राजभवन में यत्न पूर्वक रखा हुआ है। स्वामी जी के प्रति महाराज की श्रद्धा इतनी बढ़ गई थी कि एक बार वे गुरुभाव से स्वामी जी के चरणों की पूजा करने को तत्पर हो गए थे, किंतु स्वामी जी ने उन्हें ऐसा नहीं करने दिया।
1: कुछ ही दिनों के उपरांत स्वामी जी ने कहा, वे अब किसी भी तरह नहीं रुकेंगे। ये सुनकर महाराजा ने उन्हें कुछ कीमती उपहार देना चाहा, किंतु सन्यासी के लिए ऐसी वस्तुएं ग्रहणीय नहीं होने के कारण स्वामी जी ने उपहार लेना स्वीकार नहीं किया। तथापि महाराजा के सग्रह अनुरोध करने पर उन्होंने अंत में कहा,
4: अच्छा आप अगर जिद कर रहे हैं कि मुझे कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा तो बिना धातु वाला एक हुक्का दीजिए, हाँ वो मेरे कुछ काम का होगा।
2: महाराजा ने तब उन्हें एक नक्काशीदार रोजवुड का बना सुंदर हुक्का प्रदान किया। स्वामी जी से विदा लेते समय महाराजा ने उनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। इधर दीवान बहादुर ने चुपचाप उनकी जेब में नोटों की एक गड्डी ठूंस देने का प्रयत्न किया। स्वामी जी ने किसी तरह उसे ग्रहण नहीं किया, फिर भी उन्होंने कहा,
4: देखिए आप यदि मेरे लिए सचमुच कुछ करना चाहती हैं तो मेरे लिए रेलवे का एक टिकट खरीद दीजिए, मैं तो रामेश्वर जा रहा हूँ किंतु रास्ते में 2-4 दिनों के लिए कोचीन राज्य में रुकूंगा।
2: उन दिनों कोचीन और श्रावणकोर राज्यों में रेलवे लाइनें नहीं थी, अतएव सुना जाता है कि शोरनूर रेलवे स्टेशन पर उतरकर स्वामी जी बैलगाड़ी से त्रिचूर पहुंचे। गाड़ी जब शहर के भीतर से गुजर रही थी तब कोचीन राज्य के शिक्षा विभाग के पदाधिकारी श्री डी ए सुब्रमण्य अय्यर अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। स्वामी जी ने गाड़ी से उतरकर उक्त सज्जन से पूछा, यहाँ क्या कहीं स्नान करने की उपयुक्त जगह है? स्वामी जी के व्यक्तित्व से प्रभावित उक्त सज्जन ने स्वामी जी को अतिथि रूप में ग्रहण कर अपने मकान के एक हिस्से में उनके स्नान भोजन आदि की व्यवस्था कर दी। उन दिनों स्वामी जी के गले में कफ जम जाने के कारण कुछ कष्ट हो रहा था। अय्यर महाशय ने उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाकर दवा की व्यवस्था करा दी।
1: त्रिचुर में स्वामी जी मात्र कुछ ही दिन रहकर कुरुंगनोर या कोडंगलुर नामक प्रसिद्ध स्थान में चले गए। वो स्थान संस्कृति और एक काली मंदिर के लिए सुविख्यात था। स्वामी जी ने जब उस काली मंदिर में प्रवेश करना चाहा तो पुजारियों ने रोक दिया, अतएव वे बाहर से ही काली माता को भूमिष्ठ प्रणाम कर एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। थोड़ी ही देर में क्रैंगनोर राजभवन से कोचुन्य थम्पुरन और भट्टन थम्पुरन नामक दो राजकुमार काली मंदिर में आए और स्वामी जी को वट वृक्ष के नीचे बैठे देखकर संस्कृत में वार्तालाप करने लगे। स्वामी जी ने जानना चाहा कि उन्हें मंदिर में क्यों नहीं प्रवेश करने दिया गया। दोनों राजकुमारों ने उत्तर दिया कि लोगों की, खासकर केरल से बाहर से आने वाले लोगों की जाति का पता लगाना कठिन होता है, इसलिए सबको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता।
2: इस प्रकार 3 दिनों तक स्वामी जी से संस्कृत में वार्तालाप और शास्त्र चर्चा होने के बाद स्वामी जी के प्रति दोनों राजकुमारों में श्रद्धा जागी। बाद में राजमहल की महिलाओं ने वहां आकर स्वामी जी से संस्कृत में वार्ताएं की। स्त्रियों में भी इस प्रकार का संस्कृत ज्ञान है, ये देखकर स्वामी जी आश्चर्यचकित हो गए। 4th दिन भी वे दोनों राजकुमार वहां आए, किंतु उन्होंने देखा कि स्वामी जी पहले से ही कोचीन की ओर चले गए हैं। इसके कुछ महीनों बाद उन दोनों ने जब समाचार पत्रों में स्वामी विवेकानंद की तस्वीर देखी और शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में उनकी विजय के बारे में पढ़ा, तब वे पहचान पाए कि ये वही वट वृक्ष के नीचे वाले स्वामी जी हैं।
1: कोचीन राज्य को छोड़कर स्वामी जी ने क्रमशः त्रावणकोर राज्य में प्रवेश किया। त्रावणकोर का प्राकृतिक सौंदर्य देखकर मुग्ध हो गए। समुद्र तट पर स्थित त्रिवेंद्रम राज्य की नदी पर्वत, शोभित और श्यामल वृक्षलता आदि से आच्छादित धरती बड़ी ही मनोरम है, और इसके ही बीच बीच में स्थित धान के खेत और चित्र के समान गांव बड़े ही अच्छे हैं। वे त्रावणकोर राज्य की राजधानी त्रिवेंद्रम पहुंचे।
2: त्रिवेंद्रम में वे प्रोफेसर सुंदर राम अय्यर के घर ठहरे। ये उन दिनों श्रावणकोर के महाराजा के भांजे और राज्य के प्रथम या सबसे बड़े राजकुमार श्री मार्तंड वर्मा के गृह शिक्षक थे। राजकुमार उन दिनों अय्यर महोदय से पढ़कर बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर एमए की परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। श्रावणकोर के महाराजा महाविद्यालय में उन दिनों मद्रास के विख्यात विद्वान श्रीयुत रंगाचार्य रसायन शास्त्र के प्रोफेसर थे। उन्होंने स्वामी जी से भेंट की। त्रावणकोर के श्री एस के नायर ने इन दोनों प्रोफेसरों से स्वामी जी के साहचर्य का वर्णन प्रस्तुत किया है।
5: ये दोनों सज्जन स्वयं संस्कृत एवं अंग्रेजी में पंडित होने पर भी स्वामी जी से बात करने में विशेष आनंद का अनुभव करते। वस्तुतः जो कोई उनसे घनिष्ठ रूप से परिचित होता वो उनके तेजोमय व्यक्तित्व से मुग्ध होता और उनकी ओर आकृष्ट हुए बिना नहीं रहता। उनमें यह अत्यंत आश्चर्यपूर्ण क्षमता थी कि वे एक ही समय में एक साथ ही अनेक प्रश्नों के उत्तर दे सकते थे। संभवतः स्पेंसर के दर्शन, कालिदास या शेक्सपियर के किसी भाव, डार्विन के सिद्धांत, यहूदियों के इतिहास, आर्य सभ्यता के विकास, वेदों, इस्लाम धर्म अथवा ईसाई धर्म के संबंध में चर्चा शुरू होने पर स्वामी जी के पास सभी विषयों का समुचित उत्तर प्रस्तुत रहता। उनकी आकृति में गंभीरता और सरलता की रेखा स्पष्ट रूप से अंकित थी। उनका हृदय पवित्र, जीवन निष्पाप और संयत, खुला मन चित्त, सभी विषयों में उदार, दृष्टि व्यापक और सहानुभूति विश्वव्यापी थी। त्रावणकोर में रहते समय व्यक्तिगत वार्तालाप के समय वे समग्र भारतीय दृष्टि लेकर बातें करते और विशाल भारत के सभी क्षेत्रों में समाज सुधार और जन जागरण की आवश्यकता पर बल दिया करते।
1: त्रिवेंद्रम में स्वामी जी 9 रातें श्री सुंदर राम अय्यर के घर पर रुके थे। सुंदर राम ने उन दिनों का बहुत सजीव वर्णन किया है। उन्होंने लिखा है,
6: स्वामी विवेकानंद से मेरी पहली भेंट त्रिवेंद्रम में सन 1892 ईस्वी के दिसंबर माह में हुई। उस समय उनके बारे में बहुत कुछ देखने और जानने का सौभाग्य मिला। वे मेरे यहाँ एक मुस्लिम व्यक्ति के साथ आए थे। मेरे 12 वर्ष के छोटे पुत्र ने उनको भी मुस्लिम समझ लिया था और उनके आगमन की घोषणा की थी। स्वामी जी ने जिस तरह की पोशाक पहन रखी थी उससे इस बालक के लिए भ्रम में पड़ जाना अस्वाभाविक नहीं था, क्योंकि दक्षिण भारत में हिंदू सन्यासी की ऐसी वेशभूषा नहीं होती थी। स्वामी जी ने बात बात में मुझसे अपने मुस्लिम दोस्त के भोजन की व्यवस्था करने का अनुरोध किया। वो साथी कोचीन राज्य की सेवा में नियुक्त था और एक दीवान के सेक्रेटरी श्री डब्लू रमैया ने उसे स्वामी जी के साथ भेजा था। पिछले 2 दिनों से स्वामी जी ने थोड़े दूध के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं खाया था, किंतु जब तक उस मुस्लिम नौकर के भोजन की व्यवस्था नहीं हुई उन्होंने कुछ नहीं खाया। कुछ ही मिनटों तक वार्तालाप कर मैं समझ गया कि स्वामी जी एक शक्तिशाली पुरुष हैं। मैंने जब उनसे पूछा आप कैसा भोजन पसंद करते हैं, तब उन्होंने उत्तर दिया आपको जो अच्छा लगे। हम सन्यासियों के लिए पसंद नापसंद जैसी कोई बात नहीं होती। ये जानकर कि स्वामी जी बंगाली हैं, मैंने टिप्पणी की, बंगाली समाज ने अनेक महापुरुषों को जन्म दिया है और उनमें ब्राह्म प्रचारक केशव चंद्र सेन सर्वश्रेष्ठ हैं। ये सुनते ही उन्होंने मेरे समक्ष अपने गुरु श्री रामकृष्ण के नाम का उल्लेख किया और उनके अतुलनीय आध्यात्मिक गुणों की संक्षिप्त चर्चा कर कहा,
4: श्री रामकृष्ण की तुलना में केशव तो मात्र बच्चा है। केवल मैं ही नहीं, हमारे समकालीन अनेक विख्यात बंगाली श्री रामकृष्ण से प्रभावित हुए हैं। अपने परवर्ती जीवन में केशव चंद्र को भी उनकी छाँव के तले आकर सीखने का सौभाग्य मिला था, जिसके फलस्वरूप केशव चंद्र के धर्म जीवन में अनेक परिवर्तन हुए थे। कई यूरोपीय भी श्री रामकृष्ण के दर्शन के लिए लालायित रहते थे और उन्हें देवता की भांति श्रद्धा करते थे। एक दिन वे श्री रंगाचार्य के घर गए। रंगाचार्य त्रिवेंद्रम कॉलेज में रसायन शास्त्र के प्राध्यापक थे और उस समय भी संपूर्ण दक्षिण भारत में विद्वता और विज्ञान में पांडित्य के लिए कीर्ति की उच्चतम शिखर पर अधिष्ठित थे। घर में उनके नहीं रहने के कारण हम लोग गाड़ी से त्रिवेंद्रम क्लब गए।
2: उस क्लब से वापस आते समय एक घटना घटी।
6: क्लब छोड़कर जाने के समय नारायण मेनन ने उक्त ब्राह्मण पेशकार को प्रणाम किया। इस पर उनके अभिवादन के जवाब में उन्होंने बाएं हाथ को थोड़ा सा ऊपर उठाकर स्वीकार किया। जब हम लोगों के विदा होने का समय आया तब दीवान पेशकार द्वारा स्वामी जी को प्रणाम किए जाने पर स्वामी जी ने सन्यासियों की प्राचीन प्रथा के अनुसार केवल नारायण शब्द का उच्चारण किया। इससे पेशकार महोदय को गुस्सा आ गया और उन्होंने ये अधिकार जताया कि उन्होंने जिस प्रकार स्वामी जी को प्रणाम किया है ठीक उसी प्रकार स्वामी जी को भी प्रति प्रणाम करना होगा। तब स्वामी जी ने पेशकार की ओर मुड़कर कहा,
4: यदि आप नारायण मेनन को अपनी प्राचीन रीति से जवाब दे सकते हैं तो मेरे द्वारा अपनी रीति से आपका अभिवादन स्वीकार करने पर आपके नाराज होने का क्या कारण है।
6: इस प्रतिउत्तर का अपेक्षित परिणाम हुआ और दूसरे दिन पेशकार के भाई ने हम लोगों के पास आकर विगत रात्रि की कष्टकर घटना के लिए क्षमा याचना की। क्लब में स्वामी जी के थोड़ी ही देर रहने पर भी सब पर उनका गंभीर प्रभाव पड़ा था।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: जिंदा फिर से हो रहा।
1: जननायक, स्वाधीनता संघर्ष की महागाथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथाओं के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाओं का संग्रह। ऑडियो एल्बम जननायक, स्वराज संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

पर आप सुन रहे थे रेडियो आजाद हिंद का प्रसारण। श्रोताओं, ये थे हमारे केंद्र से प्रसारित किए जा रहे कार्यक्रम। आइए अब आपको जानकारी देते हैं हमारे केंद्र से कल यानी गुरुवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की। प्रातः 7 बजे कल आप सुनेंगे कार्यक्रम जीवन सौरभ। कल का शीर्षक सुख की परिभाषा। सुबह 7:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अक्षय निधि, जिसमें ऋग्वेद के द्वितीय मंडल से सूक्त 5 का वाचन किया जाएगा। भक्ति संगीत का कार्यक्रम लेकर आएंगे प्रातः 7:20 से। यही कार्यक्रम आप पुनः सुन सकेंगे संध्या 5:10 से। हमारा नियमित कार्यक्रम श्रोताओं आप सुनते हैं प्रतिदिन सुबह 8 बजे और पुनः प्रसारण संध्या 6 बजे। कल का ये कार्यक्रम समर्पित रहेगा गणेश श्री कृष्ण खापड़े की जयंती पर। बाल सभा कार्यक्रम का समय होगा सुबह 8 बजे और पुनः संध्या 6:30 पे। प्रातः 8:30 पर बाल सभा कार्यक्रम में आप सुनेंगे प्रकृति के लिए रक्षा सूत्र रक्षा बंधन पर विशेष कार्यक्रम। सुबह 9 बजे और संध्या 7 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारी सेना हमारा गर्व। भारतीय सशस्त्र सेनाओं पर कल बात करेंगे। सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल भामा से पूर्वाखले की चर्चा आप सुनेंगे। सुबह 9:30 पर विशेष कार्यक्रम में आप सुनेंगे कविता कृष्णमूर्ति का गायन। इसी कार्यक्रम का पुनः प्रसारण किया जाएगा संध्या 7:30 से। दिन में 10 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम देश के संस्थान। कल का विषय होगा मिधानी मिश्र धातु निगम लिमिटेड। कार्यक्रम का 19वां भाग प्रसारित किया जाएगा। दिन में 10:30 पर कार्यक्रम हिंदुस्तान हमारा आप सुनेंगे बद्रुद्दीन तैयब जी की पुण्यतिथि पर। कार्यक्रम परिक्रमा आप सुनेंगे दिन में 11 बजे और 11:30 पर युग प्रवर्तक विवेकानंद। इसी कार्यक्रम को आप पुनः सुन सकेंगे रात्रि 9:30 पर। श्रोताओं, कल इस कार्यक्रम का 29वां भाग हम प्रसारित करेंगे। ये थे हमारे केंद्र से कल प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रम। श्रोताओं, रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब हमारी आज की सांध्यकालीन सभा यहीं पर संपन्न होती है। कल के कार्यक्रमों के साथ कल सुबह 7 बजे हम आपसे पुनः भेंट करेंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।